हमारे लिए पूर्ण रूप से ठीक हो, हम उसमें बैठ जाएं। जमीन पर वैसे तो प्राणायाम आसन करने के लिए हम जमीन पर मैट या चद्दर बिछाकर बैठते हैं, परंतु यदि हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, हम जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, तो हम सोफे पे, पलंग पे या कुर्सी पर आराम से बैठ सकते हैं। तो आइए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और पद्मासन की स्थिति में बैठकर एकाग्र चित होकर आंखें बंद, लंबी गहरी सांस एक बार फेफड़ों में भरेंगे और प्राणायाम शुरू करने से पहले एक बार ओम का उच्चारण करेंगे कुछ इस तरह।

हाथों की हथेलों में घर्षण करने के बाद में चेहरे पे और आंखों पे लगाते हुए हम अपने पूरे मुखमंडल पर लगाएंगे और अपनी इसी प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने मुखमंडल पर जो इस समय हमारे प्यारी सी एक मुस्कान है उसी को रखते हुए अपना अभ्यास शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे यह प्राणायाम जो है वह प्राण से संबंधित है, श्वास से संबंधित है। सभी को जानकारी है यदि हमारे शरीर में श्वास चल रही है तो हम जीवित हैं, श्वास अगर नहीं चलती है तो यानी वह मृतक घोषित हो जाता है। तो यह प्राणायाम भी हमारा प्राण से संबंधित, श्वास से संबंधित, श्वास नियमित रूप से और आराम से हमको लेनी है, ना बहुत तीव्र गति से और ना बहुत ही मध्यम गति से इसको लेना है। नाक के दाएं छिद्र से श्वास खींचते हुए पहले हम मुद्रा में बैठेंगे और उसके बाद नाक के दाएं छिद्र से श्वास खींचते हैं और बाई नाक के छिद्र से श्वास बाहर निकालते हैं। सबसे पहले इस तरीके से करेंगे, उसके बाद में इसी तरह यदि नाक के बाएं छिद्र से नाक से श्वास खींचते हैं तो नाक के दाहिने छिद्र से श्वास को बाहर निकालेंगे। जैसे कि दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम में अनामिका और अंगूठे का प्रयोग होता है, हम प्रथम चक्र में कुछ इस तरह करेंगे। दाई नासिका को दाहिने अंगूठे से बंद करके श्वास भरेंगे और श्वास को रोकते हुए दाई नासिका को दाहिने अंगूठे से बंद करके बाएं नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर की तरफ निकाल देंगे, कुछ इस तरह।

या जो गति है, या 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक हम ले जा सकते हैं। आप हमारी बात को सुनते रहें और प्राणायाम को अभ्यास साथ ही साथ में हम करते रहेंगे। फिर से एक बारी, दाई नासिका को दाहिने अंगूठे से बंद करके बाएं से श्वास अंदर भरें, फिर बाई नासिका को मध्यमा व अनामिका से बंद करके बाहर निकालें, फिर दाई नासिका से श्वास भरकर दाहिने अंगूठे से दाई नासिका बंद कर बाएं से श्वास को बाहर निकाल दें। यह हमारा प्रथम चक्र होगा।

द्वितीय चक्र में हम सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलेंगे। दोनों हथेली पहले घर्षण करके प्रथम चक्र को हम संपूर्ण करेंगे। पुनः एक बार अपनी स्थिति में आपके साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हुए अनुलोम विलोम का। यह प्रगति से, इस गति से जब भी हम प्राणायाम करेंगे तो हमें यह महसूस होगा कि हम श्वास से श्वास आती जाती श्वास को महसूस कर रहे हैं और हम श्वास के साथ में हम प्राणायाम को पूर्णता करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों में घर्षण करके अपने मुखमंडल पर, आंखों पे और चेहरे पे लगाने के बाद में साथ ही साथ में सूक्ष्म व्यायाम जो कि एक मुख्य प्राणायाम के साथ में किया जाता है। सूक्ष्म व्यायाम जो है दोनों हाथ ऊपर ले जा करके आपस में कलाई पकड़कर अंगड़ाई की मुद्रा में। दोस्तों यह द्वितीय चक्र है और सूक्ष्म व्यायाम है। प्रथम चक्र हमारा अनुलोम विलोम है और यह द्वितीय चक्र सूक्ष्म व्यायाम हम साथ में कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर ले जाकर के आपस में कलाई पकड़कर अंगड़ाई की मुद्रा में दोनों कंधों की तरफ कम से कम दो बार स्ट्रेच करें, मतलब खींचें, और फिर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर सर के पीछे लगाकर जहां पर महिलाएं चोटी बांधती हैं और पुरुष जहां पर सर का निचला हिस्सा, वहां पर सर का दबाव हथेली की तरफ और हथेली का दबाव सर की तरफ बनाएं। बायां हाथ दाहिनी कनपटी पर रखकर, यानी बायां हाथ की हथेली जो होगी वह हमारी कनपटी पर रखकर दबाव बनाएं। बायां हाथ बाएं कनपटी पर रखकर दबाव बनाएं एवं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जोड़कर सामने मत्थे पर, यानी फोरहेड से लेकर लगाएं। हाथ से फोरहेड पर लगाते हुए विपरीत स्थिति में बल लगाएंगे जिस कारण से मेरुदंड में कंपन होने लगेगी। यह अभ्यास हमें तीन बार करना है, यानी पहला अभ्यास हमारा सर के पीछे का था, उसके बाद हाथों को सीधा करके हाथों की उंगलियों को फंसाकर दूसरा अभ्यास था, तीसरा हाथों की हथेलियों को कनपटी पर रखना दाएं और बाएं, और चौथा माथे पर अपने हाथ की हथेली को रखकर विपरीत दशा में उस पर दबाव करना। यह हमारा चौथा अभ्यास था। पांचवा अभ्यास अपने हाथ दोनों घुटनों पर रखकर, यानी घुटने पैर के सीधे घुटनों पर रखकर संचालन कुछ देर के लिए। हमारा छठवां अभ्यास हाथ घुटनों पर पद्मासन की स्थिति में जब हम बैठेंगे तो हाथ हमारे घुटनों पर रखकर और हम कंधे का संचालन करेंगे जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कंधे हमारे संचालन में रहेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और हाथ हमारे हथेली जो रहेगी वो घुटनों पर रहेगी और उसको भी हाथ भी हमारे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे। कंधों का संचालन भी दोस्तों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा और इस तरह एक मुख्य प्राणायाम के साथ में सूक्ष्म व्यायाम की छह स्थितियां आज हम लोगों ने साथ में करी और इसी को हमें दोहराना है 5 से 15 मिनट तक।
तो ये था हमारा आज का प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज योग पाठशाला में मैं आप सभी को कराने जा रही हूँ, यानी हम सभी मिलकर के करने वाले हैं सूक्ष्म व्यायाम। आप सभी को बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि कई दिनों से हम जो आसन व्यायाम करते आ रहे हैं, काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें काफी उससे आराम है। जब हम किसी भी चीज को तीव्रता से और तल्लीनता से करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वह हमेशा से लाभ रहता है।

भूर्भुवस्वः। जीवन की नई ऊर्जा के संग स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो पहली किरण में, जहां सूरज की रोशनी नहीं ईश्वर की ऊर्जा जगती है। मैं हूं आपकी आध्यात्मिक संगिनी आकांक्षा, जो लेकर आ गई है आज का भक्तिमय कार्यक्रम आपके लिए। आज हम सब चलेंगे प्रकृति, ईश्वर और इंसान की उस यात्रा पर जहां सब एक दूसरे से जुड़े हैं अदृश्य लेकिन अमर संबंधों में।

तकलीफ में तेरे सिवा कोई खड़ा नहीं, इसलिए माँ से कोई बड़ा नहीं। घर कैसा भी हो, माँ के बिना अधूरा ही लगता है। माँ वो हस्ती है जिसके बिना हमारी कोई हस्ती नहीं है। ये जिंदगी है जनाब, माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे। एकदम प्रकृति माँ की तरह। जी हाँ, प्रकृति केवल पेड़ पौधा या पहाड़ नहीं, ये माँ है जो हमारे हर श्वास में, हर कण में समाई है, जो सूरज की रोशनी से हमें शक्ति देती है, चांद की चांदनी से हमें शीतलता देती है। और कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या चा द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। बिल्कुल, माँ और प्रकृति से बढ़ के कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसी ने तो हमें जन्म दिया और ये दुनिया दिखाने का अधिकार दिया। प्रकृति से कट जाना ईश्वर से कट जाना है। जो पेड़ बचाता है वो ईश्वर की पूजा करता है बिना मंदिर जाए। तो चलिए बिना मंदिर जाए एक भजन का श्रवण करते हैं और साथ ही साथ प्रकृति माँ की अनुभूति में भी लीन हो जाते हैं।

कभी आपने सोचा है ईश्वर ने हमें क्या दिया बिना मांगे? सूरज की रोशनी दी, जल की धाराएं दी, वायु की सांसें, सब बिना कोई कीमत लिए मिलते हैं। यही ईश्वर का प्रकृति रूप है। यत्र नार्यत्र पूज्यते रमयते तत्र देवता। जहाँ प्रकृति, नारी और धरती का सम्मान है, वहाँ ईश्वर का निवास है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जैसे बीज में वटवृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हमारी आत्मा में ब्रह्म छिपा है। जब हम ध्यान करते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तब हम ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं। तो चलिए केवल 5 मिनट खुले आसमान में बैठिए, अपनी सांसों को देखिए और प्रकृति के स्पर्श को महसूस करिए। साथ ही साथ सुनिए ये प्यारा सा भजन।

हम सभी को पता है कि माँ से बढ़के कोई नहीं, और सभी धर्मों में भी माँ की ममता एक शाश्वत और सार्वभौमिक सत्य बताया गया है। चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि माँ की ममता से बड़ा वाकई कुछ और नहीं। ये कहानी माँ के निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावना को दर्शाता है, जो सभी धर्मों और संस्कृतियों में समान रूप से पूजनीय है। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी, जिसके पास अपनी बेटी के अलावा और कोई नहीं था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो गई। माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने हिस्से का खाना भी उसे खिला दिया, जिस तरह हर माँ करती है। खुद भूखी रही पर बेटी को भूखा नहीं सोने दिया। एक रात जब माँ अपनी बेटी के साथ सो रही थी, तो उसने देखा कि उसकी बेटी को तेज बुखार है। माँ घबरा गई, उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और रात भर उसे सहलाती रही। सुबह होने तक माँ की हालत भी खराब हो गई। गांव के लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि माँ और बेटी दोनों ही बेहोश पड़ी हैं। वे दोनों को उठाकर एक मंदिर में ले गए। गांव के पुजारी ने जब माँ और बेटी की हालत देखी तो वो समझ गया कि माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। पुजारी ने कहा, ये माँ की ममता है जो सभी धर्मों और संस्कृतियों में एक समान है। ये निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावना है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। गांव के लोगों ने माँ और बेटी की देखभाल की। धीरे धीरे माँ और बेटी स्वस्थ हो गए। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने माँ की ममता का सम्मान करना सीखा। उन्होंने समझा कि माँ की ममता ही सबसे बड़ी भक्ति है। ये कहानी दिखाती है कि माँ का प्यार बिना किसी शर्त के होता है। ये प्यार सभी धर्मों और संस्कृतियों में एक समान रूप से पाया जाता है। माँ की ममता ईश्वर के प्रेम का ही एक स्वरूप है।

हम प्रकृति के उपभोगकर्ता नहीं, हम इसके रक्षक हैं, और हर रक्षक को ईश्वर की विशेष कृपा मिलती है। एक बालक जो रोज एक पौधा लगाता था और बड़ा होकर एक गांव को जंगल बना गया, यही है इंसान का धर्म, सृष्टि को लौटाना। तो चलिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें शक्ति दो प्रकृति को समझने और खुद को बदलने की।

चलिए अब मैं आप सभी को एक और कहानी के माध्यम से इंसानियत की ओर लेके चलूंगी। सभी धर्मों की आत्मा में बसी एक कहानी जिसको मैंने नाम दिया है ईश्वर का स्पर्श। एक छोटा बच्चा हर दिन अपनी माँ से पूछता, माँ ईश्वर क्या है और वो क्या करते हैं? माँ हंसकर कहती, ईश्वर सबकी सेवा करते हैं बेटा। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। बच्चा खुद रसोई में गया, खुद सफाई की, दादी की मदद की। शाम को माँ ने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा क्या किया आज? बच्चा बोला, आज मैंने वही किया जो ईश्वर करते हैं, सेवा। क्योंकि अगर तुम मेरी माँ हो तो तुम्हारे अंदर ही तो ईश्वर रहते हैं। माँ की आंखें आंसू से भर गई और वो जान गई कि ममता, सेवा और प्रेम ही ईश्वर है।

आइए अब आपको सभी धर्मों के अनुसार माँ और ईश्वर के संबंध की ओर ले चलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार माँ वही है जहाँ परमात्मा छुपा होता है। गीता कहती है, अनन्य भक्त के हृदय में ही मैं निवास करता हूँ, और माँ का हृदय सबसे बड़ा मंदिर होता है। इस्लाम धर्म के अनुसार जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, ये एक हदीस है, और प्रकृति अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। हवा, पानी, सूरज, ये सब अल्लाह का करम है। ईसाई धर्म के अनुसार जीजस ने कहा है, लव दाई नाइबर्स, और माँ का प्यार सबसे बड़ा उदाहरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार माता की करुणा बुद्धत्व का बीज है। जो प्रकृति को पीड़ा देता है वो अपने भीतर के बोधिसत्व को मारता है। यहूदी धर्म के अनुसार अ मदर्स प्रेयर रीच्स गॉड बिफोर द एंजल्स डू, और प्रकृति परमेश्वर की ब्रीथ यानी श्वास है जो सृष्टि में बहती है। ईसाई धर्म में माँ मैडोना मैरी प्रभु यीशु की माँ को ईश्वर की माँ माना गया। ईसाई धर्म में माँ त्याग बलिदान और पवित्रता का प्रतीक है। मदर मैरी के आंचल में पवित्रता की सबसे सुंदर छाया मिलती है। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध ने कहा था, माँ का प्रेम अनमोल है जो कभी किसी से बदला नहीं मांगता। बौद्ध दृष्टिकोण में माँ करुणा दया और सह अस्तित्व का आधार है। यहूदी संस्कृति में माँ को परंपरा की रक्षक, संस्कारों की वाहक और आध्यात्मिक शिक्षक माना जाता है।

अब आपको ले चलते हैं आज की मंथन की ओर। माँ से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, और आत्मा से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। जो अपने मन की ममता को बचा लेता है वो दुनिया में कहीं भी ईश्वर को पा सकता है। हर धर्म का मूल एक ही है, प्रेम दो, सेवा करो और प्रकृति की रक्षा करो। माँ, ममता और प्रकृति, ये तीनों ही ईश्वरीय सत्ता के अलग अलग रूप हैं, और हर धर्म हर संस्कृति ने माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। आइए माँ की इस अद्भुत महिमा को हम हर धर्म की रोशनी में समझें। हिंदू धर्म में माँ मातृ देवो भव, माँ ही भगवान है। वेदों और उपनिषदों में माँ को सर्वप्रथम पूज्य कहा गया है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सभी स्त्री और माँ के ही स्वरूप हैं। माँ धरती है, माँ गंगा है, माँ शक्ति है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इस्लाम में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। उसकी सेवा, उसकी दुआ, उसके आंसू अल्लाह तक सीधे पहुंचते हैं। माँ की नाराजगी रब की नाराजगी मानी जाती है।

सिख धर्म में माँ, गुरु ग्रंथ साहिब में भी माँ को संस्कारों का बीज, कर्तव्य की प्रेरणा और पवित्र आत्मा का माध्यम कहा गया है। माता खेमा बख्शीश दीखान, जिथे बच्चे पलदे सच दे। माँ वो खेमा है जिसमें बच्चा सच में पलता है। तो चलिए, माँ की इतनी सारी महिमा अब हमने जान ही ली है, तो चलिए अब उस माँ के चरणों में एक भेंट अर्पण करते हैं।

माँ प्रकृति और इंसानियत। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो धरती की तरह सहती है, जल की तरह बहती है, आकाश की तरह सब कुछ समेट लेती है। माँ रोती नहीं पर अंदर से टूट जाती है, फिर भी मुस्कुराती है। वो इंसान नहीं, इंसानियत की जड़ है। जब कोई धर्म, कोई किताब, कोई महापुरुष माँ को ईश्वर से भी ऊंचा माने, तो समझ लीजिए माँ खुद ही एक धर्म है, एक अध्यात्म है, एक पूजा है। और माँ सृष्टि की सबसे पवित्र पहचान है, हर धर्म हर आत्मा की सबसे मूल शक्ति वो है माँ।

आध्यात्म में माँ का स्थान ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था बताया गया है। जब कोई साधक आंखें बंद करता है तो उसकी आत्मा सबसे पहले माँ की मूरत को देखती है। माँ का नाम जपने मात्र से शांति मिलती है। माँ हर पंथ हर विचारधारा में एकमात्र अटूट प्रेम है। जैन धर्म में माँ को जन्मदाता नहीं धर्मदाता कहा गया है। पारसी धर्म में माँ प्रकृति की शुद्धता और नैतिकता का स्रोत मानी जाती है। आदिवासी परंपराओं में माँ को भूमि अग्नि और जल की देवी कहा गया है। माँ की गोद में ईश्वर की गोद जैसा सुकून होता है। तो चलिए इस सुकून की अनुभूति करते हैं इस माँ की भेंट के माध्यम से।

माँ और इंसानियत दोनों बिना स्वार्थ के जीती हैं। माँ बिना शर्त प्यार करती हैं। इंसानियत भी वही है जो बिना मतलब किसी के आंसू पोछे। माँ भूखी सो सकती है पर बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। इंसानियत वही है जो दूसरों के लिए जीना सिखा दे। इसलिए माँ और इंसानियत एक दूसरे का प्रतिबिंब है। चलिए आपको अब माँ के स्पर्श से जुड़ा एक सूफियाना विचार सुनाती हूँ। माँ की हथेली पर खुदा की मोहब्बत उतरती है और उसकी दुआओं में जन्नत से भी बेहतर ठिकाना मिलता है। और अब आज के एपिसोड की आखिरी बात, माँ पर कोई धर्म नहीं होता, बेशक उसका कोई मजहब नहीं, पर हर मजहब उसी से शुरू होता है। उसकी कोई भाषा नहीं, पर हर प्रेम उसी की बोली से जन्मता है। उसकी कोई सीमा नहीं, पर हर जीवन उसी की गोद में सीमित होता है। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो सब अधूरा है। माँ रब की रचना नहीं, बल्कि रब भी शायद माँ की रचना हो। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं लूंगी आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री राम, अल्लाह हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम। ये है गोंडा, शहर की धड़कन। और आज फाइनली शुरू हो गया है सितंबर। जी हाँ, देखते ही देखते अगस्त गया, सितंबर आ गया, यानी 9th मंथ स्टार्ट हो गया है और यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है हमारी और आपकी 2026 के सितंबर की। सो भाई, जब भी कुछ गुज़रता है तो वो यूं ही तो नहीं गुज़रता, कुछ ना कुछ दे कर जाता है और कुछ चीज़ें हमसे ले करके जाता है। सो अगस्त जो गुज़रा है, यकीनन कई सारी आपको मेमोरीज़ दे गया है और स्पेशली अगर हम बात करें तो फेस्टिव वाइब काफ़ी ज़्यादा मिली। अब सितंबर की स्टार्टिंग हुई है, आज से एक तारीख है और मुझे लगता है ये मंथ आपके लिए, मेरे लिए और भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। एक उम्मीद ही तो होती है जो चीज़ों को और बेहतर बना देती है, राइट? सो चलिए इसी उम्मीद के सहारे आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो के सबसे बेहतरीन, क्या, ऑफ कोर्स सबसे बेहतरीन टाइम थॉट ऑफ द डे की तरफ, क्योंकि आप हमेशा थॉट ऑफ द डे सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा होता है भाई ये जो थॉट ऑफ द डे है ये हमारी चीज़ों को बेहतर बनाते हैं। और जब बात आए कि हम मंथ के पहली तारीख को यानी पहले ही दिन सुन रहे हों तो फिर तब तो और भी ज़्यादा अलग हो जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ना? तो चलिए, फ़िलहाल तो आपसे हमारी बातचीत होती ही रहती है और कहीं ना कहीं इस बात का भी प्रमाण है कि भाई हम जो है वो आज आपको एक ऐसे खूबसूरत से थॉट से मिलाने वाले हैं जो आपके सितंबर को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने वाला है। और ये जो छोटे छोटे से थॉट्स होते हैं ये हमारी एक दिन की एक डिसीज़न होता है और वही डिसीज़न हमारी लाइफ में आगे जा करके अगर जब हम रोज़मर्रा में इसको ले आते हैं, यानी कई दिन तक जब इसको थोड़ा थोड़ा वक्त देते हैं, तो ये हमारी लाइफ का वो फेज़ लेके आता है जिसको सच में देखकर हम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा हमको ऐसी ही चीज़ें मिलती है जो वैसे तो नहीं मिलती, लेकिन जब इस तरह की चीज़ों को हम अपनी आदत में ले आते हैं तो डेफिनेटली मिल जाती है। तो चलिए भाई, बताते हैं क्या है आज का फर्स्ट ऑफ सितंबर का स्पेशल थॉट।
3: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

एक छोटी सी ऐसी आदत जो ना जाने कितनी सारी आपकी बेहतरीन आदत बनवा सकती है। जी हाँ, वही है आज की थॉट ऑफ द डे। सो ऐसा क्या हम कहने वाले आज की थॉट ऑफ द डे ने जो और भी कई सारी आदतों को बना लेगा। सवाल तो अच्छा है, चलिए बता दें। दरअसल आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो कह रहा है कि हर दिन खुद से कुछ सकारात्मक कहने की आदत डालें। जी हाँ, एक आदत बनाना है और रोज खुद से कुछ सकारात्मक कहना है। अब यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक का पहला मैं बता दूं कि इसका कोई ऐसा मायने नहीं है कि मैं दुनिया जीत लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसी किसी चीज़ में नहीं, क्योंकि आप भी मानते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होती है। आपकी भी फैमिली है, आपके भी फ्रेंड्स हैं, आपका अगर कोई एक भी शख्स बहुत अच्छे से मानता है, अगर आप एक अच्छा खाना खाते हैं, कुछ भी ऐसा है, तो जाहिर है आप उसके लिए शुक्रगुजार होंगे ही होंगे। तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत बेहतर है, उसके मद्देनज़र रखते हुए हर दिन खुद से ऐसी ही कोई सकारात्मक बात कहनी है। न सिर्फ कहनी है बल्कि इसकी आदत ही डाल लेनी है। जी हाँ, आदत जब हम डाल लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आदत होती है ख़ुद से कुछ कहने की, जब भी हम कहते हैं अगर हम गौर करें तो शायद हम ऐसी चीज़ें कहते हैं जिससे हम खुद ही परेशान हो जाते हैं, और ये आदत किसी और की नहीं, हमारी आपकी ही होती है। सो इसलिए इस आदत को ज़रा हमको समझना पड़ेगा कि यार हमें जो अपनी आदत बनानी है वो कुछ ऐसी ही बनानी है जिससे कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। और अगर सोचिए हम हर रोज़ कुछ अपने से खुद से ऐसी बातें कहते हैं जो सच में हमारे जीवन में है, तो कितनी बड़ी बात होगी। यानी हम प्यार का इजहार तो किसी दूसरे से कर देते हैं, लेकिन हम खुद से कैसे करते हैं? हमारी लव लैंग्वेज अपने लिए क्या है? हो सकता हो किसी के लिए खाना बनाना हो सकता हो किसी के लिए डायरी में कुछ शब्दों को लिख लेना हो सकता हो किसी का छत पे जाके खुला आसमान देखना हो, कुछ भी होता हो। अगर शब्दों की बात करें तो कुछ वो सही शब्द जो आपके जीवन में है, जो आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते हैं, वो अगर आप खुद से कहते हैं तो आप खुद को ही प्यार करते हैं, और इससे प्यारा और तो कुछ मुझे लगता नहीं इस दुनिया इस जहां में। तो चलिए भाई, आज के बाद से हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ खुद से कुछ बेहतर कहेंगे, और ये करके आप देखिए, यकीन मानिए आज 1 सितंबर है, सितंबर की पहली तारीख है, सितंबर की लास्ट डेट में जब 30th of September आएगा तो फिर देखिएगा इस एक महीने की जर्नी में आप कितना ज़्यादा चेंज हो चुके होंगे। डेफिनेटली इट विल वर्क, ये करता है और करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मैं नहीं खाली कह रहा, ऐसा मेरे साथ साथ दुनिया के हर वो शख्स कह रहे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। इवन आप खुद भी अगर देखेंगे तो जिन चीज़ों को आपने सोच के चले थे ये होगी वो आपने कर दिया, और जिन चीज़ों को आप सोचे थे नहीं होगा तो वो नहीं हुआ। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अपने से कुछ ऐसे लफ्ज़ जो सच में आपके लिए सही हैं, मायने रखते हैं, वो आप खुद से बोलें, ये ज़रूरी है आपके लिए। आई होप कि ये बात आप तक पहुँच गई होगी और इस बात को आप बखूबी समझ भी रहे हैं। सो यही है आज का थॉट ऑफ द डे, और मुझे लगता है ये थॉट ऑफ द डे आपको पसंद ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, आप इस बात को समझ ज़रूर रहे होंगे। फ़िलहाल आप खुद से कितना समझ रहे हैं और ये बात आपको कितना समझा पा रही है, ये तो आप खुद ही बताने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आदत जो है आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है, जिसके लिए आप शायद रेडी हैं। यस, आप हमेशा से रेडी रहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप रेडी हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिलहाल इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं और वापस से आने वाले हैं, और आने के बाद देखने वाले हैं कि आप आखिर किन बातों को समझ पा रहे हैं और आपने इन चीज़ों को कैसे लिया है, कि मुझे लगता है कि ये बड़ा ही प्यारा थॉट है, और जब बात आए किसी मंथ के स्टार्टिंग की तो ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है
क्योंकि इससे मेजर आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि लास्ट में मंथ के क्या चेंजेस आए हैं। और यस, मुझे लगता है कि भाई इससे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ ही जाते हैं। अब आप खुद किस तरह से फील करने वाले हैं, खुद उसको कैसे देखने वाले हैं, ये आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आपको एक बेहतरीन सा सॉन्ग सुनाते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि मॉर्निंग का शो चल रहा है गुड मॉर्निंग गोंडा आपके गोंडा एफएम पर, और मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान है आपके संग। और फिलहाल अभी आपने सुन लिया है आज का थॉट ऑफ द डे। सो कैसा लगा ये तो आप खुद ही बताने वाले हैं।

0: इतनी सारी तो खुशियां हैं भाई। और चलिए इन्हीं खुशियों के बीच में वापस से हम आ गए हैं, यानी आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, और अब देखने वाले हैं क्या कुछ लिखा है आपने आज की मॉर्निंग को लेकर के, आज की पहली तारीख को लेकर के, और साथ ही साथ आज के थॉट ऑफ द डे को लेकर के आपका क्या है मानना। क्योंकि आप ट्यून करते हैं हमको फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, और उसी एप्लीकेशन से जब आप सुनते हैं तो चैट का ऑप्शन आपको मिलता है, उसी चैट पर आप जो कुछ लिखते हैं वो हमको नज़र आ जाता है लाइव। सो क्या लिखा है और किसने लिखा है, आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो जो सबसे पहला मैसेज आया है वो सोनिया तिवारी जी का आया है और लिखा है, हाय एवरीवन, हेलो, सॉन्ग आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच। उसके बाद शमा जी है फ्रॉम लखनऊ, आपने लिखा है गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू। अरविंद हैं, गुड मॉर्निंग लिखते हैं, गुड मॉर्निंग। प्रीति जी हैं बहराइच से, लिखती हैं, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। सविता दुबे जी हैं हरखापुर से, लिखती हैं, सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी, आपका भी स्वागत करते हैं। इसके बाद ऑफ कोर्स चलिए दूसरे मैसेज की तरफ चलते हैं, और गीता श्रीवास्तव जी आप भी आ गए, गुड मॉर्निंग आरजेस, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम है। एंड यस, सबसे पहले प्रीति जी ने रिएक्शन दिया है थॉट पर और लिखती हैं आपकी ऑसम थॉट, वी पॉजिटिव हूँ और सभी को बनाने की कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छा विचार है और बहुत अच्छी कोशिश, थैंक यू। एंड सविता दुबे जी हैं, आप लिखती हैं, बहुत सुंदर विचार, सुविचार, थैंक यू, और वेरी नाइस थॉट लिखा है हमारी गीता जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को थॉट पसंद आया। एंड आई होप कि अब आप लोग भी रोज़ खुद से बोलने वाली हैं अपने बारे में कुछ पॉजिटिव बातें, और हाँ प्लीज़ पॉजिटिव बातों में सिर्फ जिम्मेदारियों को मत गिनाइएगा खुद से, अपनी पर्सनल उन चीज़ों को ज़रूर रिमाइंडर दीजिएगा, उसके बारे में बात करिएगा जो यूजुअली आप किसी से नहीं कहते, एंड वो आपको लगता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ है, मे बी आपका लिखना, मे बी आपका किसी को समझा लेना, मे बी आपका गाना गाना, मे बी आपका आर्ट्स बनाना, कुछ भी ऐसा है उसके बारे में ज़रूर अच्छा कहिएगा। और अपनी सोच को, क्योंकि जिस तरह आप लोग अलग अलग मुद्दों पर अपनी बातें रखते हैं, आप ये जानिए कि इस जहां में, इस दौर में आप उन लोगों में शुमार हैं जो बेहतर सोचते हैं और जो बेहतर करने का मादा रखते हैं, इसलिए ये बात तो आप ख़ुद से रोज़ ज़रूर कहिएगा। फ़िलहाल मुझे लगता है कि हर किसी में ये स्पार्क है, बस थोड़ा सा कम कई बार हो जाता है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन 1 सितंबर को इस थॉट ने बता दिया है कि भाई रोज़ कुछ बातें खुद से इसी तरह की कहनी है, और उसके बाद देखना है जो मैजिक हमारी लाइफ में होने वाला है ना। और इसी मैजिक को सुनते हुए हमारे लकी अली जी आ गए हैं हमारे गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, तो चलिए उनको सामने ही ले आते हैं। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM, रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM, यही है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9286 9976 9216 9819716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

आई होप कि आपको ये गाना याद आ गया होगा। चलिए इस खूबसूरत से गाने को तो सुन ही लेते हैं, लेकिन वापस से आने के बाद आपको ले चलते हैं सिटी के अपडेट यानी गोंडा अपडेट्स की तरफ। फिलहाल आप ट्यून किए हुए हैं गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।

0: की अपडेट्स। चलिए फिलहाल वक्त आ गया है आपको सिटी की अपडेट की तरफ ले चलने का और बताने का कि भाई आज शहर की अपडेट क्या है, यानी सिटी अपडेट में आज आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान क्या लेकर आए हैं, क्या बताने वाले हैं और वो सब कुछ आपके काम का होने वाला है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो आपको चलिए ले चलते हैं और बताते हैं क्या कुछ चल रहा है शहर में। तो सबसे पहले जो अपडेट आ रही है वो कल होने वाले रोज़गार मेले को लेकर के आ रही है, क्योंकि आपको हम बता दें कि क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में 2 सितंबर को रोज़गार मेले का आयोजन होना है। इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और आईटीआई पास जो भी कैंडिडेट्स हैं वो शामिल हो सकते हैं। ज़िला सेवा योजन अधिकारी प्रिया गौतम ने बताया है कि मेले के लिए कई सारी कंपनीज़ को रोज़गार संगम पोर्टल पर आमंत्रित किया गया है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो पोर्टल पर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी योग्यता के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं और कैंडिडेट्स को 2 सितंबर को सुबह 10:30 बजे क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय पहुंचना होगा। जी हाँ, यानी कल को सुबह 10:30 बजे आपको जाना होगा और साथ ही अपने साथ में आपको मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक फ़ोटो ले जाना ज़रूरी होगा। कंपनीज़ जो है आपसे इंटरव्यू करने वाली है, यानी जो लोग हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन या फिर आईटीआई पास आउट हैं वो कल होने वाले इस रोज़गार मेले में शामिल हो सकते हैं। और जैसा कि बताया कि भाई ये जो रोज़गार मेला हो रहा है वो क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय पर ही हो रहा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है गोंडा में ही पैथ काइंड लैब की फ्री फ्रेंचाइजी के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सो ज़िले में ही जो चल रहा था पैथ काइंड की सभी फ्रेंचाइजी के संचालन पर फिलहाल CMO डॉक्टर संतलाल पटेल ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, क्योंकि शिकायत के बाद CMO ने फ्रेंचाइजी के जो संचालक हैं उनसे स्टाफ से शैक्षिक योग्यता, उनका पंजीकरण, उनका प्रशिक्षण और बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण से जुड़े हुए कई सारे कागज़ के लिए तलब किया है। सो न्यू कॉलोनी गाजी कॉम्प्लेक्स बड़गांव निवासी फिलहाल उन्होंने बताया कि DM से शिकायत की थी। आरोप है कि 18 अगस्त की शाम बड़गांव पुलिस चौकी के पास GGIC के सामने मौजूद पैथ काइंड कलेक्शन सेंटर पर उन्होंने HBNC की जांच कराई थी और जो ब्लड का नमूना था उसको देने के कुछ ही देर बाद हाथ में काला धब्बा पड़ गया और सूजन आ गई। सो फिलहाल DM प्रियंका निरंजन ने CMO को शिकायत की जांच कर कार्रवाई करने को कहा। CMO ने सेंटर पर काम करने वाले कर्मचारियों की योग्यता, प्रशिक्षण की जांच शुरू कर दी है और CMO की तरफ से जारी नोटिस में फ्रेंचाइजी आवंटन से जुड़े नियम और शासनादेश, कार्यरत स्टाफ की सूची, उनकी शैक्षिक डिग्री और पंजीकरण और बायो वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था से संबंधित जानकारी जो है वो मांगी है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कि भाई राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं सुनीत मित्र। जी हाँ, सो बाढ़ प्रभावित और पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय गोकुला की तस्वीर बदलने वाले जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं सुनीत मित्र, इनका सिलेक्शन राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए हुआ है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर लखनऊ में आयोजित समारोह में इन्हें सम्मानित किया जाएगा और पुरस्कार के तहत इन्हें 20,000 रुपये की नकद धनराशि, साथ ही प्रशस्ति पत्र और 2 साल का सेवा विस्तार भी मिलने की बात है। सो नवाबगंज के प्राथमिक विद्यालय गोकुला में साल 2013 में प्रधानाध्यापक का पद संभालने के वक्त तकरीबन 150 बच्चे इसमें रजिस्टर्ड थे। बेहतर शैक्षिक माहौल, आधुनिक संसाधनों और लगातार कोशिशों के चलते स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ते गए। पहले 252, फिर 300 और अब पूरे विद्यालय में तकरीबन 400 बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। सो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तमाम चुनौतियों के बावजूद सुनीत मित्र ने स्कूल के बच्चों के लिए बेहतर और आकर्षक बनाने पर जोर दिया। निजी विद्यालयों की तर्ज पर आधुनिक संसाधन भी वहां पे जुटाएं और पढ़ाई को रुचिकर बनाने की कोशिश भी करते रहें। सो विद्यालय के बच्चे जिला और मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं में कई बार बेहतर प्रदर्शन भी कर चुके हैं और यहाँ से पढ़े कई स्टूडेंट्स आज कई सारी सरकारी सेवाओं में भी काम कर रहे हैं। सो सुनीत मित्र के 5 शोध पत्र भी निकल चुके हैं और विद्यालय के जो शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए की गई कोशिशों को राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए इनका सिलेक्शन
प्रमुख आधार माना जा रहा है। सो फिलहाल ये अगली अपडेट थी और इसके बाद चलते हैं इसकी अगली अपडेट की तरफ और वो आ रही है कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जो शहर की बिजली व्यवस्था है वो बिगड़ी है, जिसमें सिविल लाइंस विष्णुपुरी और झंझरी के इलाके में कई घंटे गुल रही है बिजली। जी हाँ, सो तेज़ हवा के साथ बारिश ने जो है वो मंडे को शहर की जो बिजली व्यवस्था है यानी कल की वो बिगाड़ दी और सिविल लाइंस के बादशाह बाग विष्णुपुरी कॉलोनी समेत कई इलाकों में घंटों जो है वो आपूर्ति नहीं हुई, जिससे कि वहाँ के रहने वाले बाशिंदों को परेशानी भी काफ़ी ज़्यादा उठानी पड़े। सो सिविल लाइंस विद्युत उपकेंद्र के जो अवर अभियंता हैं उन्होंने बताया कि बादशाह बाग में 11 केवी लाइन पर पेड़ की डाल टूटकर गिरने से आपूर्ति ठप हो गई थी। जिलाधिकारी आवास के पास आउटडोर लाइन में खराबी आने से भी बिजली जो है वो बाधित रही थी। सो फिलहाल फॉल्ट से एक घंटे गुल रही थी बिजली। झंझरी विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र के सुबह करीब 8:30 बजे से बिजली गुल हो गई और करीब एक घंटे बाद लोगों ने उपकेंद्र पर फोन करके जानकारी ली तो फॉल्ट होने की बात सामने आई। फिलहाल कर्मचारियों ने फॉल्ट ठीक करके 10 बजे आपूर्ति बहाल कर दी है। इसके बाद चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि आपको गोंडा से ही मिलने वाली है और अगली जो अपडेट आ रही है उसको लेकर के हम बता दें आपको कि आज सुबह 9 बजे से ब्लॉक संसाधन केंद्र परसपुर में शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा मिशन शक्ति के तहत महिला थाने की टीम अंबेडकर चौराहे पर जागरूकता अभियान आज शाम 4 बजे से चलाएगी। साथ ही शाम 5 बजे से गांधी पार्क में ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको हम बता दें कि अगली अपडेट में प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता भी सम्मानित किए गए हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ थाने की कार्य प्रणाली और पुलिसिंग से रूबरू कराया गया है जो बच्चियां हैं स्कूल्स की उनको शहर के ही। सो इस तरह से अगली अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं और फिलहाल जो है वो ये है कि 15 तक अपलोड होना है कार्य योजना। सो ज़िले की 9 क्षेत्र पंचायतों

की जो वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना है अब तक ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई है। समीक्षा में लापरवाही सामने आने पर फिलहाल प्रभारी DPRO GD जैन ने जो संबंधित BDO हैं उनको 15 सितंबर तक कार्य योजना अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जिन बच्चों को छात्रवृत्ति का मौका नहीं मिला था उनको दोबारा मिलने वाला है। सो दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में टेक्निकल खामी और PFMS से आवेदन अस्वीकृत होने पर या फिर आवेदन अग्रसारित नहीं होने से जो बच्चे वंचित रह गए थे, जो पात्र छात्र, उनको एक और मौका मिलने वाला है। सो शिक्षण संस्थानों को 1-7 सितंबर तक डेटा तैयार करना होगा। इसके बाद सत्यापन और त्रुटि सुधार की प्रक्रिया करके 19 सितंबर तक पात्र डाटा जो है वो अग्रसारित किया जाएगा। और ज़िला समाज कल्याण अधिकारी ने फिलहाल संस्थानों को तय जो समय सारणी है उसके हिसाब से कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि अभिभावकों को दी गई दीक्षा ऐप की जानकारी। जी हाँ, सो बिलवा नोहर में मौजूद उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल अभिभावक शिक्षक बैठक हुई और प्रधानाध्यापक ने बच्चों की जो नियमित उपस्थिति उस पर जोर दिया। विज्ञान शिक्षक ने DBT से मिली धनराशि का इस्तेमाल, निपुण आंकलन और बच्चों की जो बौद्धिक विकास पर है वो चर्चा की। सर्वाधिक उपस्थित रहने वाले बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको सम्मानित भी किया गया और अभिभावकों ने पुस्तकालय और ICT लैब भी देखी और उन्हें निपुण भारत और दीक्षा ऐप की जानकारी दी गई। इस मौके पर कई सारे सम्मानित जन उपस्थित भी रहे। इसके अलावा आपको हम बता दें कि भाई जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर अब शपथ पत्र से होगा दाखिला। जी हाँ, सो जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से अब किसी बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं अटकेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो एडमिशन प्रोसेस है आसान करते हुए सामान्य शपथ पत्र के आधार पर दाखिला देने की परमिशन दी है। सो नए प्राविधान से ज़िले के तकरीबन 51,000 स्टूडेंट्स को UDAS पोर्टल पर डेटा फीड करने में तेज़ी आने की उम्मीद है। सो नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन ज़िले में बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उनका विवरण अब तक UDAS पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सका है, जिसको लेकर के ये बात सामने आई है। सो आई होप कि ये जानकारी आप तक पहुँच गई होगी और कहीं ना कहीं भाई आपके काफ़ी ज़्यादा काम की भी रही होगी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के बाद में ही अब चलते हैं फिलहाल अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, क्योंकि अगला म्यूज़िकल ब्रेक आपका इंतज़ार कर रहा है। दिन वापस से आने वाले हैं और आने के बाद हमारी और आपकी चर्चाएं जो है वो आगे बढ़ने वाली। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

भाइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो फिलहाल चलिए आप पर ले चलते हैं आगे की तरफ, और कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम की होने वाली हैं और आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। फिलहाल एक ऐसी

बात जो सच में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है और वो है आयरन। सो अक्सर आयरन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? कहते हैं कि भाई आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। अगर आपको अंदाज़ा है कि आयरन की कमी से आखिर क्या क्या होता है, तो फटाफट से मैसेज करिए, चैट बॉक्स पर बताइए कि आयरन की कमी से आखिर कौन कौन सी दिक्कत होती है, और क्या आपको कभी आयरन की कमी होने से आपकी बॉडी पर कोई ऐसा असर आया है या नहीं, ये ज़रूर सोच करके बताइए। और वापस से आते हैं, देन बताते हैं कि हाँ आयरन की कमी से फ़िलहाल क्या क्या हो जाता है।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: सो भाई हमने पूछा था कि आयरन की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसको लेकर के मैंने कहा भाई आप लोग चैट बॉक्स पे बता सकते हैं। फिलहाल आपके रिस्पॉन्सेज भी आ गए हैं और हम बताते हैं कि क्या कुछ लिख भेजा है आपने, आयरन की कमी से क्या कुछ हो सकता है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

तो भाई जो सबसे पहला रिस्पॉन्ड आया है वो आया है प्रीति जी की तरफ से बहराइच से कि आयरन की कमी से एनीमिया ओके। एंड गीता जी कहती हैं कि आयरन की कमी से ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिससे बॉडी का हर अंग तक ब्लड के साथ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और सांस फूलने की प्रॉब्लम हो जाती है और कमज़ोरी थकान महसूस होती है। एक बार हुआ था जब पहला बेबी होने को था, डॉक्टर की देख रेख में सही हो गया। थैंक यू सो मच टू यू प्रीति जी एंड हमारी गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बहुत अच्छी बात है और अब हम आपको भी बताने वाले हैं कि आयरन की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो स्पेशली हम देखते हैं फीमेल्स में लेकर के इसको बहुत ज़्यादा बात की जाती है और ये बात की भी जानी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू बन करके आता है स्पेशली फीमेल्स में। हालाँकि ये सिर्फ फीमेल की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेल्स में भी होते हैं, लेकिन हाँ वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है जो ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है वो फीमेल्स होती हैं। सो बॉडी में आयरन की कमी से होने पर जो है वो ग्लोबिन का यानी हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो सकता है जिससे क्या हो जाता है एनीमिया, जैसा कि अभी हमारी प्रीति जी ने बोला और हमारी गीता जी ने बताया। इसकी वजह से रोज़मर्रा के जो काम है उसमें थकान कमज़ोरी महसूस हो सकती है, जैसा कि गीता जी ने बताया भी था कि उनके साथ ये प्रॉब्लम थी। सो आयरन कमी के संकेत क्या होते हैं कि आयरन की कमी है, अगर लगातार थकान रहती है यानी आराम करने के बाद भी थकान लग रही है या वीकनेस लग रही है कमज़ोरी, तो ये आयरन की कमी होने का एक संकेत माना जा सकता है। सांस का फूलना, अगर अननेसेसरीली सांस लगातार फूल रही है, चलिए आप कहीं छत पे चढ़ के गए हैं या दौड़ के आए हैं तो एक बार को माना जाता है, लेकिन अगर यूं ही फूल रही है तो एक आयरन की कमी का संकेत ये भी हो सकता है। स्किन का पीला पड़ना यानी स्किन पे जो रेडनेस होती है वो ना होकर के हल्का पीला पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि आयरन की कमी का एक संकेत ये भी है। चक्कर आना और सिर दर्द, सो हल्का सा चक्कर आता है और सिर दर्द होता है तो भी समझ लीजिए कि आयरन की कमी है। और नाखून का कमज़ोर हो जाना, यानी ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि आयरन की कमी है। लगातार थकान, कमज़ोरी, सांस का फूलना, स्किन का पीला पड़ना, चक्कर और सिर दर्द, नाखून का कमज़ोर होना। सो आयरन की कमी को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है और लगातार अगर लक्षण बना रहता है तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना है। जी हाँ, क्योंकि आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। अब आप ख़ुद भी बता सकती हैं कि आप आयरन की कमी को दूर करने के लिए क्या करती हैं या क्या करते हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम समझ लिया है तो सॉल्यूशन भी आसपास ही ज़रूर होगा। लेकिन हाँ, आयरन की कमी किसी को भी नहीं होने देना है, चाहे वो मेल हो और स्पेशली फीमेल्स।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी और

0: की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली पीजी कॉलेज गोंडा।
2: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे भाई झब्बू।
1: यस सर।
0: जरा एक सवाल का जवाब दो।
1: यस सर।
2: खड़े हो जाओ।
1: खड़े हो गए।
0: ये बताओ कि उसने आत्महत्या कर ली और उसे आत्महत्या करनी पड़ी, इन दोनों में क्या अंतर है?

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

हाँ जी, आपका एक बार वापस से वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और मैंने चूंकि पूछा था कि भाई क्या क्या तरीके हैं जिससे आप आयरन की कमी दूर करते हैं, हमारी गीता जी ने बोला है कि ज़्यादातर हरी सब्जियों को वो भी लोहे की कढ़ाई में बना करके, और बट्टा भी आयरन का और स्रोत भी है। यस ऑफ कोर्स, विटामिन सी जिसमें आंवला, ऑरेंज, कीवी आदि खाएं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया कि भाई ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, ये आयरन का एक बेहतरीन सोर्स होता है, और इसको अभी आपने रिकमेंड किया है। अगर वैसे बताया जाए तो प्लांट बेस्ड जो सोर्सेज होते हैं उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, दालें हैं, फलियां हैं। दालों में स्पेशली मसूर की, मूंग की, राजमा और छोले आते हैं। इसके अलावा बीज और मेवे भी आते हैं जिसमें कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स, तिल, काजू और बादाम आता है। बाकी में गुड़ और चना तो ऑफ कोर्स है ही है, चुकंदर, अनार और ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं जिसमें किशमिश और खजूर आता है। सो ये सब जो है ये आयरन के बहुत बेहतरीन सोर्सेज हैं, एंड इन सोर्सेज का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होता है। फ़िलहाल वक्त है आपको बॉलीवुड की दुनिया में ले चलने का। तो फ़िलहाल एक मूवी आ रही है दायरा, जो कि कानून व्यवस्था की कहानी है, और इसमें दो पुलिस अधिकारी हैं जो दायरे में रहकर अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। दायरा आखिर कौन सी मूवी है ये? तो आपको हम बता दें कि मेघना गुलजार की निर्देशित फिल्म दायरा का ट्रेलर कल रिलीज हुआ है, और ट्रेलर में करीना कपूर ने खाकी वर्दी पहने नजर आती हैं। ये एक आपराधिक मामला सुलझा रही हैं और इस केस को पृथ्वीराज सुकुमारन भी सुलझा रहे हैं। ऐसे में दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। फिल्म में करीना कपूर को डीसीपी अजूनी कोहली की भूमिका में देखा जाएगा, वहीं पृथ्वीराज को डीसीपी रमन कुमार के रूप में। सो बात आती है कि भाई ये मूवी कब रिलीज हो रही है। सो ये क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसमें पेन स्टूडियोज़ और जंगली पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया, और ये फिल्म 18 सितंबर को रिलीज होने वाली है। सो आइए बात करते हैं भाई निर्देशिका मेघना गुलजार की, जिनकी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं कहती, सवाल भी छोड़ जाती हैं। अब वो दायरा लेकर आई हैं जिसमें करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे। मेघना से जो बातचीत हुई उसको लेकर के कुछ अंश हम आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने मूवी को लेकर के क्या कहा। सो मेघना गुलजार ने फिल्म की कहानी और कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे पर बात की। इन्होंने करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म के लिए हामी से लेकर बॉक्स ऑफिस को लेकर भी अपनी सोच साझा की। सो इसका विचार इनको कोविड में आया। फिल्म की कहानी का आइडिया कब आया, इस सवाल पर मेघना कहती कि इस कहानी का विचार कोविड के दौरान आया। सन 2020 में जंगली पिक्चर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे ये कहानी बनाने के लिए चुना। उस वक्त ये तकरीबन 45 पन्नों की थी। मुझे पता था इसके बाद सैम बहादुर बनाने वाली हूँ, लेकिन ये भी यकीन था कि सैम बहादुर के बाद जब मैं इस पर काम शुरू करूँगी तब तक ये विषय पुराना नहीं होगा। जहाँ तक बात दायरे की है, ये ऐसी चीज़ है जो आपको बांध सकता है और आज़ाद भी कर सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस दायरे को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से जीते हैं। फिल्म जो है वो कानून व्यवस्था की कहानी है। दो पुलिस अधिकारी हैं जो अपना दायरा भी निभाते हैं और कानून के दायरे में भी रहते हैं। सो झटपट हो गई। हाँ, फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को लेकर के मेघना ने बताया कि दोनों ने इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड दिया कि मुझे यकीन नहीं हुआ। उस वक्त पृथ्वीराज 3 फिल्मों में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं वक्त कैसे निकालूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा, लेकिन करूंगा ज़रूर। और ये फैसला उन्होंने तकरीबन 1 घंटे के अंदर ले लिया था। वहीं करीना को मैंने बस एक मैसेज किया कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। उन्होंने मैं भी करना चाहती हूँ का रिस्पॉन्ड किया। सो करीना का ऐसा कहना कि मैं अपनी कमाई समझती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ, इस फिल्म के बारे में बात करनी थी। उनका जवाब आया, मैं वैसे भी आपके साथ फिल्म कर रही हूँ, फिर भी हम मिल सकते हैं, बस यहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई। सो किसी के पास फ़िलहाल कोई फार्मूला नहीं है। बताया उन्होंने कि फिल्म कितना बिजनेस करेगी ये दिमाग में रहता है। इस सवाल पर मेघना ने जवाब दिया कि नहीं, मैं इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती कि अगर मैं इस तरह शूट करूँगी, ऐसा करूँगी तो मेरी फिल्म इतने करोड़ कमाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें
हम में से किसी भी फिल्म मेकर के पास ऐसा कोई फॉर्मूला है ये कहने का कि फिल्म हिट होगी या सुपर हिट। बेहतर यही है कि आप अपना काम ईमानदारी से करें और फिर दर्शकों पर छोड़ दें। सो फिलहाल दायरा को लेकर के ये बात कही जा रही है, और जैसा कि बताया कि भाई इसी महीने 18 सितंबर को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, फिल्म दायरा, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन और करीना कपूर आमने सामने DCP की भूमिका में अपने अपने दायरे में अपना अपना फ़र्ज़ निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। अब इस मूवी को लेकर के आपके खुद के क्या थॉट हैं ये आप हमको बता सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई जितना मैंने इसके बारे में फ़िलहाल बता दिया उतने में आपने अंदाज़ा लगा लिया है कि ये मूवी आप देखने जा रहे हैं या नहीं। सो जो भी आपका थॉट बन रहा है उसको लेकर के भी आप अपने थॉट्स को बता सकते हैं कि आपका क्या थॉट है। फ़िलहाल हम लेकर चल रहे हैं आपको अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो फिलहाल कई सारे मैसेजेस भी आ गए हैं और देखते देखते हमने आज काफ़ी सारी बात की और इवन चलने का वक्त तक आया आसपास। चलिए, वो तो हम बाद में विदा लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उससे पहले काफ़ी सारे मैसेजेस जो आपकी तरफ से आए हैं वो हम ज़रूर पढ़ने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आखिर आपने क्या कुछ लिखा है, क्योंकि आपका काफ़ी सारा प्यार जो है वो हमको गुड मॉर्निंग गोंडा शो में मिल रहा है, लगातार मिल रहा है और भरपूर मिलता है। जितना कहूँ, जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है, क्योंकि जिस तरह से आप नवाजते हैं मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये बड़ा ही स्पेशल फील कराने के लिए किसी भी शख्स के लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और मैसेजेस की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स मैसेजेस की तरफ चलते हैं, और मैसेजेस में जो हमने लास्ट मैसेज पढ़ा था उसके बाद में हमारी आशु मिश्र जी फ्रॉम लखनऊ से आ चुकी हैं और आपने भी लिखा है, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। सुजीत जी हैं, गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग टू यू। सो ये थे चैट बॉक्स के मैसेजेस। इसके अलावा आप हमको फ्रिक्वेंसी पर, रेडियो गार्डन पर और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM की एप्लीकेशन से सुन रहे हैं। सो आप सब लोगों का आरजे अदनान बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू सो मच। फिलहाल इजाज़त दीजिए क्योंकि चलने का समय हो चला है। आज का मॉर्निंग शो आपको कैसा लगा हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और अभी आप इस गाने को एंजॉय करिए और आने वाले शोज़ को।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 92 60 981 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: बरसों मेघा धड़ाके से, बुढ़िया मर गई छोके से, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे।
6: सिमी, ये क्या बच्ची बनी हो और ये क्या बोल रही हो?
5: अरे समता दी, बचपन में जब पानी बरसता था तो गांव में हम बहुत सारे कजिन्स थे, सब पानी में भीग कर यही बोलते थे। छोटे छोटे मेढक के बच्चे पकड़ते थे, कागज की नाव बनाते थे और मौसम की पहली बारिश देख कर बस बचपन ही याद आ गया।
6: सच में बचपन कितना प्यारा होता है, काश हम कभी बड़े ही ना होते। बारिश ने तो कितनी राहत दी है आपकी, तो इतनी गर्मी भी तो पड़ी है। भगवान करे अब कई दिन तक ऐसे ही पानी बरसता रहे। चलो स्टूडियो चलते हैं और किरण दीदी आ गई होंगी।

0: श्वेता, श्वेता।
1: अरे समता दी, मौसम का मजा ही नहीं लेने दे रही हैं। कितना प्यारा मौसम हो रहा है। याद कीजिए, अभी दो दिन पहले कितनी गर्मी पड़ रही थी, एसी भी ठंडक नहीं दे पा रही थी।
2: 100% सही कहा श्वेता तुमने, पर जब मौसम इतना लाजवाब हो तो जो लोकगीत हमने तैयार किया है ना, वही सुन लो।

0: वेरी गुड बबलू बेटा, तुम तो बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो। ऐसे ही अपने दोस्तों को समझाओ कि स्कूल जरूर जाएं। अच्छा बेटा बाय, हम लोग जल्दी ही गांव आएंगे।
1: अरे हरि ओम, तुम किससे बात कर रहे थे? और ये बताओ कि हमारे गांव की गूंज की टीम को आज कौन से गांव जाना है?
2: सिमी, अभी तो कहीं नहीं जा पाएंगे, गांव में तो बहुत पानी भर गया होगा। अरे कॉलेज में स्टेज के पास ही देख लो, 2 घंटे की बारिश में कितना पानी भर गया है।
3: पहले कॉलेज के पीछे एक तालाब था, अब उसे पाट कर सबने घर बना लिया है, पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है।
4: याद है 1 साल पहले जब बहुत बारिश हुई थी, तब कितने दिन तक कॉलेज में पानी भरा हुआ था? पीछे की लाइन के घरों में तो 1 महीने तक पानी भरा ही रहा, उन लोगों को किराए पर घर लेकर अलग रहना पड़ा।
0: याद है आप लोगों को, एक बबलू नाम का लड़का मिला था जब हम लोग रामपुर गए थे। वो बता रहा था कि वो रोज स्कूल जाता है, और वो ये भी बता रहा था कि गांव में पानी भर गया है, जिसकी वजह से वो अपने जूतों को नहीं पहन पा रहा है, और वो अपने जूतों को थैले में रखकर स्कूल में जाकर पहनता है।
2: हाउ स्वीट, कितनी परेशानी उठाकर गांव के बच्चे पढ़ाई करते हैं। क्या जलभराव का कोई समाधान नहीं है? क्या गांव की गूंज की टीम कुछ कर सकती है?
1: अरे क्यों नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें लोगों को जागरूक करना है कि अगर गांव में कोई नाली बनी है या घर से पानी निकलने के स्थान को फावड़ा लेकर साफ करें, जिससे जो मिट्टी पत्ती कूड़ा भर गया है वो साफ हो जाए और पानी आराम से निकलकर नदी तालाब या झील में चला जाए।
3: इसका समाधान बहुत ही जरूरी है, अभी तो बरसात शुरू ही हुई है, पूरे मॉनसून बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होगी, खेतों में पानी भरेगा, रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। किसानों को अपने जानवरों को जल भराव के कारण कई दिन पानी के अंदर ही बांधना पड़ता है।
2: अरे बस बस बस, पहले कुछ लोकगीत सुनकर रिचार्ज हो जाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे।

0: संतोष भैया की कड़क चाय और प्याज के पकोड़े के साथ किरण दीदी के मधुर गीतों ने हम सबको ताजगी दे दी है। कसम से मजा आ गया। अब नए जोश के साथ हमारी टीम दो भागों में बढ़ जाए और गांव में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं।
1: जी हाँ, हर गांव में एक सफाई कर्मी होता है, उसका सहयोग ले लेंगे और अगर नाली बनी है गांव में तो उसे साफ करवाएंगे। अगर नाली नहीं है और पानी रुक रहा है तो अभी टेम्परेरी वाला नाली खुदवा कर पोखर या तालाब से जोड़ देंगे।
2: अगर छोटे छोटे गड्ढे हो तो उसे बंद जरूर करवा देना चाहिए, नहीं तो बरसात के बाद वो मच्छर का गढ़ बन जाता है और बहुत ही बीमारी फैलती है।
3: जो पास का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, उनसे कहकर जहाँ गंदगी ज्यादा हो ब्लीचिंग पाउडर डलवाएं और छोटे छोटे गड्ढों में मच्छर की दवा का छिड़काव भी करवाएं।
1: कीचड़ में चलने से पैरों में बहुत इन्फेक्शन होते हैं, तो सभी को रटा दो कि जब भी बाहर से अंदर आए तो पानी से पैर को साफ कर लें और पैरों के बीच ही उंगलियों को कॉटन या सूती कपड़े से सुखा लें।
0: विशेषकर बुजुर्गों का तो ध्यान जरूर रखना चाहिए, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर पैर में कोई घाव हो तो जरूर से उनके पैर में तेल और हल्दी लगाएं।
1: फिर से आप सभी से ये बता रहे हैं कि आसपास पानी न इकट्ठा होने दें, वो चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया का केंद्र होता है। अगर पानी में भीग गए हो तो तुरंत कपड़े बदलो और सूखे कपड़े पहनो, नहीं तो त्वचा की बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। पानी दूषित हो जाता है बरसात में, तो पानी छान कर उबाल कर ठंडा करके पिए।
2: हल्का खाना खाएं और बाहर के खाने से बचें। हाथ को जरूर धोएं, विटामिन सी का सेवन भी जरूर करें। बिजली के उपकरणों को गीले हाथ से ना छुएं, बहुत करंट आता है बारिश में, इसीलिए बच्चों को स्पेशली समझाएं कि सूखे हाथ से ही प्लग ऑन करें।
1: इतने टिप्स दे दिए कि सब ऊपर से जा रहा है। अब सबसे पहले किरण दीदी के गीत, फिर आगे बात करेंगे।

0: गांव की गूंज की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, इसीलिए हम लोगों को बहुत काम करना है।
1: सही कह रही है किरण दीदी, पर श्वेता मैम की बात भी सही है, आपके गानों के बिना हम लोग को एनर्जी ही नहीं मिलती।
2: अगर किसी के घर में पानी निकलने का कोई भी चारा ना हो तो वहाँ के प्रधान और सेक्रेटरी से बात करके सोखता बनवाएं। सोखते से दो फायदे होते हैं, एक तो वाटर लॉगिंग नहीं होती है, दूसरा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है।
3: पर एक चीज जरूर ध्यान देना सब लोग, हर घर में पूछती रहना कि पानी कैसे निकालते हो। कुछ लोगों ने अपने पुराने जो कुएं थे उसमें नाली जोड़ दी गई, और कुछ लोगों ने तो बोरिंग करा के सीधे पाइप नाली ही जोड़ दी है, और बरसात का पानी उससे जमीन के नीचे चला जाता है।
0: अरे बिना फिल्टर हुए पानी नीचे जा रहा है तो ये तो बहुत बुरा है, जमीन के नीचे का पानी प्रदूषित हो रहा है। गांव के लोगों को समझाना पड़ेगा कि ऐसे डायरेक्ट बरसात के पानी को नीचे ना जाने दें।
2: गांव में इसीलिए लोगों को पेट की समस्या और लीवर की समस्या सबसे ज्यादा होती है।
1: सोखता जब बनाते हैं तो उसमें कंक्रीट की एक परत फिर एक परत बालू की बिछाते हैं, जिससे पानी फिल्टर होकर नीचे चला जाए, और जाली भी लगाते हैं।
2: आपको पता है क्या, हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि सोखता कैसे बनवाएं और बरसाती पानी या नाली का पानी डायरेक्ट जाने से क्या क्या परेशानी हो जाती है। ये आप लोगों के मोबाइल में भेज रहे हैं और एक एक पेन ड्राइव भी दे रहे हैं, लोगों को जरूर दिखाकर समझा दीजिएगा।
3: जब तक वीडियो सिमी भेज रही है, संतोष भैया मसाला चाय पिला दीजिए, किरण दी आप लोकगीत सुना दीजिए।

0: चलिए, पानी लगभग रुक गया है। हरिओम ने गांव की लिस्ट दे दी है। हम ए टीम में हैं। हम लोगों का पहला गांव जयनगरा है।
1: एक जरूरी बात तो हम लोगों ने की ही नहीं, अगर ग्रामीण भाइयों में से किसी के घर के आसपास दिखे कि जानवरों के बैठने की जगह पर पानी भरा है और वो लोग पशुओं को खाना भी वहीं पर दे रहे हैं, तो उनसे कहिएगा कि जानवरों को सड़क पर बांधें।
2: हाँ, सड़कें ऊंची होती हैं और आजकल तो हर गांव में पनकी सड़कें हैं, तो अपने जानवरों को वहीं बांधें और वहीं उनको खाना भी दें।
0: चलिए, गांव की गूंज की टीम कृष्ण कुमार भैया और ननकू भैया गाड़ी लेकर आ गए हैं। जानते हो, हमारी टीम में किरण दीदी हैं, तो रास्ते में तो खूब रौनक रहेगी।
3: यह तो चीटिंग हुई। एक शर्त पर हम लोग किरण दी को तुम लोगों के साथ जाने देंगे, जब किरण दी घंटी बजे टनाटन वाला गाना सुना कर जाएंगी।

0: बरसात में होने वाले परेशानी से गांव के लोगों को जागृत करने के लिए गांव की गूंज की टीम निकल चली है। जल्दी आपके गांव में मिलते हैं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
6: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
9: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
10: मतलब
9: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
11: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9470931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
10: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
5: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
10: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
5: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही पसंदीदा शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए करते हैं शो की शुरुआत, करेंगे बहुत सारी बात, क्योंकि आज का जो दिन हमारा है उसे हमने एक टैग दिया हुआ है। आज का हमारा दिन है कि आज हम बात करते हैं हमारे यूथ्स यानी कि यूथ की हेल्थ को लेकर। तो आज भी हमारे पास हेल्थ टॉपिक्स तो हैं, हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि किस तरीके से हम हमारी हेल्थ को अच्छा रखें। सो बताते हैं, थोड़ा सा करिए इंतज़ार, क्योंकि इंतज़ार का जो सब्र कहते हैं ना, कि सब्र का जो फल होता है वो बेहद मीठा होता है। तो इससे पहले कि हम चलें और हेल्थ पर बात करें, आज कुछ स्पेशल डेज भी हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए करते हैं चार लाइन से शुरुआत और बताते हैं कि क्या होने वाला है आज का स्पेशल डे, आप भी गेस करिए। तो आज मेरे पास कुछ लाइन्स हैं जो आपको ये गेस करवाएंगी कि आज का दिन स्पेशल क्यों है। सो डिजिटल के इस दौर में चलो फिर वही अंदाज अपनाते हैं, स्मार्टफोन को रख परे, कागज पर जज्बात सजाते हैं, स्याही से लिखकर दिल की बात, अपनों को भेजें पैगाम, खत की उस भीनी खुशबू से पुरानी यादें जगाते हैं। बिल्कुल, अब आप सोच रहे होंगे कि आज खत की बातें क्यों हो रही हैं। तो आज खत की बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आज है विश्व पत्र लेखन दिवस, यानी कि वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो डिजिटल दुनिया में भी हाथों से, जो एक पहले होता था ना कि हाथों से चिट्ठियां जो लिखी जाती थी, उस लिखने की कला को आज के दिन जीवित करता है, उसे मनाता है, और कहीं ना कहीं ये हमें याद दिलाता है कि कितनी भी जो हमारी लाइफ है वो डिजिटल क्यों ना हो जाए, पर कहीं ना कहीं जो खुशबू, जो प्यार, जो लगाव आपकी हाथों से लिखी हुई चिट्ठी में होता है, हमारी कागज़ पर उतारी हुई बातों में होता है, वो किसी और में कहाँ, वैसा एक प्यार, वैसा एक लगाव कहीं नहीं मिलता। इसलिए आज के दिन इस दिन को मनाया जाता है। और साथ ही साथ आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है जो कि है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। भारत में हर साल 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है, जिसका जो उपदेश है वो ये है कि सही खान पान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही सुना आपने कि ये सप्ताह इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारी जो हेल्थ है ना, हम कहीं ना कहीं उसके प्रति अवेयर हों, ये जाने कि हमें क्या खाना पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हम सब कुछ तो सोचते हैं, सब कुछ तो करते हैं, बट अपनी हेल्थ को लेकर के कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एक ऐसा रूटीन अपनाते हैं जो बिल्कुल सही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को तो हमें अच्छा रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो आइए इसी बहुत ही प्यारी सी बात के साथ में करते हैं आपके अपने बहुत ही प्यारे वाले शो की शुरुआत, जो कि है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो शुरुआत तो भाई हो चुकी है जबरदस्त, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और इंजॉय करते हैं और मनाते हैं दोनों ही टॉपिक्स के साथ हमारे आज के दिन को। मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव में मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: सो लिसनर्स, वापस आ गए हैं हम इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के बाद में फिर से आपसे बातें करने के लिए। सो आप सभी एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि आखिर आज का टॉपिक है क्या। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारी यूथ से, और कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ से भी और फिजिकल हेल्थ से भी, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपने देखा होगा ना कि आजकल हमारे यूथ्स जो हैं उनकी मेंटल हेल्थ कैसी हो गई है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो चाहे वो टीनेजर हो या फिर उससे ज़्यादा एज के हों, कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ पर असर हो रहा है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा चीखना, चिल्लाना, अग्रेशन दिखाना, ये सब इसी की वजह से होता है। तो आज हमारे पास कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि हमारे पास है कि भरपूर पानी ज़रूर पीना चाहिए, यानी कि दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, ताकि जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं ना वो बाहर निकल जाएं। और दूसरी चीज़ होती है कि कभी भी ना भूलें प्रॉपर डाइट लेना। प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, नट्स, अखरोट, और हाँ, विटामिन सी से युक्त चीज़ें जैसे नींबू, संतरा, ये सारी चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए। हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के साथ साथ हमारी बॉडी को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा फिट डाइट लीजिए। दूसरा आता है कि भाई आजकल के यूथ्स को जो बहुत पसंद है ना खाने में, उससे दूरी रखनी चाहिए, यानी कि जंक फूड से दूरी रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं खानी चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। दूसरी चीज़ आती है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी अच्छी रहती है, यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार हम करते क्या हैं कि सब कुछ तो करते हैं बट बस अपनी मेंटल हेल्थ को ही हम प्रॉपर वे में इग्नोर करते हैं, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। सो मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं ख़राब करती है। यानी कि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो इससे भी आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रॉपर नींद लें और अपनी मेंटल हेल्थ का कहीं ना कहीं ख्याल रखें। तो आइए लिसनर्स, इसी बहुत ही प्यारी सी बातों के साथ चलते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग, इन्जॉय करते हैं। आती हूँ इस सॉन्ग के उस पार लेकर के एक और टॉपिक जो कि होने वाला है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो सुनेंगे, इन्जॉय करेंगे, समझेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं, सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9289176, 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: वेलकम बैक लिसनर्स, वापस आ गई हूँ मैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो भाई, अभी तक तो हमने कर ली बहुत सारी बातें, मतलब बता दिया कि किस तरीके से यूथ्स हमारे जो हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या होने वाला है, चलिए बताते हैं कि नेक्स्ट वाला टॉपिक है क्या। सो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो ये है कि किसी भी जॉब में आप जाएंगे या कहीं भी आप जाएंगे तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि आजकल यूथ्स में क्या हो रहा है ना, कि उनकी मेंटल हेल्थ में जो सबसे मेन प्रॉब्लम देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि वो दूसरों को सुनना नहीं चाहते हैं, बस कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी कहना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी बात होती है जो कि कहीं ना कहीं हमें परेशान करती है, क्योंकि कम्युनिकेट करना है, अगर आपको किसी से बात करनी है तो उसके लिए आपको सुनना होगा, सामने वाले को समझना होगा। सो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सामने वाले की बात जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, तो उसके लिए और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो दोनों के लिए, तो उसके लिए सुनना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ऐसे कहते हैं ना कि डिग्रियों से नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन आपके करियर में तरक्की भावनाओं को समझने और आपके अच्छे एटीट्यूड से, यानी कि अच्छे बिहेवियर से कहीं ना कहीं मिलती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि केवल बोलने के बजाय दूसरे की बातों को ध्यान से सुने और समझें भी। बिल्कुल, दूसरे की बातों को सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं हम कैसे सुने, हमें तो बस अपनी बात कहने की जल्दी होती है। तो इसके लिए टेक्निक ये है कि जब भी कोई आपसे बात करे तो शांत होकर उसकी बातों को सुने, समझें और फिर ही अपनी आप प्रतिक्रिया दीजिए, जैसा भी है उस बात को कहिए। और हाँ, दूसरी चीज़ होती है कि नेगेटिविटी को हमें कहीं ना कहीं स्वीकार करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी नेगेटिव साइड, जब हमें कोई कुछ कहता है, जैसे किसी ने आपसे कहा कि तुम्हारी ये गलती है, तुमने ये गलती की, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हमारी गलतियों को मानना ही नहीं चाहते, हम कहते हैं नहीं नहीं मैंने कोई गलती नहीं की। और फिर क्या होता है कि जब आप अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं तभी हम बहस करते हैं, और वो बहस धीरे धीरे बढ़ते हुए अग्रेशन में बदलती है, और फिर हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी अगर गलती है तो उसे एक्सेप्ट करें, और किसी की बातों के ऊपर अपनी बातों को रखने की कोशिश कभी ना करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ है कि जब भी अगर आप जॉब में हैं या वैसे भी आपके घर में भी आपका बड़ा कोई आपसे कुछ कहता है तो उस चीज़ को समझिए। तो आज जो ये बताने की वजह यह थी कि बोलने के बजाय सुनने और समझने की कोशिश करने से हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल आती है, हम समझते हैं कि किस तरह हमें चीज़ों को कम्युनिकेट करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए लिसनर्स, चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। बस यू गए और यू आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद प्यारा वाला शो ज्ञान स्थली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो भाई, अभी तक हमने बात की किस तरह से यूथ की मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, कौन कौन से आज दिन हैं जो कि स्पेशल हैं उस पर बात की, और साथ ही साथ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी। अब बात आती है कि अभी तक हमने ये सिखा दिया आपको, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स को, कि भाई किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए और आप किस तरह अपनी जॉब में अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब करेंगे, ऐसा सोचिए कि मतलब अगर हम जॉब करते हैं और हमारे पास पैसे होते हैं तो फिर कहते हैं ना कि हम ज़्यादा खर्चीले हो जाते हैं, ज़्यादा खर्चा करते हैं। और कहते हैं ना, हाथों में जब अपनी मतलब जब आप जॉब करते हैं और आपको अपने पैसे मिलते हैं तो कुछ ज़्यादा ही हम खर्च करते हैं ना। लेकिन कहते हैं ना, ज़्यादा खर्चे नहीं करने चाहिए, थोड़ा सा बचाओ भी भाई। मम्मी कहती है ना, सब खर्च कर दो, तुम्हारे हाथ में तो पैसे मतलब खर्चा। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी मम्मी को एहसास दिलाइए कि नहीं नहीं मम्मी, हम भी समझदार हैं और हम भी पैसे बचाना जानते हैं, आप ऐसे मत समझिए। देखिए, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी पॉकेट मनी से बचा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं यानी कि पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और आपको सैलरी मिलती है तो आप अपनी सैलरी से बचा सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि बचा कैसे सकते हैं भाई। बचाने के लिए तो कुछ दिमाग लड़ाना पड़ेगा, कुछ टिप्स टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। तो चलिए हम बता देते हैं, आपका ये काम भी कर देते हैं, आपको टिप्स बता देते हैं कि किस तरीके से आप अपने पैसों को बचा सकते हैं। सो, सबसे पहले जो टॉपिक है कि वो ये है, पॉइंट जो है हमारे पास, कि हमेशा जब भी आपके पास सैलरी आती है या आपको पॉकेट मनी भी मिलती है तो उसमें से आपको ये देखना है कि 50% आपको अपनी ज़रूरतों पर खर्च करना है, यानी कि 50% आपने जो भी अपने काम थे उन पे खर्च किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको अपनी सैलरी में से 30% या 20% बचाना भी है। बचाना बहुत ज़रूरी होता है। अब बचाएंगे कैसे, क्योंकि अगर हाथों में रहेगा तो खर्च हो जाएगा। तो उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं, या फिर कई बार होता है ना कि जब हम छोटे थे तो हम गुल्लक में पैसे रखा करते थे, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब तो ये हो गया है कि भाई डिजिटल है, सब कुछ डिजिटली होता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने दूसरे बैंक अकाउंट पे, यानी कि हमारे पास दो बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, एक जो हम डेली में यूज़ करते हैं और एक होना चाहिए आपका बचत खाता, जिसमें कि आप अपने बचाए हुए पैसों को धीरे धीरे सेव कर सकते हैं। सो, अगर आप धीरे धीरे सेव करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे। दूसरा आता है कि कहीं ना कहीं जब बात आती है बचाने की तो हम ये सोचते हैं कि सारी तो चीज़ें खर्च हो जाती हैं, हमें लगता है कि सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं, क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए और कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप ये देखें कि आपको किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। जिन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत है हम उन्हीं पर खर्च करें, बाकी पर बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ आती है कि क्रेडिट कार्ड। भाई कई बार होता है ना कि जब हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। जब भी आप शॉपिंग करने जाइए, मॉल में कहीं भी जाइए, तो कैश पैसे ले जाइए। कैश पैसों से क्या होता है ना कि हम उतना ही खर्च करते हैं जितने की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमारे पास कार्ड होता है तो उसकी तो भाई लिमिट होती है, तो हम सोचते हैं चलो कार्ड तो है ही ना बगल में, अगर कैश पैसे कम भी पड़ गए तो चलो कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। उसमें कई बार हम उन चीज़ों को भी ले लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए बनिए समझदार, क्योंकि स्टूडेंट्स हों या हमारे यूथ्स हों बहुत समझदार होते हैं। सो ऐसा कहने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि भाई तुम समझदार नहीं हो, तुम्हें पैसों की समझ नहीं है। मम्मी से कहिए कि भाई मुझे बहुत समझ है। समझदार बनिए, और समझदार बनने के साथ साथ आइए चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग। मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार, क्योंकि अब हमारा टाइम भी हो गया आपको बाय करने का, लेकिन इस सॉन्ग के उस पार मिलते हैं और फिर आपको बाय करते हैं।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सो लिसनर्स, टाइम तो हो गया है, लेकिन चलते हैं एक प्यारे से मैजिकल वाली लाइन के साथ। आपसे बाय-बाय बोलते हैं। तो आज की हमारी जो मैजिकल लाइन है, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि मत कहो खराब हैं तकदीरें, खुद खींचो ना अपनी किस्मत की लकीरें। तो आज के लिए आप सभी के लिए यही मैसेज है कि कभी भी अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए, हमेशा अपनी किस्मत की जो लकीरें होती हैं उन्हें खुद खींचने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी प्यारे से मैसेज के साथ आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, यानी कि अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को। फिर मिलती हूँ आपसे कल आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम ज्ञान असली लाइफ में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की दूर करेंगे बहुत से भ्रम सीखेंगे सिखाएंगे पैसे भी अपने बचाएंगे बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार रहेंगे रोग मुक्त जीवन रहेगा खुशहाल अब खत्म हुआ इंतजार आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर
2: एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर
1: बिल्कुल और आप सुन रहे हैं अपने चहिते आरजेस को मैं हूँ आरजे अदनान और मेरे साथ हैं
2: आरजे आकांक्षा
1: जी हाँ जो आपके लिए एक ऐसी श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपको आपकी सेहत के साथ साथ आपके पैसे बचाने के अलग अलग तरीके बताते हैं
2: जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले हफ्ते अपनी नई कड़ी सेहत सही लाभ कई में बताया था कि हमारी इस कड़ी से जानकारी पाकर आप सभी माला माल हो जाएंगे कहते हैं ना कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा
1: अजी बिल्कुल सही कहा स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे एनर्जी होगी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी साथ में आमदनी भी तो श्रोताओं आपको याद होगा कि हमने सभी की मुलाकात सेहतिया सिंह जी से करवाई थी सेहतिया भैया की कहानी सुनकर तो बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे हमें तो कम से कम 25 कॉल आई थी स्टेशन के फोन से और सभी ने कहा कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था
2: बिल्कुल सही कहा तुमने इसका बड़ा कारण था कि बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी भी सेहतिया सिंह जी की जिंदगी से मिलती जुलती थी उन्होंने भी किसी परिवार के सदस्य की बीमारी के कारण या सही समय पर सही इलाज न मिलने के कारण या फिर वही झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़कर अपने अपनों और अपनी जमा पूंजी को खोया
1: लेकिन एक हादसे ने सेहतिया सिंह जी की जिंदगी को बदल दिया उनकी सोच में बदलाव आया और उन्होंने लोगों की मदद करने की ठान ली इनको लगा कि जागरूकता के अभाव से उनकी तरह हजारों लोग दर बदर भटकते हैं तो क्यों ना लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर उनकी मदद की जाए सरकार इतना कुछ कर रही है लेकिन लोगों तक उसकी जानकारी ना पहुंचे ये तो सही नहीं होगा ना
2: आज तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आरजे अदनान
1: मतलब अरे मैं तो हमेशा सही बोलता हूँ पर तुम मुझे बोलने दो तब ना
2: हाँ हाँ जो सही बात है भला उसे कौन रोक सकता है देखा था ना जब सेहतिया भैया बोल रहे थे हम सब चुपचाप उनको सुन रहे थे मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम यानी सेहत सही लाभ कई से हमारे श्रोताओं को बहुत फायदा होगा क्योंकि हमारे आसपास भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें अनेक बीमारियों के बारे में पता नहीं है
1: बिल्कुल सही बात है जैसे कि फाइलेरिया मैं कल जब घर जा रहा था तो मैंने ऑटो पर कुछ लाउडस्पीकर चलते हुए देखा मुझे लगा सेहत से जुड़ी बात हो रही है और श्रोताओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो मैंने श्रोताओं के लिए रिकॉर्ड भी कर लिया है
2: अच्छा तो फिर सुनाओ जरा
1: चलिए तो हम सुनाते हैं आपको ये सेहत की अनोखी बात
3: नमस्कार मैं मनोज बाजपेयी मेरा बचपन ऐसे ही एक छोटे गाँव में बीता है और मैंने लोगों को काला आजार की बीमारी से होने वाली तकलीफों से लड़ते हुए देखा है इसलिए मैं जानता हूं कि काला आजार जैसी जानलेवा बीमारी कितनी तकलीफ दे सकती है जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है उसी तरह काला आजार बालू मक्खी से फैलने वाली एक घातक बीमारी है तो आज मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे शरीर में कालापन दिखे या पेट में सूजन रहे तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में इसकी जांच कराएं आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में केवल मुफ्त जांच और इलाज ही नहीं मजदूरी का मुआवजा भी मिलता है बस एक आखिरी बात जब भी सरकारी छिड़काव कर्मी बालू मक्खी के खात्मे के लिए आपके घरों में आए तो कृपया उनकी सहायता पूरी तरह से करें याद रखिए आपका थोड़ा सा सहयोग खत्म करेगा काला आजार रोग
4: स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी
1: अब तुम बोलोगी कि ये फाइलेरिया क्या बला है, इसीलिए मैंने कल शाम ही डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी से इस बारे में अच्छे से बात की थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी कि ये बीमारी एक परजीवी की वजह से होती है और मच्छर इसे फैलाते हैं। तो ये भी बताते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि उन्हें दवा की जरूरत नहीं है, उन्हें भी फाइलेरिया की दवाइयां लेनी चाहिए। इसीलिए सभी श्रोताओं से हम गुजारिश करते हैं कि ध्यान से सुनिए, जो भी काम कर रहे हो, चाहे मोबाइल देख रहे हो या बच्चे का होमवर्क करा रहे हो या फिर रसोई में खाना बना रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। अगले 10 मिनट तक डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी के जरिए बहुत ही जरूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए। अगर आप अभी नहीं सुन पाए तो हम इस प्रोग्राम को रिपीट टेलीकास्ट फिर से करेंगे। कब करेंगे ये बताएंगी आरजे आकांक्षा।
2: तो हम रिपीट टेलीकास्ट करेंगे अगले शुक्रवार को।
1: जी हाँ, तो सुनिएगा जरूर और घर वालों को भी सुनाइएगा। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी को।
4: ये एनटीडी है, तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहाँ पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो गड़बड़ आइटम होता है, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन होती है, वन इज एक्यूट यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देयर इज फीवर और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडेमा एक होता है। लिम्फेडेमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में जहां ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं, स्क्रोटल एरिया होता है, वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों की किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती है। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट पे जो पिक्चर है इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है, ये लिम्फेडेमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है, ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा माइक्रो फाइलेरिया बेबी उसके अंडर जाता है शरीर में और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं, दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रो फाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रो फाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है, वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद, मोस्टली मिडनाइट में, हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए, ब्लड टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, WHO का सिस्टम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं। और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त सैंपल लिया जा रहा है और एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है। और इसके लिए क्या करना है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाएं बढ़ती है जिसको सभी लोगों को उसका सेवन करना होता है। इसमें आप देखेंगे जो हरा कलर दिखाई पड़ रहा है मैप में चलाया जाएगा, उसकी सूची अर्चना जी आपको दे देंगी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस जिले या उसके आसपास के जिले के होंगे, इसीलिए आपको इसमें इन्वाइट किया गया है। उसे हम कहते हैं DA, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने क्षेत्र का पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा पोलियो में एक माइक्रो प्लान बनता था, पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल के से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को हमें ट्रैक करना पड़ता है और सबको देना है दवा, एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो। अदरवाइज एवरीबॉडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले ही उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूँ, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट्स समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे वर्कर जाते हैं घर पे, जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन। हम तो यहां तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ही ये विदेश से आई है और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए, सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ देम फील कि हम क्यों खाएं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हम तो गुड नाइट कॉयल लगाते हैं, हमारे पास मच्छर काटेगा भी नहीं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कभी तो पार्क में निकलते होंगे, कभी तो मार्केट जाते होंगे, क्या वहां मच्छर नहीं काट सकता? और ये जो मच्छर काटता है, ये मच्छर क्यूलेक्स वैरायटी का होता है। मच्छर की फैमिली होती है, 4 मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, मंसोनिया होते हैं। लोग खाते नहीं थे, तो ये रीजन है लोगों ने दवाएं क्यों नहीं खाई। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया कि नहीं, आपको घर में दवा बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है, तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई। जो सेकंड कैटेगरी है, अब्सेंट वाली, ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वेर नॉट एट होम। तो ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की PSC या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में, 18%, ये रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए आप जो नहीं खा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से, और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया था, हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार निम्फोडेमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सके, हाइड्रोसिल केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए बाएं तरफ अनीमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सेंट्रिश की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनीमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है। जो दवाएं दी जाती है इस मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, DEC एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और डीसी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रो फाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजोल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृमि जो मैं पहले बता रहा था आपको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मैल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनीमिया का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म, ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है। जहां जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवरमेक्टिन उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स है वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा अनीमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जिसे स्केबीज है, जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो जुए होते हैं आइवरमेक्टिन से, वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रिपल ड्रग में, न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, हुकवर्म और जुए, ये सब भी मर जाते हैं। ये

0: आमतौर पर उनकी हाइट होती है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को एक गोली, 120 से 140 तक दो गोली, 140 से 160 तीन गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको चार गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं ये DEC है, ये उम्र के हिसाब से दी जाती है। 2 साल से 5 साल के बच्चे को एक गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को दो गोली, और 15 से बड़े को तीन गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगी, उसे घबराना नहीं है, वो उसके मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स, क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया, तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले क्या होगा, उल्टा आपको आके काट ही लेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, और अब मैं ओपन करता हूँ डिस्कशन।
1: इतनी सारी जानकारी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हाथी पांव को फाइलेरिया कहा जाता है, और ये भी एक बीमारी है जो कि एक पैरासाइट यानी परजीवी की वजह से होती है। कोई भी व्यक्ति उसका वाहक बन सकता है क्योंकि इसके लक्षण इतने सालों बाद आते हैं, लोग दवाई लेने से इसकी कतराते हैं।
2: तुम तो भाई वाकई बहुत समझदार हो गए हो। तो क्या आज सेहतिया भैया नहीं आएंगे?
1: आएंगे क्यों नहीं आएंगे, लेकिन अब ये 10 अगस्त की तैयारी में लग गए होंगे, भाभी लगी होंगी महिलाओं को जागृत करने में, और भैया जो है वो पुरुषों को कर रहे होंगे।
2: इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारी दोनों यानी महिला और पुरुषों को हो सकती है।
1: कभी कभी ना तुम ऐसी बात करती हो जैसे मुझे लगता है कि तुम आरजे कैसे बन गई हो। मच्छर क्या ये देखकर काटता है कि महिला है या पुरुष है, सोचो जरा।
2: तो ये कहो ना कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होती है, और 10 अगस्त को क्या होगा, अगर सेहतिया भैया आ जाते तो उन्हीं से पूछ लेते।
1: जिनका तुम्हें इंतजार था वो आ ही गए। नमस्कार भैया, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा था।
3: सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार।
2: तो आप भी 10 अगस्त में बिजी थे?
3: बिल्कुल ठीक समझे हो आप, हमारे जिले में भी फाइलेरिया की दवाई दी जाएगी। देश के अनेक जिलों की तरह हमारा जिला भी फाइलेरिया जैसी निगलेक्टेड बीमारी की चपेट में है, इसलिए हमारे जिले में भी अन्य जिले की तरह मास ड्रग्स MDA राउंड 10 अगस्त को चलेगा। यह NTD में से एक है। ये वो रोग है जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में बहुत आम होते हैं, जिनमें से भारत भी एक है, परंतु इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, और फाइलेरिया उपेक्षित उष्ण कटबंधीय रोग यानी NTD का हिस्सा है। यह बीमारी शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन हो जाती है। शुरुआत में तो सूजन मामूली लगती है, लेकिन अगर समय रहते इलाज न कराया जाए तो यह एक अस्थायी विकृत में बदल सकती है। इस बीमारी के चलते मरीजों को अक्सर पीड़ित होने के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है।
1: अरे हमारे चाचा भी इसी बीमारी के कारण समाज से कटकर रह गए थे, क्योंकि लोग उन्हें देखने से डरते थे, लेकिन सेहतिया भैया की समझदारी और धैर्य ने लोगों के मन में चल रही भ्रांतियों को दूर कर दिया। उन्होंने बताया कि ये बीमारी छुआछूत की नहीं और किसी के संपर्क में आने से कोई खतरा नहीं होता।
2: तो ये बीमारी यानी ये रोग सभी को हो सकती है, मतलब किसी को भी हो सकती है ना? हमने अभी डॉक्टर साहब को सुना। इस बीमारी का सही नाम भी इतना मुश्किल है, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, और ऊपर से ये एक संक्रामक बीमारी है, तो पता चला मच्छरों के काटने से फैलती है।
3: होने को तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अक्सर ये रोग गरीब, पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। NTDS का सामना करने वाले समुदाय में आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं।
1: लेकिन लिम्फेटिक फाइलेरियासिस न केवल शारीरिक तकलीफ देता है, बल्कि इससे पीड़ित व्यक्ति अक्सर सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करता है। लोग जो है वो अंधविश्वासों और भ्रांतियों की वजह से उनके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं, जिससे उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और यही वजह है कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को गंभीर स्वास्थ्य समस्या माना जाता है, और इसे नियंत्रित करने के लिए कई कोशिशें भी की जा रही है।
2: उन उपायों में से एक

0: उपाय ये भी है कि पूरे समुदाय को एक साथ दवा दी जाती है, जिससे संक्रमण का प्रसार रुक सकता है और बीमारी के बढ़ाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। इससे न केवल मरीजों का इलाज होता है बल्कि रोग नियंत्रण में भी मदद मिलती है। सभी गोलियों का सेवन एक साथ करें, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस को जड़ से खत्म करने में एक उपाय है ये।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। जब हम पूरे समुदाय में एक साथ दवा वितरण करते हैं तो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या घट जाती है और एलएफ के फैलने का दर भी कम हो जाता है। इससे लोगों में डर और अंधविश्वास को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जब दवा उपलब्ध होती है तो बीमारी के खिलाफ एक ठोस कदम उठाया जा सकता है।
2: और भैया, इन बीमारियों के फैलने के मुख्य कारण क्या हैं?
1: भारत में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी एनटीडीएस में प्रमुख रूप से कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, हुकमवर्म संक्रमण, चिकनगुनिया, सिस्टोसोमियासिस, ट्रेकोकोमा, रेबीज और सेक बाइट एनवेशन जैसे रोग शामिल हैं।
2: तो अगर हम आसान शब्दों में कहें तो एलएफ यानी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक गंभीर और विकराल बीमारी है, जिसे रोकने के लिए एमडीए जैसी सामूहिक स्वास्थ्य पहलों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही एलएफ जैसी एनटीडीज पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।
0: क्या हमारे देश में और भी निग्लेक्टेड रोग हैं?
1: ये बीमारियाँ मुख्य रूप से अस्वच्छता, साफ पानी की कमी और गरीबी के कारण फैलती है। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, लेकिन अभी भी जागरूकता, समय पर निदान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है।
0: सेहतिया भैया, मेरा एक और सवाल है। वो पिछले एपिसोड में आपने कुछ बताया था ना निक्षय मित्र के बारे में, वो क्या है?
1: एक बार फिर बताता हूँ, निक्षय मित्र एक सामुदायिक पहल है जिसका उद्देश्य टीबी, क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को पोषण, मानसिक समर्थन और आवश्यक देखभाल प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत लोग, संस्थाएं और संगठन टीबी मरीजों को गोद लेकर उनकी उपचार यात्रा में सहायता करते हैं।
0: तो क्या ये फाइलेरिया के मरीजों के लिए भी स्कीम है?
1: नहीं, निश्चय मित्र योजना केवल टीबी, क्षय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए है। इसके तहत मरीजों को आर्थिक सहायता के रूप में 500 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। यह राशि उनके पोषण और देखभाल के लिए सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती, जिससे उनकी उपचार प्रक्रिया बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके।
2: लेकिन राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम यानी NFEP के तहत भी तो सरकार बहुत मदद करती है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो फाइलेरिया के प्रसार को रोकना और इसे जड़ से खत्म करने के लिए मास ड्रग यानी MDA के तहत सरकार हर साल सामूहिक रूप से दवाइयाँ DEC और एल्बेंडाजोल मुफ्त में वितरित की जाती हैं। फाइलेरिया के मरीजों को हाइड्रोसील सर्जरी सरकारी अस्पतालों में मुक्त कराने की सुविधा दी जाती है। साथ ही निवारक देखभाल और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सूजन को कम करने के लिए मुक्त दवाइयाँ, साफ सफाई और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी दी जाती है। समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन जहां जांच, परामर्श और दवाइयां दी जाती है। एक और खास बात है कि इस बीमारी का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाता है, जिससे मरीजों को मुफ्त इलाज मिल सके।
0: सेहतिया भैया, ये तो आपने और डॉक्टर भूपेंद्र ने हमारे श्रोताओं को बहुत ही काम की जानकारी दी है।
2: बिल्कुल, हमारे सभी श्रोता दोस्त, भाइयों और बहनों, बीमारी की तकलीफ और इलाज के खर्च से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छरों से बचाव करें और सरकारी दवाइयां जरूर लें। और तो और, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क करके फाइलेरिया से जुड़ी योजनाओं की और ज्यादा जानकारी ले लें।
1: और अब समय हो गया है मेरे जाने का, क्योंकि घर घर जाकर सबको दवाई जो खिलानी है। लेकिन
3: आपके जाने से पहले शपथ लेना जरूरी है।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
2: प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है,
4: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
2: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो सेहतिया भैया, आपने इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेगमेंट यही समाप्त होता है। याद रखिए, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाइयां जरूर खाइए। सेहतिया भैया के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे और कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे साझा भी करेंगे।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई, वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज है समता और आज साथ में अंशिका नहीं है मेरे, लेकिन आज हमारे साथ कोई है और। तो भाई कौन है, क्या है, सबसे मिलवाऊंगी, बातें करवाऊंगी, लेकिन करना है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली। और सुन सहेली में आज मैं हूँ आपकी सहेली और हमारे साथ में एक हमारे साथ स्टूडेंट बोल लें या फिर न्यू सहेली बोल लें, तो मैं आपसे उनको पहले इंटरेक्ट कराती हूँ और उसके बाद एक ही साथ एक ही फ्रेम में बोलेंगे शुभ दोपहरिया। लेकिन उसके पहले आइए एक साथ बोल देते हैं भाई, एक साथ बोलेंगे शुभ दोपहरिया, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। बोलेंगे शुभ दोपहरिया, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट।
1: शुभ दोपहरिया।
0: तो आपने आवाज पहचानी ली होगी, अपना इंट्रोडक्शन दें।
1: हेलो मैम, मैं हूँ संध्या। हेलो लिसनर्स, मैं हूँ संध्या। थैंक यू मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: हाँ हाँ, बुलाने के लिए नहीं, आप तो पहले भी आ चुके हैं, पहले भी
1: यस मैम
0: लिसनर्स से आपका इंटरेक्ट हो चुका है आई थिंक सो। तो संध्या से हम सभी पहले भी मिल चुके हैं, तो आइए संध्या से हम बहुत कुछ आज जानेंगे सीखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको पता ही है कि हमारे प्रोग्राम की एक औपचारिकता होती है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लेकर के आते हैं एक आज के दिन पोयम। तो संध्या, आज के दिन हम बच्चों का सेक्शन होता है हमारा,
1: yes, ma'am.
0: और बच्चों के लिए हम बहुत सारी चीजों को लेकर के आते हैं, उनकी डिजीज को लेकर के आते हैं
1: जी, ma'am.
0: उनकी पर्सनल एक्टिविटीज को लेकर के आते हैं और जी. उनकी कुछ आदतों को लेकर आते हैं
1: yes,
0: तो
1: ma'am.
0: आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स, तो टीनेजर गर्ल्स जो होती हैं, तो उनके अंदर ना बहुत सारी एक अग्रेशन आ जाता है, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स उनकी बातों को अवॉइड करते हैं
1: जी मैम।
0: तो वो बातें क्या है, वो मैटर क्या है, हम आपको सब बताएंगे। लेकिन उसके पहले आइए आज की पोयम लेते हैं, जो कि आप मैं बोलती हूँ, लेकिन अंशिका आज नहीं है, क्योंकि अंशिका होती है तो वो हमें देती है रास्ता, बट आज वो नहीं है, तो कोई बात नहीं, बट आई मिस्ड अंशिका। तो चले संध्या शुरू
1: yes, करें मैम, आज तो मेरी फेवरेट मैम मुझे सुनाने वाली है पोयम।
0: एग्जैक्टली तो वैसे भी ये बच्ची है पूरी, तो बच्चों को तो बच्ची बच्चों वाली चीज अच्छी लगती है ना। शुरू करें।
1: यस मैम।
0: नन्हे मुन्हे फूल हैं बच्चे, खुशियों की मुस्कान है। नन्हे नन्हे फूल हैं बच्चे, खुशियों की मुस्कान है। इनके प्यारे भोले मन में सपनों के अरमान है। हंसते खेलते आगे बढ़े, हर मुश्किल को हटाए। हंसते खेलते आगे बढ़े, हर मुश्किल को हटाए। मेहनत करके अपने जीवन में नई सफलताएं पाएं। गुरुजनों का मान करें और माता पिता का सम्मान। गुरुजनों का मान करें और माता पिता का सम्मान। सच्चाई और प्रेम से बनाएं अपनी सुंदर पहचान। ज्ञान की रोशनी साथ लेकर ऊंची उड़ान भरें। ज्ञान की रोशनी लेकर ऊंची उड़ान भरें। हमारे प्यारे बच्चे सदा देश का नाम करें।
1: बहुत अच्छी स्टोरी थी मैम, बहुत अच्छी पोयम थी, बहुत अच्छी
0: अच्छी थी ना मैम। तो ऐसे ही हम लोग हमेशा से कुछ ना कुछ पोयम लेकर के आते हैं संध्या
1: yes, ma'am.
0: और जैसा कि एग्जैक्टली ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो हमारा घर की हमारी रौनक होते हैं
1: जी मैम
0: होते हैं। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना कि जब घर में बच्चे ना हो तो बिल्कुल घर ना जैसे सूना सूना सा लगता है
1: जी मैम।

0: बिल्कुल सोना सोना लगता है।
1: तो आपके घर में भतीजे भतीजा या फिर कोई बच्चे हैं?
0: यस मैम है, वो लोग कहीं मामा के यहाँ चले तो बहुत सोना लगता है, बहुत मिस करते हैं। दो दिन भी हम लोग के लिए बहुत ज्यादा लगने
1: लगता है कि कैसे हो और कैसे मतलब घर जल्दी से आ जाए वापस, हम लोग घर पूरा सोना लग रहा है, वो शैतानियां नहीं हो पाती हैं, वो तंग करने वाला सीन नहीं हो पाता।
0: जी
1: मैम,
0: जी मैम,
1: तो जी हाँ बिल्कुल ऐसा हम लोग को भी लगता है। तो आइए रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में हम आज आपको बताएंगे कुछ बच्चों से ही जुड़ी हुई चीजें, जो कि हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, कि जिस तरीके से हम एक पौधा लगाते हैं, जिस तरीके से हम एक छोटा पौधा अपने घर में लेके आते हैं और लगाते हैं, और जिस तरीके से हम उन्हें सींचते हैं, सींचते हैं, उनमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, मिट्टी देते हैं, साथ ही साथ उन्हें हर दिन बड़ा होते देखते हैं, ठीक वैसे ही एक छोटा पौधा जो हमारे घर में एक नन्हा बालक बन के आता है, पेरेंट्स उन्हें सींचते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें उनकी सारी ख्वाहिशें पूरा करते हैं, उन्हें सब कुछ देते हैं, लेकिन बड़े होकर के जब उनकी ख्वाहिशें जो होती हैं वो एक जिद बन जाती है। अभी आपने हाल ही में एक केस सुना होगा कि एक बच्चे ने झारखंड के आसपास की, उत्तराखंड के आसपास, मुझे नहीं याद आ रहा है, उसने सुसाइड कर ली, और उसने सुसाइड खुद नहीं करी, उसने अपने माँ बाप के साथ सुसाइड करी, और मात्र एक मोबाइल की जिद के कारण। तो मैं इस पूरी कहानी को लूंगी और बताऊंगी आपको, लेकिन आप सभी को एक गाना सुना देते हैं, और गाने सुनने के बाद में हम आएंगे आज के उस टॉपिक को लेंगे, देन संध्या आपको बताएंगी कि वायरल फीवर ये जो आजकल फैला हुआ है क्यों है, और इसका उपाय और इसका उपचार। तो चले संध्या,
0: यस मैम,
1: तो ब्रेक के पास चलते हैं और एक गाना सुनाते हैं आपको, और आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे साथ बने रहना है और सुनते रहना है आपका फेवरेट शो सुन सहेली।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज हमारे हैं संध्या जी। तो अभी संध्या, हम लोग ब्रेक में जाने से पहले क्या बात कर रहे थे और मैंने एक बात बोली थी कि मैं भी आपको ऑन एयर आके बताऊंगी। बोलो वो बात क्या थी।
8: जी मैम, वो स्टोरी बतानी थी, उस बच्चे को फोन चाहिए था।
3: फोन चाहिए था वो स्टोरी ना?
8: यस मैम।
3: तो वो स्टोरी ये है, स्टोरी नहीं है वो, एक ये एक रियल वारदात है जो कि अभी हुई थी छत्तीसगढ़ में, कि कन्फर्मली वो शहर नहीं याद आ रहा है। बट वो बात ये थी कि आज जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चों का सेक्शन है, तो ये बात करना ज़रूरी भी है क्योंकि कई बार फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ये वायरल मैसेज हुआ है। वो ये मैसेज है कि एक बच्चा 10th और 12th का बच्चा था, उसने जिद की कि मुझे आईफोन चाहिए।
8: आईफोन मैम?
3: आईफोन चाहिए मुझे, फ़ोन चाहिए। अब उनकी पेरेंट्स की जैसे कहते हैं कंडीशन वैसी नहीं रही होगी।
8: हाँ, सबके पेरेंट्स की भाई आईफोन लेने की नहीं रहती है।
3: वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है।
8: यस मैम।
3: तो उसने क्या किया, वो उसका जिद जो था वो इतना हाइपर हो गया, वो कई दिनों तक अपना मतलब पेरेंट्स उसको टालते रहे कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें ले देंगे। बट उस बच्चे का अग्रेशन इतना ज्यादा हो गया कि एक दिन उसने स्कूल के बाद में अपना वो घर नहीं आया, तो नहीं, और फिर पेरेंट्स ने उसको ढूंढने के लिए वो लोग बाहर निकले, तो उसने देखा कि एक पहाड़ी के ऊपर जाकर के वो बैठ गया था, साइलेंटली बैठ गया था जाकर के, बहुत ऊंची पहाड़ी थी। वो जाके वहाँ बैठ गया और किन्हीं लोगों ने बताया कि ये वहाँ जाके बैठ गया और ये इनके पेरेंट्स वहाँ पर, इनके माँ बाप दौड़ते हुए गए और काफी लोग भी थे, और वो बार बार यही जिद कर रहा था कि अगर मेरे पास आएंगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा।
8: धमकी दे रहा था।
3: उसके बाद में जब उसके पापा ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें ले दूंगा बेटा, तुम आओ मैं तुम्हें ले दूंगा, माँ उसकी गिड़गिड़ाती रही कि मैं अपने सोने की जो बालियां हैं उसको बेच के तुम्हें ले दूंगी बेटा, तुम आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम ये काम मत करो। और उसने फिर क्या किया, मतलब जैसे उसने कहा ना कि नहीं, मैं अगर आप लोग ऐसे कहते हैं, बहुत टाइम से आप बोल रहे हैं पर लेके नहीं दे रहे हैं, अब मैं यहाँ से कूद करके अपनी जान दे दूंगा। और उसकी माँ रोती रही, जमीन पे गिड़गिड़ाती रही, मतलब पूरा वीडियो आया था, काफी लोग वहाँ खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अगर हम लोग आगे जाएंगे तो वो कूद जाएगा।
8: हाँ, क्योंकि बार बार बोल रहा था।
3: पर उसके पापा ने, उसके पिताजी ने हिम्मत करी और वो धीरे धीरे बात करते करते उसके करीब गया, और जैसे ही उसका हाथ पकड़ा उसको खींचने के लिए, उस बच्चे ने क्या किया कि मतलब अपने आप को छुड़ाने के लिए वो जैसे पीछे हुआ तो उसने अपने पापा का भी हाथ पकड़ा हुआ था, तो वो भी गिरा और उसका पापा भी गिरा ऊंची पहाड़ी से।
8: मैम दोनों
3: गिरे। और उसके बाद जब उसकी माँ ने देखा कि अब ये दोनों ही गिर गए और वो भागती हुई गई और वो भी उसी पहाड़ी से नीचे उसने गिर करके अपनी जान दी।
8: मैम एक फोन के लिए इतना बड़ा हादसा।
3: सोचो कि ये बहुत बड़ी वारदात है, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, क्या कह सकते हैं इसको कि कितनी ज्यादा वायरल हुआ ये मैसेज कि एक फोन के कारण से उस लड़के ने उस बच्चे ने अपने माँ बाप की जान ली, अपनी जान ली।
8: सिर्फ इट्स नॉट फेयर मैम, बहुत गलत
3: है। तो पता है इससे क्या होता है, इससे आपको इससे सिर्फ एक बात निकल के आती है संध्या
8: जी मैम,
3: कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाते हैं बचपन में ताकि वो बड़े होकर के वैसा अग्रेशन ना दिखाए।
8: यस मैम,
3: मतलब लगता है कि नहीं लगता है?
8: लगता है बिल्कुल।
3: अच्छा छोटी सी बात, अगर आपकी कोई बात पूरी नहीं होगी, हम इतने मैच्योर हैं, हमारी बात नहीं आपकी बात हम कर रहे हैं
8: जी।
3: अगर आपसे कहा जाए कि आपने कोई मन में इच्छा रखी और आपकी वो पूरी नहीं होगी, तो क्या हम उस चीज के लिए एक वस्तु के लिए हम अपनी जान दे देंगे?
8: नहीं मैम, ये बिल्कुल गलत है।
3: नहीं,
8: कम से कम उसे अपने पेरेंट की बात तो माननी चाहिए थी, और फिर एक आईफोन के लिए इतना ज्यादा जिद करना।
3: और पता है इससे हम लोग इस चीज को नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे संस्कार में वो बचपन से डाला गया है
8: जी मैम,
3: कि जान अगर जान है तो जहान,
8: जान है तो जहान।
3: अब बताओ उस बच्चे ने क्या किया, खुद की तो जान ली ही ली, लेकिन प्लस में अपने माँ बाप की भी
8: जी मैम।
3: तो मतलब आज के
8: बहुत गलत
3: है, और ऐसी चीजें जो है ना, ये अपने आज के पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बचपन से ही अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा ना नहीं करें।
8: यस मैम,
3: मतलब कोई अगर लीगली अगर क्या कहते हैं ख्वाहिश है ना, उसको भी आप टालें, कुछ दिन तक टालें कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें ले दूंगा, हाँ ले लूंगा।
8: लेकिन मैम आजकल तो जहाँ बच्चे कुछ बोलते हैं पेरेंट्स से, वो तुरंत लाके दे देते हैं,
3: तुरंत लाके दे देते।
8: कहीं ना कहीं पेरेंट की भी गलती है मैम,
3: ये पेरेंट्स की ही गलती है, इसमें गलती पेरेंट्स की। मैंने अभी क्या कहा कि वो वैसे संस्कार, अब जैसे हम लोगों ने जिस टाइप में पढ़ाई करी है, तो एक क्या कहते हैं उस समय ये कॉपियां होती थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉपियां नहीं होती थी, कॉपियां होती थी, रजिस्टर होते थे बड़े बड़े।
8: यस मैम,
3: आपको पता है जब हम लोग पास आउट हो जाते थे क्लास फिफ्थ, क्लास सिक्स, क्लास सेवेंथ में, तो जो व्हाइट पेजेस बचते थे
8: जी मैम,
3: वो पेपर हम लोग निकाल लेते थे और उससे हम लोग रफ कॉपी बनाते थे।
8: हाँ बिल्कुल मैम,
3: हम लोगों ने भी ऐसा किया होगा।
8: बिल्कुल मैम, हम लोगों ने भी किया।
3: तो अब आप बताओ, तो ये हमें हमारे घर के बड़ों ने हमको सिखाया कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी है
8: जी मैम,
3: क्योंकि पैसे से वो कॉपी आती है, पैसे से वो पेन आती है, पैसों से ही सब कुछ चीज होती है। तो सोचो कि अगर ये चीजें हमें बचपन से हम हर एक बच्चे को अगर सिखाएंगे कि बेटा छोटी सी चीजों के लिए अगर हम अपनी जान देने लगेंगे, तो ये तो बहुत ही गलत बात है।
8: बिल्कुल मैम, लेकिन वो ये अब जहाँ तक बच्चों को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि इतने भी ज्यादा किसी चीज को जिद नहीं करनी चाहिए। अगर हाँ। पेरेंट नहीं दिला रहे हैं तो समझना चाहिए उन चीजों को।
3: बिल्कुल, और जबकि उसने लास्ट में उसकी माँ ने बोला भी बेचारी ने कि
8: हाँ कि मैं अपना वो बाली
3: कान का बाला बेच करके बेटा मैं तुम्हें चलो मैं तुम्हें दिला देती हूँ, पर तुम ये काम मत करो। लेकिन कहते हैं ना कि जब, और या तो भाई वैसे ही संस्कार, वैसे ही मौत लिखी होती है, तो फिर वो वैसे ही होता है। तो सोचो ले देके आखिर हानि किसकी हुई, पूरा परिवार खत्म,
8: पूरा परिवार खत्म।
3: तो आज बच्चों का सेक्शन था ये मैंने लास्ट वीक मैंने स्टोरी पढ़ी थी और ये स्टोरी आई थी फेसबुक पे, वायरल है बहुत। तो कहने का सेंस केवल इतना है कि आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज एंड प्लीज आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें ताकि वो आगे चल करके ऐसी कोई भी हरकतें ना करें।
8: यस मैम,
3: तो चले ब्रेक ले।
8: यस मैम बिल्कुल,
3: तो चलिए आप ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के लिए बोलेंगी आपको संध्या। संध्या बोलेंगी ब्रेक के लिए कि एक सॉन्ग सुनते हैं।
8: चलिए अब आप एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए, हम मिलते हैं आपको उस पार ब्रेक।
3: हाँ, जी हाँ, ये थोड़ा सा डर रही है आज, पता नहीं क्यों मेरे साथ शो कर रही है, पता नहीं क्या ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग पता नहीं क्यों मेरे साथ बैठते हुए डरते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या संध्या? क्योंकि अंशिका भी कहती है मुझे, पर ऐसा कुछ नहीं है, डरना कुछ नहीं चाहिए।
8: यस मैम,
3: है ऐसा कुछ है क्या
8: मैम? आप वैसे तो बहुत फ्रेंडली है, लेकिन आप मैम है मेरे लिए।
3: अच्छा ऐसा है क्या?
8: यस मैम, रिस्पेक्ट।
3: तो रिस्पेक्टफुली ये हमसे डर रही है, खैर कोई नहीं। तो आइए चैट बॉक्स में चलते हैं, और चैट बॉक्स में आ गए अरविंद फ्रॉम मनकापुर, जो कि लिख रहे हैं आरजे मनु शुभ दोपहरिया। अरविंद जी आपको पता होना चाहिए कि आरजे मनु इस समय नहीं आ, सॉरी आरजे मनु मुझे दिख रहा है, हाँ आरजे मैम। अरविंद जी शुभ दोपहरिया आपको भी, और रवि फ्रॉम गोंडा, शुभ संध्या मैम, शुभ संध्या मैम आपको बोला जाए।
8: थैंक यू रवि भैया।
3: एंड शुभ दोपहर कैसे बोल सकते हैं समता मैम, जब आप में हो, आप में हो संध्या मैम, शुभ दोपहर दोनों आजेस मैम को,
8: मेरी तरफ से सबको शुभ दोपहर।
3: जी जी जी जी जी। तो चले एक गाना सुन लेते हैं फटाफट, बिल्कुल देर लगाए बिना, क्योंकि हो गया है टाइम आपको एक ब्रेक देने का। हम आते हैं ब्रेक के उस पार, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सुनते रहना है 89.6 FM पे, शो चल रहा है आपका पसंदीदा सुन सहेली।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज संध्या जी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चों को आजकल वायरल फीवर, यानी बड़ों को भी वायरल फीवर जो फैला हुआ है, ये क्यों फैला हुआ है। तो भाई क्यों पहले बताएंगे एंड देन बताएंगे कि इसका उपाय और उपचार।
7: मैम, बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा अगर वायरल होने के चांस होते हैं तो बरसाती सीजन में होते हैं। जगह जगह पानी भरा होता है।
6: ये क्यों होता है? जैसे बरसात के ही दिनों में क्यों होता है?
7: क्योंकि मैम वो जगह जगह पानी भरे होते हैं गड्ढों में।
6: और आज पता है कुछ ऐसा हुआ, मतलब मैं जब कॉलेज आई
7: जी मैम,
6: तो कुछ ऐसे एरियाज में बहुत सारा पानी भरा हुआ था और उसके ऊपर से मच्छर भी घूम रहे थे।
7: जी मैम, एकदम सही बात कह रही हैं आप। तो पानी भरा तो, और टेम्परेचर में भी चेंजेस आते होते हैं।
6: मतलब जैसे गर्मी, और कभी गर्मी हो जा रही है तो कभी सर्दी लग रही है,
7: ठंडी जैसे।
6: और इस समय तो ऐसा हो रहा है कि जब आप रात में लेट रहे हैं मतलब सोने के लिए, तब उसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे 1 बजे के बाद ठंड सी लगने लग रही है।
7: ठंड सी, और ये रात में 9, 10, 11 बजे की उमस वाली
6: गर्मी हो रही है।
7: जब टेम्परेचर चेंज होता है मैम, तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया वायरस बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। तो इस क्या होता है कि बच्चों के जो इम्यूनिटी पावर है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर डेवलप हुई होती है।
6: बिल्कुल,
7: तो इसलिए वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं।
6: हाँ, तो अच्छा ये कारण है।
7: यस मैम।
6: और जैसे घरों की साफ सफाई के लिए भी कुछ अगर आप बताना चाहें तो।
7: बिल्कुल मैम, जैसे घरों में जो सबके घर में गमले जरूर होते हैं, और गमले में, कूलरों में, गड्ढों में, ये मतलब वो जो
6: नालियों में जो से चैम्बर होते हैं घरों में, हाँ।
7: तो उसमें जो पानी भरा रहता है तो उसमें मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं, वो अंडे देते हैं, और जब अंडे उनके
6: पनपने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं,
7: अंडे जब पनपने लगते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो जाके अगर कोई इंसान वहाँ सोया है रहता है तो वो सीधे उन पे अटैक करता है, काट लेते हैं।
6: और उससे फिर ये सब वायरल फीवर, डेंगू,
7: मलेरिया हो जाता है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी ये ग्रो भी करते हैं, बहुत जल्दी साइड इफेक्ट इसके दिखते हैं।
6: बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मेनली कारण ये होता है कि अगर हमारे घरों में कूलर है, या फिर क्या कहते हैं कि जैसे मतलब कहीं पे भी पानी को स्टोर नहीं होने दें।
7: बिल्कुल सही बात।
6: और मैं एक बार बताऊँ, मुझे एक और ध्यान आ रहा है कि आपने देखा होगा कि जब हम वो करते हैं फ्रिज के पीछे का एक छोटा सा एक कंटेनर होता है जिसमें पानी भर जाता है।
7: हाँ, जो ऑटो डिफ्रोज करके जो पानी उसमें आता है। यस मैम, उसमें भी बहुत ज्यादा होते हैं,
6: मच्छर और गंदगी भर जाने के कारण से आपके कमरे में मच्छरों का आवागमन हो सकता है।
7: यस मैम, बहुत लोग जैसे वो जो फ्रिज है वो किचन में रखते हैं, और कईयों के घर में क्या होता है कि अगर वो किचन में नहीं रूम में रखते हैं और लोग रूम में सोते हैं, तो फिर सोचो कितना उसका कितना मच्छर वहाँ
6: कितना हो सकता है। अभी पता है, अभी मुझे बैठे बैठे ये चीज याद आई कि ये भी हो सकता है कि हाँ, ये भी मतलब ऐसे जो फ्रिज वाला है तो इसके कारण भी मतलब ये जो फीवर है ये फैल सकता है।
7: जी मैम।
6: अच्छा संध्या, और कैसे हम इसका उपाय कुछ मतलब इसका होगा कि मतलब साफ सफाई तो है ही, वो तो मुझे पता है, लेकिन और क्या ऐसे उपचार हैं जो हम करके वायरल फीवर से अपने आप को बचा सकते हैं?
7: जी मैम, पहले तो सबसे पहली बात तो आपको मैंने बताया कि हाँ घर के अगल बगल या फिर घर में कहीं पानी स्टोर होने ना दें। अब बच्चों को बाहर भेजते समय सबसे पहले तो उन्हें फुल स्लीव की कपड़ा पहना के भेजें
6: ताकि अरे वाह मैम जी आगे
7: आप तो बहुत समझदार हैं।
6: जी जी जी आगे।
7: हाँ, और सोते समय मच्छरदानी जरूर लगा के सोएं ताकि
6: इस वाले मौसम में
7: यस मैम। हाँ। इस समय हाँ लोग क्या करते हैं कि इस टाइम मच्छरदानी, लेकिन उन्हें इस टाइम सबसे ज्यादा मच्छरदानी की जरूरत होती है। हाँ, तो और फिर अगर तुम्हें कोई दवा भी लेनी है तो अपनी मर्जी से ना लें, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें फिर लें। बिना अब क्या होता है कि लोग जान नहीं पाते, ऐसे ही कोई दवा खिला देते हैं, तो बिल्कुल नहीं, पहले डॉक्टर से राय लीजिए, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करे वही दवा खिलाइए।
6: और पता है संध्या, ऐसा भी मैंने देखा है कई लोगों को कि हल्का सा फीवर हुआ या फिर हल्का सा कुछ भी हुआ ना, वो जाकर के किसी भी केमिस्ट पे जाकर के कोई टैबलेट ले लेते हैं और उसको खा करके अपने आप को रिलीव कर लेते हैं, बट उसके बैक्टीरिया जो होते हैं ना फीवर के, वो अंदर अंदर कहीं ना कहीं रहते हैं।
7: यस मैम, तो इसीलिए पहली बात तो ये नहीं, अगर तुम ऐसे रफली जाके डॉक्टर से बोल दो कि सर मुझे हल्का सा ऐसे बुखार है, तो वो ऐसे नॉर्मल दवा दे देगा। आप उन्हें एग्जैक्ट बातें बताओ कि हाँ मुझे इस तरीके से इस टाइमिंग से बुखार आते हैं, ऐसे ठंड लगती है, तो वो समझ जाएगा। हाँ। तब वो एकदम बिल्कुल जो दवाई चाहिए वही देगा।
6: एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए।
7: जी मैम,
6: मतलब ये सब जो है ये उपचार है और अभी उपचार और भी बाकी है, पर संध्या मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे आगे कि इसका जो इसके सिम्टम्स होते हैं, मतलब इस वायरल फीवर के सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं।
7: बिल्कुल मैम,
6: तो वो लक्षणों पे हम बात करेंगे, लेकिन हम लिसनर्स को बता दें कि आप लोग बिल्कुल जागरूक रहिए, हम उन सब पे बात करेंगे लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है हमारे साथ में। आपका

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है संध्या जी, यानी दोनों SS आज आपके सामने हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अभी वायरल फीवर की बात हो रही थी, तो सबसे पहले जानेंगे हम लक्षण और उसके बाद उसका उपचार। तो लक्षण संध्या जी।
3: जी मैम, अचानक से तेज बुखार आने लगता है जब, और सिर दर्द तो इतना तेज कि आप परेशान हो जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, आँखों के पीछे दर्द होगा, यहाँ आँख के पीछे अंदर साइड में दर्द होने लगता है और मसल्स में, जोड़ों में बहुत ज्यादा तेज दर्द,
2: अंदर से फीवर, अंदर से लगना।
3: यस मैम, पूरे मतलब बॉडी एकदम से इतना पेन होगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि कितना दर्द है, और फिर वो बॉडी में, पूरे बॉडी में रेसेस भी हो जाते हैं।
2: अच्छा।
3: जी मैम,
2: फिर
3: तो फिर ये सब, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना। अगर जरा सा फीवर आता है तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अगर ये जरा सी आपकी लापरवाही आपको बहुत ज़्यादा डीप में ले जा सकती है। यस मैम,
2: मतलब ये कई दिनों तक फिर ऐसा हो जाएगा कि ये बहुत ही परेशान कर।
3: हाँ, और फिर अब जब ये हो जाएगा तब फिर आप दवा भी करवाएंगे तो इतनी जल्दी वो रिलीफ नहीं मिलती है, क्योंकि वो अगर कोई सिम्टम्स आपके अंदर आ गए हैं तो इतनी ईजिली तो जाने वाले हैं नहीं।
2: बिल्कुल।
3: तो इसीलिए सबसे ज़्यादा केयरफुल रहिए, और सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप जब केयरफुल रहेंगे और खुद का ध्यान रखेंगे तो ये फीवर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।
2: तो उसके लिए क्या करना है आप वन बाय वन बताएं प्लीज़।
3: वही मैम कि आप पानी जमा बिल्कुल ना होने दें, फुल स्लीव के कपड़े पहने, सोते समय अगर मच्छरदानी है तो लगाइए, नहीं तो कोई मॉस्किटो आयल जो हो, जो कि परफेक्ट हुई ना कि हाँ ऐसे कैसे सब कुछ, मतलब देख लीजिए कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है उसकी, या फिर आप लगा ले उसके, हाँ पता चला आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मच्छर से बचाव करना है, और अगर एक्सपायरी डेट है तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो अलग ही दिख जाएंगे।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है मैम,
2: और साफ़ सफाई के साथ साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। जब आप खाना खाएं कहीं से आएं बाहर, तो आपने तुरंत वो गंदे हाथ अपनी आंखों में नहीं, जैसे बहुतों की आदत होती है ना कि आंखों को मसल लेते हैं।
3: जी मैम।
2: या फिर कुछ भी कहीं मिला तो फटाक से ले करके खा लेना।
3: मैम मैंने तो बहुत लोगों को देखा है कि अगर मान लो बाजार में खड़े हैं, किसी ने समोसा लिया है, तो वो उस टाइम हाथ तो धुलने जाएंगे नहीं।
2: हाँ।
3: वो हाथ धुलेंगे नहीं पहली बात तो, समोसा वो ऐसे ही खा लेंगे, फिर क्या करेंगे तब, उसके बाद भी हाथ नहीं धुलेंगे, कपड़े में ऐसे हाथ पोछ के काम चला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके लिए रिस्की हो रही है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हाँ ज़रूर हाथ तो सबसे पहले धुलें ही धुलें ऐसे, क्योंकि आप दिन भर कहीं फ़ोन छू लेते हैं, कहीं किसी का पेन छू लिए, तो इस पर बैक्टीरिया वायरस होते ही होते हैं।
2: एग्जैक्टली। और साथ ही साथ में मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जैसे आप कहीं से भी बाहर से आ रहे हैं तो इस समय जो कि बारिश का मौसम है, तो आपने हाथ और पैर तो अच्छे से धुलना ही धुलना है, साथ ही साथ में आपको मुंह भी धुलना है।
3: यस मैम।
2: क्योंकि कुछ भी ऐसी जो हवाएं होती हैं जैसे बारिश का है, तो ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज़ को छुआ है तो ही आपको बैक्टीरियाज लग सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हवाओं में भी होता है, तो आप घर पे जाएं तो एटलीस्ट आपको अपना हाथ पैर मुंह तो धुलना ही धुलना है, उसके बाद हाथ धुल करके ही आप किसी चीज़ को खाएं। एक और बात बता देना चाहते हैं, काफी लोगों की आदत होती है कि मार्केट से फल लेकर के आते
3: और बिना धुले
2: खा लिया।
3: मैम खा भी लेते हैं, कोई कोई तो ऐसा करता है कि बिना धुले ही खा लेते हैं, सोचते हैं हाँ इसमें कुछ दिख थोड़ी ना रहा है, कुछ लगा है, लेकिन उसमें तो बहुत कुछ लगा, इसीलिए सबसे पहले उसको अच्छे से धुले।
2: एग्जैक्टली। खास करके जो लोग क्या कहते हैं, जो फल मतलब ऐसे ही जो ऊपर होते हैं ना छिलके वाले, तो उन्हें तो बिल्कुल अच्छे से धुल के खाना ही खाना है। जैसे अमरूद हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, तो ये सब चीजें ना कि बिल्कुल अच्छे से आप धुलें और उसको अच्छे से साफ करें, उसके बाद ही आप उसका सेवन करें।
3: और मैम जैसे किसी किसी के यहाँ होता नहीं, मान लिया फल आधे घंटे से कटा रखा है, तो सोचेंगे फल ही तो है, इसमें क्या है, कटा हुआ फल भी नहीं खाना।
2: संध्या, जैसे कि पपीता भी ऐसे मार्केट में कटा हुआ मिल जाता है।
3: जी मैम।
2: तो लोग इजिली लेकर के खाने लगते हैं।
3: हाँ, कि उन्हें काटने धुलने से बेटर है कि वो तुरंत लिए तुरंत खा ले, लेकिन उस पे भी क्या होता है कि मक्खी आके बैठ जाती है, डस्ट आ जाता है, तो फिर उन चीजों को नहीं, सब चीजों को सोच समझ के खाए।
2: हालांकि मुझे पपाया बहुत पसंद है,
3: पपाया होता भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उसमें सब क्वालिटी होती
2: सब है सब स्किन के लिए, पेट के लिए। जिन्होंने कहते हैं कि अगर आपने पपाया खाना शुरू कर दिया तो आपकी जो एंटी एजिंग वाली प्रॉब्लम होती है ना स्किन की,
3: yes,
2: वो ठीक होती है और पेट अच्छा रहता है।
3: मैम पपाया एक ऐसा है कि उसमें क्या होता है कि अगर आप अलग से प्रोटीन फैट्स फाइबर नहीं ले रहे हैं और अगर आप पपाया ले लिए तो समझ लीजिए कि सबकी क्वालिटी उसके अंदर आ गई,
2: क्वालिटी उसके अंदर।
3: यस मैम, वो यूनिवर्सल बहुत अच्छी चीज है।
2: बिल्कुल,
3: एक पपाया और दूसरा दूध।
2: दूध,
3: यस मैम, वो तो शाम को पिया जाता
2: नहीं,
3: है।
2: नहीं मतलब पपाया और दूध साथ में नहीं लेना।
3: नहीं नहीं मैम, नहीं। मोस्टली पपाया मेरा मानना है कि मॉर्निंग में,
2: मॉर्निंग या दोपहर में खाना चाहिए।
3: जी मैम।
2: और दूध आपने नाइट में लेना है। मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि पपाया और दूध आपने एक साथ ले लिया तब तो पेट का जो है ना वो सत्यानाशी हो जाना है।
3: नहीं मैम, तो ये क्या है ना कि लेकिन अगर दोनों में से आप पपाये से, अब जरूरी नहीं है कि हर इंसान ड्राई फ्रूट्स ले रहा हो और सब कुछ है, तो अब अगर वो दिन में पपाया ले रहा है और शाम को नाइट में दूध, तो समझ लो कि डिजीज से होने के चांसेस बहुत ना के बराबर हो जाएंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो भाई ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो अभी हम लोगों ने वायरल फीवर को लेकर के दी। तो आई थिंक अब एक ब्रेक का टाइम हो गया है, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आएंगे आज की मॉरल स्टोरी जो कि हमारे बच्चों को लेकर के होती है, एंड देन आज के टिप्स जो कि हमारे हमेशा से रहते हैं टिप ऑफ द डे। लेकिन उसके पहले आइए सुना देते हैं इस प्यारे से गाने को, क्योंकि क्योंकि क्योंकि हो गया है टाइम ब्रेक टाइम। तो बस हम यू गए यू आए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज संध्या। तो संध्या, ये बताइए मुझे आज कि
6: जी मैम,
5: बच्चों वाले सेक्शन को आपने आज किया मेरे साथ में, तो आपको कैसा लगा?
6: जी बहुत अच्छा लगा मैम मुझे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अभी बहुत छोटे होते हैं, वो जान नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है, कैसे रहना है। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चों का ध्यान हम लोग खुद रखें, और आज मुझे आपकी वो स्टोरी कि बच्चों की जिद वाली, वो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी।
5: हाँ।
6: क्योंकि कि बच्चों की जो जिद होती है उसे हमेशा कहीं कहीं बच्चों की जिद ना पूरी करना भी एक अच्छाई होती है।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
6: हाँ, तो फिर अगर आप बार बार बच्चों की जिद पूरी कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। वो आप पूरी करते जाएंगे, वो उनके लिए इतना ईजी हो जाएगा कि कहीं कहीं अगर कोई चीज़ें उन्हें नहीं मिल रही हैं तो उन्हें वो समझने के बजाय उसका साइड इफेक्ट गलत निकाल के वो उस पर हॉबी हो जाता है कि नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए। कभी कभी वो पेरेंट की सिचुएशन को नहीं समझते हैं।
5: एग्जैक्टली यस। संध्या, एक बात मैं बताऊं आपको कि जब हम सब ने पढ़ाई की हुई है, क्लास फर्स्ट में, क्लास थर्ड में, क्लास टू में, फोर्थ में, सब लोगों ने पढ़ाई की है।
6: जी मैम बिल्कुल।
5: तो उस समय एक स्टोरी की बुक हुआ करती थी।
6: कौन
5: सब लोगों ने पढ़ी है स्टोरी की बुक? कौन सी नहीं, मतलब स्टोरीज की बुक तो हुआ करती थी ना।
6: बिल्कुल मैम, सब क्लास में होती। यस मैम होती।
5: तो आज मैं उसी पिटारे में से एक छोटी सी कहानी आपके लिए भी लेके आई हूँ और अपने प्यारे लिसनर दोस्तों के लिए।
6: मैम कहानी तो वैसे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब आप सुनाती हैं तो और ज्यादा अच्छा लगता है।
5: तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी कहानी जो कि क्लास टू की आई थिंक है, ये जो सभी ने सुना भी होगा, एंड मॉरल मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा। ठीक है
6: जी मैम,
5: तो बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है
6: मैम,
5: ये कहानी है बंदर और मगरमच्छ की। तो आई थिंक आप सभी को याद तो आ ही गया होगा, लेकिन आज इस कहानी का जो मॉरल है वो आप लोग बताएंगे हमें। तो शुरू कर रहे हैं। ठीक है
6: जी मैम।
5: एक घना जंगल था और नदी किनारे एक बड़ा फलदार पेड़ था। इस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था जो रोज ताजे फल खाकर अपना पेट भरता था।
6: जी।
5: नदी में रहने वाला एक मगरमच्छ जिसका नाम गोलू था अक्सर बंदर से मिलने आता और बंदर उसे भी फल खिलाता। धीरे धीरे वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने उस बंदर का दिल लाने की फरमाइश कर दी। मतलब पत्नी ने कहा कि तुम जिसको फल खिलाते हो
6: उसका दिल चाहिए।
5: हाँ, मुझे उसका दिल लाके दो।
6: जी मैम।
5: वो कहती थी कि जब अगर बंदर इतने रसीले फल खाता है तो उसका दिल भी बहुत स्वादिष्ट होगा।
6: जी मैम।
5: मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात सुनकर दुविधा में पड़ गया। वो अपने दोस्त बंदर को धोखा देने का विचार कर रहा था, लेकिन उसका मन भी इस बात से दुखी था क्योंकि इधर पत्नी और इधर दोस्त। लेकिन अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी से मिलवाने का बहाना बनाकर नदी के पार आमंत्रित किया, उसको बुलाया कि चलो मैं तुम्हें
6: अपनी वाइफ
5: से मिलाने चाहता
6: हूं।
5: बंदर जो स्वभाव से भोला और दयालु था परंतु तुरंत तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, क्योंकि उससे उसकी फ्रेंडशिप थी।
6: yes,
5: तो उसने सोचा कि भाई जब दोस्ती है तो
6: इनके साथ जाने में कोई दिक्कत
5: नहीं,
6: ट्रस्ट था उसको।
5: हाँ, जैसे ही वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने अपनी योजना का खुलासा किया।
6: जी,
5: बंदर चौंक गया। चौंक कर बोलने लगा, लेकिन तुरंत उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, क्योंकि बंदर तो चालाक होते
6: हैं।
5: हाँ,
6: चालाक होते हैं।
5: हाँ, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। ओह, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया। बंदर ने कहा, मुझे वापस पेड़ पर ले चलो ताकि मैं अपना दिल तुम्हें लाकर दे सकूं।
6: जी मैं।
5: मगरमच्छ जो थोड़ा सा सीधा साधा था, बंदर की बातों में आ गया और उसे वापस पेड़ तक ले गया।
6: जी मैं।
5: वे पेड़ के पास पहुँचे, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, तुम मेरे सच्चे दोस्त थे, लेकिन तुमने धोखा देने की कोशिश की। दिल तो हमारा शरीर में ही होता है, ये तो मैंने तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए कहा था। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वहाँ पर शर्मिंदा हुआ। उसने बंदर से माफी मांगी, वादा किया कि वह फिर कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन बंदर ने मगरमच्छ को माफ कर दिया, लेकिन उससे सावधानी बरतने का फैसला कर लिया। तो इस कहानी से हमको मॉरल क्या मिलता है, पहले मैं आपसे जानूंगी, फिर मैं बताऊंगी।
6: मैम, इस कहानी से मुझे ये मिलता है कि इतनी जल्दी किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए, और खुद का दिमाग लगा के अगर कहीं ऐसा प्रॉब्लम आती है तो सही डिसीजन लेके और खुद को सेफ रखना चाहिए।
5: एग्जैक्टली।
6: और किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।
5: बिल्कुल। और अब मैं आपको इस कहानी का मॉरल बताती हूँ कि देखो, दोस्ती जो होती है, वो दोस्ती की मिसाल कहा जाता है श्री कृष्ण और सुदामा।
6: जी मैम।
5: अभी जन्माष्टमी आने वाली है 4 को।
6: बिल्कुल।
5: तो कृष्ण की दोस्ती सुदामा से एक पाक शीशे की तरह थी।
6: जी मैम।
5: है ना, जो आज भी मिसाल दी जाती है इतिहासों में।
6: जी मैम,
5: सबको पता है। ठीक है, तो वैसी दोस्ती का मतलब होता है कि एक दूसरे पर जान छिड़काना, जान दे देना।
6: यस मैम।
5: और दोस्ती पे अगर जो भी छल करता है, किसी के विश्वास को कोई घात करता है, किसी से विश्वासघात करता है, उसकी सारी चीजों को जानने के बाद, उससे पूरा फायदा उठाने के बाद, अगर कोई किसी को धोखा देता है, तो ईश्वर उसको कभी माफ नहीं करता है। वो इंसान उसको माफ कर देगा, लेकिन ईश्वर जो देख रहा होता है, वो उसे कभी माफ नहीं करता है। इसीलिए ये कहानी केवल हमें यही सिखाती है कि धोखा देना कभी भी उचित बात नहीं
6: है,
5: और सच्ची दोस्ती का महत्व बहुमूल्य होता है।
6: जी मैम।
5: एंड किसी पर आज की जनरेशन, जो आजकल जेंजी कहा जा रहा है, आज की जनरेशन जो है, उस पर जो, उनके लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, जो बच्चे अकेले ट्रैवल करते हैं, जो बच्चे अच्छी दोस्ती कहते हैं कि मेरा फ्रेंड है, अच्छा है, मैं एक साथ रहती हूँ, तो प्लीज इतना ज्यादा ट्रस्ट किसी पर आज के युग में नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये माने कि दोस्ती अच्छी भी है, आज के युग में भी दोस्ती है अच्छी, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा सेफ होना जरूरी होता है, थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी समझदारी होना रखना ज्यादा सेफ्टी का पॉइंट होता है।
6: जी मैम।
5: तो ये था कहानी का मॉरल, जो कि आज की कहानी को हमने आपको बताया। तो अब हम सीधे चलते हैं, आपको एक गाना सुनाएंगे और उसके बाद आएंगे टाटा बाय बाय करने के लिए। एंड आज का टिप ऑफ द डे, जो कि हमने रखा है संभाल के सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो बस हम यू गए यू आए। स्टे ट्यून्ड।

एग्जैक्टली इतना प्यारा सा गाना है, तो जाते हुए खैर मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जाना ज़रूरी है, आज जाएंगे नहीं तो कल आएंगे कैसे। तो चलिए हम तो जाते जाते आपको केवल आज का बताते जाते हैं कि आज का टिप ऑफ द डे ये है कि बच्चे जब स्कूल से आ रहे हैं तो उनके बैग्स हों या फिर उनकी ड्रेसेस हों या उनके शूज़ सॉक्स हों, उस समय बारिश में गीले हो जा रहे हैं, तो पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि उन्हें एक बार ज़रूर से वॉश कर लें, खास करके सॉक्स को, शूज़ को, ताकि नेक्स्ट डे के लिए उसमें कोई बैक्टीरिया या फिर ड्रेसेस में कोई बैक्टीरिया ना रह जाए, क्योंकि ये बारिश का पानी जो है और वायरल इसी से फैल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर, संध्या और मैं अगेन कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

हाँ जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। माजरत चाहेंगे आपसे कुछ वक्त की देरी के लिए, बिकॉज हम रुके हुए थे पिछले 45 मिनट से एक छोटे से ट्रैफिक जैम में। वैसे छोटा सा तो नहीं कहेंगे कि 45 मिनट बहुत लंबा चौड़ा होता है। फिलहाल के लिए हम आ चुके हैं और घड़ी में वक्त हो चला है 3:16। देरी के लिए माफ़ी चाहूँगी। फिलहाल आइए ट्यून कर लेते हैं आपकी अपनी फरमाइशों के सिलसिले को, बिकॉज क्योंकि ये है आपका अपना कॉल ट्यून गोंडा। और हमारी पहली फरमाइश आई है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सुनील जी की। तो यह सुनील जी की फरमाइश को ट्यून कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो ज्ञानस 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और सुनील जी की फरमाइश को आइए एंजॉय करते हैं, प्लस आप अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे सुनील जी की फरमाइश कुछी कुछी। वैसे हम बारिश में बैठकर भी यही कर रहे थे फिलहाल के लिए। आइए चैट बॉक्स में चल लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे आपके अगले गाने, अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए। तो आफ्टर ऑल बहुत देर से मेरा इंतजार हो रहा है और हम ट्रैफिक में बैठ कर आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रहे थे और हमसे रहा नहीं जा रहा था कि रिप्लाई ना दे, इसलिए हमने फाइनली दे भी दिया। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं रिजू जी और आपका भी स्वागत करते हैं। नाजिया अंसारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अरविंद जी फ्रॉम मनकापुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड इसके बाद है कि आवाज़ दो हम खो गए हैं। उन्नति मैम, अरविंद जी आपको आवाज़ दे रहे हैं, आप कहाँ पर हैं? आ जाइए, वापस आ जाइए, खोने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो चक्कर आने लगे रहा बाबा। चलिए कोई बात नहीं, आपके चक्कर को ठीक करते हैं, कोकोनट वाटर पिलाते हैं आज आपको हम। और इसी के साथ आ गई मैम, यहू जी हाँ मैं आ गई और मैं भी इतनी ही खुश हो रही हूँ। आपने तो डरा दिया, ओके मैं आपको डरा कैसे सकती हूँ? आप इतने प्यारे से बच्चे हो, इतनी प्यारी सी, इतनी खूबसूरत सी हमारी फीमेल है, हमारी लिस्टर है, हम आपको कैसे डरा सकते हैं? महेंद्र जी लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेट्स ऑन विनिंग द बैटल विद द रोड मैम, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। धर्मेंद्र मोहन जी हमसे जुड़े हैं आवाज़ विकास से, जो लिख रहे हैं उन्नति जी नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आ रही है आपके अगले गाने को ट्यून करने की, यानी कि अगली फरमाइश को ट्यून करने की। अगली फरमाइश हमारी आई है देवी प्रसाद जी की और आज उन्होंने मंगलवार को दिन में ध्यान में रखते हुए, मंगलवार का दिन, उन्होंने फरमाइश भी की है हनुमान जी के भजन की। तो आइए एंजॉय करते हैं, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, सुनते रहिए राजू पंजाबी की आवाज़ में, स्टे ट्यून्ड।

अंजी, तो आपने अगर चुटकी बजा ली है और आपने एंजॉय कर लिया है प्यारा सा भजन मंगलवार के दिन, तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास जो आई है वो आई है नादिया जी की, और पता नहीं क्यों लेकिन मुझसे कंपटीशन होने लगा है। गाइस ये कंपटीशन हो रहा है हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के बीच में, जो हमसे बोल रहे हैं नादिया जी आपको चैलेंज करते हैं, आज से हम स्पीकिंग कोर्स छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपसे कॉम्पिटिशन करेंगे तेज बोलने की। हम इतना तेज बोलते हैं क्या भाई साहब? फिलहाल के लिए बोल भी सकते हैं क्योंकि हमारे के गुप्ता जी ने हमको नाम भी दिया था 200 स्पीड वाली आरजी उन्नति, फिलहाल आज हमारे साथ नहीं है वो। एंड इसी के साथ आपका स्वागत करते हैं। ओके, तो अंबर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और लिखा है उन्होंने, जुड़े तो हम भी हैं, हमारा भी स्वागत कर लो, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं कॉल ट्यून गुना में। सुरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं जो लिख रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम। एंड आपका भी वेलकम करते हैं कॉल ट्यून गुना में। आइए ट्यून कर लेते हैं आपका अपना गाना जो कि नादिया जी की फरमाइश है। एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले गाने पर अगली फरमाइश को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, और आइए चलते हैं इसी के साथ ट्यून कर लेते हैं हमारी नाजिया अंसारी जी की फरमाइश और वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग दर्दे डिस्को ओम शांति ओम से हम सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। सोनिया तिवारी हमारे साथ जुड़ गई हैं और लिखा है उन्होंने, हाय मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड इसी के साथ उन्होंने लिखा है कुछ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, जिंदगी किस मोड़ पर लाई है, अब तो खुद से भी तन्हाई है, हंसते हैं यूं तो सबके सामने पर अंदर बसी एक दुहाई है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतनी तकलीफ इतना दर्द कहाँ छुपा कर रखते हैं आप। फिलहाल आइए ट्यून कर लेते हैं हमारी नाजिया अंसारी जी की फरमाइश दर्द डिस्को और मिलते हैं अगले सॉन्ग को लेकर के। अगला सॉन्ग जो आप ही की फरमाइश का होगा कॉल ट्यून गोना में, प्लस आप अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर।

और ये फरमाइश थी हमारी नाजिया अंसारी जी की। ओम शांति ओम फिल्म से आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह की आवाज़ में दिल में मेरे है दर्द डिस्को, जावेद अख्तर के बोल थे और बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक जो था वो विशाल और शेखर का था। फिलहाल आइए ट्यून कर लेते हैं आपकी अगली फरमाइश जो कि हमारी सतीश जी की है, जिन्हें सुनना है जुदाई फिल्म से मेरी जिंदगी एक प्यास है। जिंदगी प्यास है तो पानी पी लीजिए। फिलहाल अच्छा पानी तो वैसे भी पीना चाहिए ना दोस्तों, आप लोग पानी पीते नहीं है क्योंकि पता है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए प्यास नहीं लगती। फिलहाल कोशिश कीजिए कि वाटर ब्रेक लेकर आइए, एंजॉय करते रहिए। आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा, मिलते हैं अगली फरमाइश पर। और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा का अपना एफएम रेडियो ज्ञान 89.6 एफएम। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरजे उन्नति।

0: हाँ जी, और जिंदगी एक प्यास है और हमने कहा कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था। तैर के आने का मन कर रहा था मेरा, लेकिन मुझे तैरना भी नहीं आता है, सीखा ही नहीं कभी, बाय मिस्टेक। फिलहाल तुम्हारे महेंद्र जी कह रहे हैं कि मैम बारिश हो रही हो तो हमारे यहाँ भेजो। अभी मैं बारिश जाके कहती हूँ कि यहाँ से ट्रांसफ़र होकर सीधे आपके पास सूरत में पहुँच जाएँ। अगर वो मेरी बात मान लेते हैं तो आपके तक पहुँच जाएंगे, अदरवाइज़ फिर आपको बैठना पड़ेगा। फिलहाल आइए चलते हैं जी, उन कर लेते हैं आपका अगला फरमाइश जो कि हमारे चांद बाबू जी का है। और हम आपको बता दें, उन्होंने रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से डिमांड की है, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो आइए एंजॉय करते हैं प्यारा सा सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और रही बात रब की दिखने की, तो ये गाना इतना स्पिरिचुअल है ना कि जब इस म्यूज़िक राइटर और कंपोज़र पहुँचे थे अमृतसर, तो वहाँ से इंस्पिरेशन आया था गुरुद्वारे को देखकर कि तुझमें रब दिखता है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गाने को लिखा भी गया था। तो आइए एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे साझे तरीके गाने को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: मैं बस इतना ही जानूं तुझमें रब दिखता है।
0: एंड हमारे साथ सनी पांडे जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। लिखा है गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। और हमारी सोनिया जी कह रही हैं कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जुबा पर नहीं आते। बिल्कुल बात सही है, मैं आपकी इस चीज को समझ सकती हूँ।

और इस बेहद रोमांटिक गाने के बाद हमारे साजिद जी ने फरमाइश की है एक दिल तोड़ देने वाले सॉन्ग की, जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। वैसे एक बात तो है, जिसे आप भूलना चाहते हैं वो अक्सर आपको याद आते हैं, इसलिए कहा जाता है कि किसी को भूलने की कोशिश ना करें। जैसे आप एग्ज़ाम पेपर में बैठ के एग्ज़ाम के टाइम पर आंसर याद करते हैं और आपको याद नहीं होते, ऐसे ही लोगों के साथ भी होता है। जब आप किसी को भूलना चाहते हैं, किसी याद को भूलना चाहते हैं, तो आप उसे भूल भी नहीं पाते, आपका दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो भूलने की कोशिश ना करें। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि आपके गाने पर हमने ध्यान दे दिया है अरविंद जी, लेकिन इसके आगे क्या करना है ये नहीं पता है हमको। फिलहाल एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गुड़ा स्टे ट्यून्ड।

घड़ी को मद्देनजर रखते हुए हम आपको बता दें कि प्रेम धवन साहब का लिखा हुआ गीत आप एंजॉय कर रहे थे साजिद जी की फरमाइश पर, जिन्हें हम भूलना चाहते हैं वो अक्सर हमें याद आते हैं। आशा जी, मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाज़ है इस गाने के अंदर। एंड आइए चलते हैं, ट्यून कर लेते हैं अपने अगले सॉन्ग को। अगला सॉन्ग हमारे इरशाद जी का है, तो इरशाद जी सुनना चाहते हैं हमको तुमसे हो गया है प्यार। ओहो, क्या बात है। मतलब आज बैक टू बैक एक सैड एक रोमांटिक, एक सैड एक रोमांटिक, एक सैड एक रोमांटिक, मतलब ऐसे लगा हुआ है लाइन से हमारे पास गाने। लगता है आज आपके इमोशंस को वो रोलर कोस्टर की तरह घुमाया जाएगा। एक तरफ आपको बेहद मोहब्बत लुटाई जाएगी, दूसरी तरफ आपको बताया जाएगा कि मोहब्बत करते हैं तो तकलीफ भी होती है। ऐसा ही है क्या? फिलहाल बारिश के मौसम में एंजॉय करते रहिए कुछ प्यार मोहब्बत और कुछ आपके दिल को छूने वाले गीत। आपकी अपने सुरों की महफिल, कॉल ट्यून को डालें।

हमको तुमसे हो गया है प्यार, हम क्या करें, इरशाद जी की फरमाइश थी। और आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। और अगला सॉन्ग, अगली फरमाइश, अगला डिमांड हमारे पास है रई साहब का, और वो सुनना चाहते हैं बंधन तुम से बल्ले बल्ले। तो आइए इंजॉय करते हैं एंड मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि हमारी महेंद्र जी की, अरविंद जी की, समरीन जी की, राकेश वर्मा जी की, और हमारी आखिरी फरमाइश होने वाली है सत्यम जी की। स्टे ट्यून्ड।

आप इंजॉय कर रहे थे रईस साहब की फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास आई है महेंद्र जी की, जोड़ी नंबर वन से लाल चुनरिया वाली पे दिलाया रे। आइए इंजॉय करते हैं। और ये गाने अब थोड़े से हटकर आ रहे हैं, अभी तक तो आप सैड प्लस कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे थे रोमांटिक गाने, लेकिन अब आ चुके हैं थोड़े से तड़कते भड़कते, थोड़े से हाई बीट। और अरविंद जी लिख रहे हैं, रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब पास होकर भी कोई साथ नहीं होता। आज हमारे लिसनर थोड़े से सैड लग रहे हैं, रीजन जान सकते हैं हम इस बारिश के मौसम में, खूबसूरत से मौसम में जहाँ पर लोग रोमांटिक हो जाते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें याद आती है, पुराने यार याद आते हैं, वहाँ पर आप लोगों को कौन सी दिल टूटने वाली बातें याद आ रही है। फिलहाल सुनते रहिए, इंजॉय करते रहिए।

आप एंजॉय कर रहे थे हमारे महेंद्र जी की फरमाइश। फिलहाल के लिए हम जाना चाहेंगे अपने अंबर जी से कि इतने सारे मच्छर काहे भेज रहे हैं चैट बॉक्स में, क्या चाहते हैं आप? हमारे सारे लिसनर को जो चैट बॉक्स में मौजूद हैं सबको मलेरिया डेंगू हो जाए, ऐसी बातें करते हैं आप? फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है अरविंद जी का और वो एंजॉय करना चाहते हैं, क्या बात है, इमरान हाशमी का गाना हाँ तू है, हाँ तू है, ख्यालों में तू है और यादों में भी तू ही है। फिलहाल सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉल ट्यून गोड़ा। मिलते हैं अगले गाने पर जो कि सुपर नानी से होने वाला है। स्टे ट्यून्ड।

ज्यादा खूबसूरत से गाने को बीच में रुकने के लिए चाहेंगे आपसे माजरत, तो लेकिन फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून करने के लिए, बिकॉज अगला सॉन्ग हमारे पास आया है माहेरू। इंजॉय करते हैं सुपर नानी से एक बेहद ही रोमांटिक सॉन्ग हमारी समरीन जी की फरमाइश पर।

आप सुन रहे थे समरीन जी की फरमाइश पर सुपर नानी फिल्म से माहिरू। और चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो हमारे पास आया है वो राकेश वर्मा जी का है, जो हमें सुन रहे हैं दुखरन्नाज से। साथ ही साथ रेणु तिवारी जी की फरमाइश है, बहुत ही प्यारा गाना, वो साथ ही तेरे बिना है क्या जीना। आइए एंजॉय करते हैं और उसके बाद मिलते हैं अपनी आखिरी फरमाइश को लेकर के, जो हमारे सत्यम जी की होने वाली है दिलवाले फिल्म से जीता था जिसके लिए। स्टे ट्यून्ड।

राकेश वर्मा और रेनू तिवारी जी की फरमाइश आप एंजॉय कर रहे थे, और साथ ही रे तेरे बिना भी क्या जीना, और यही गाना हमारे महेंद्र जी की पसंद भी था या हुआ करता था ऐसा उन्होंने हमको बता दिया है। फिलहाल आइए चलते हैं, ट्यून कर लेते हैं अपना आखिरी गाना आज के फरमाइश वाले कार्यक्रम यानी कि आपके कॉलर ट्यून गोंडा का, और इसी के साथ चाहूंगी अब आपसे इजाजत। आखिरी फरमाइश हमारे सत्यम जी की है, लेकिन ये गाना डेडिकेट करते हैं हम सभी अपने लिसनर को, वो अलग बात है कि आज जाते जाते पहली दफा हम आपको कोई सैड सॉन्ग डेडिकेट करके जा रहे हैं। फिलहाल आज की देरी के लिए आपसे माजरा चाहेंगे, और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, आज की प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी बताना जरूर। फिलहाल के लिए अब चाहूंगी आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी, रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा विद राजेंद्र।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

पार्टी चीन पाके ब्राउन रे बन लाके गली तेरी केड़ी मारे ऊपर चला के कटी फटी

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9860 9761 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान फिर से मौजूद है आपके अपने पसंदीदा शो गोधूली में, उसी शो में जिसमें हम हर शाम गोंडा की एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं, यानी कि वो अपने कार्यक्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं। और वैसे भी हमारा मानना तो यही है कि भाई जिससे जो भी सीखने को मिले वो तो लेते ही जाओ, लेकिन साथ ही साथ जब बात हेल्थ की आती है, स्वास्थ्य की आती है, तो ये फिक्रमंद होने वाली बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल ने हमको ऐसा घुमा दिया है कि हमारे इतने कमाए हुए पैसे भी जो है वो मिनटों में खर्च हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमें मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है कि भाई इतनी बीमारियों में अगर हमारा पैसा ऐसे ही जाता रहेगा तो हमने जो दो फ्लैट और सोचा था लेने का उसका क्या होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे प्लान होते हैं। बहरहाल, तो आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, आइए उनके बारे में बताते हैं। दरअसल आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव, स्टेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गोंडा। सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू सो मच।
1: कैसी हैं आप? अपना हालचाल हमारे श्रोताओं को बता दे।
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: आप ठीक है? कैसे नहीं ठीक होंगे, आप तो आयुर्वेद हॉस्पिटल से डॉक्टर हैं।
2: बिल्कुल।
1: और जाहिर सी बात है आप ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं शहद जैसी चीजें आप खाते हैं, कई साल जो है वो लाइफ बढ़ा देता है। बहरहाल, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप थोड़ा सा कुछ एक संक्षिप्त सा विवरण अपने बारे में दें, ताकि हमारे श्रोता जान पाए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आप कहाँ की रहने वाली हैं, और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में।
2: मैं लखनऊ में पैदा हुई, प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहीं से हुई, लखनऊ कॉलेज से
1: जी।
2: इंटर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीएससी भी मैंने वहीं से किया। उसके बाद मैंने बीएमएस किया राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पीलीभीत से। फिर मैंने एमडी की शिक्षा ली एनआईए जयपुर से। बस उसके बाद मैं यहाँ गोंडा में आ गई और जॉब।
1: तो गोंडा आपका ससुराल है, राइट?
2: जी जी।
1: अच्छा अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि गोंडा से लखनऊ की दूरी भी नहीं है, और अब तो रोड भी फोर लेन हो गई है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहेंगे कि अपने बारे में आप हमको और हमारे श्रोताओं को ये जरूर बताइए कि जैसे सभी का अपना एक एम्बिशन होता है जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, अपने मोहल्ले में देखते हैं, किसी रिश्तेदार को देखते हैं किसी अच्छी पोस्ट पे, तो हमको लगता है कि शायद बड़े होकर के हम भी इनके जैसे बनेंगे, लोग बहुत इनको चाहते हैं, मानते हैं। एक होता है कि आपने कुछ ऐसे समाज में निकलते हुए देखा जहां पे आपको लगे कि नहीं, यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है हमको कार्य करने की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है, तो ऐसा कोई आपके जहन में विचार आया, क्या हुआ? मतलब आपने एम्बिशन कैसे तय किया कि आपको करना क्या है लाइफ में?
2: एम्बिशन मैंने, मेरे पिताजी मुझसे हमेशा कहते थे कि मेहनत करते रहो, मेहनत का फल तुम्हें अच्छा मिलेगा। और मैंने और भी डॉक्टर्स को देखा था, तो मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा शुरू से थी। फिर मैंने कॉम्पिटिशन्स दिए और फिर मेरा इसमें हो गया।
1: ओके, तो क्या फैमिली
2: में? आयुर्वेद में मुझे शुरू से लगा, इसमें आने से पहले भी मैं, मेरी लाइफ स्टाइल आयुर्वेद से बहुत प्रभावित थी।
1: अरे वाह।
2: और मैं इसमें आगे बहुत।
1: आप ऐसी डॉक्टर हैं जो कहती भी हैं और करती भी हैं। क्योंकि कई बार हमारे श्रोताओं का ही कहना होता है कि भाई डॉक्टर्स बहुत कुछ रिकमेंड तो करते हैं बट उनको खुद करते हुए नहीं देखा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आपने कहा कि आयुर्वेद ने जो है वो आपको बहुत प्रभावित किया और उससे आप पहले से ही जुड़ी रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फैमिली में भी कोई आपके डॉक्टर था क्या जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली थी? कोई दूर दूर तक कोई नहीं था?
2: कोई नहीं।
1: अच्छा, पिताजी का क्या कहना था? क्योंकि कई बार होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमको गाइड करते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए बेस्ट है, तो कभी कुछ ऐसा कहा गया कि आपको ये करना है, या आपको खुला छोड़ा गया कि नहीं आपको जो लगता है वो आपको करना चाहिए?
2: नहीं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी पिताजी की भी तरफ से या फैमिली में किसी की भी तरफ से। लेकिन बस मेहनत के लिए पिताजी हमेशा शुरू से बचपन से मुझे प्रेरित करते रहते थे कि तुम मेहनत करती रहो, कभी मेहनत बिगाड़ नहीं जाती।
1: ओके, कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपको दूसरी तरफ की भी चीजें दिखाते और बताते हैं, तो किसी ने ये आपको बताया नहीं कि भाई इस पे बहुत पैसे तो है नहीं, आयुर्वेद जो है बहुत पुराना हो चुका है, और अभी क्या है कि आप एलोपैथ में जाते हो, आप अंग्रेजी उसमें आते हो, तो बहुत सारे स्कोप है, ऐसा कभी किसी ने कहा है? तो फिर आपने उसको क्या जवाब दिया है?
2: ऐसा कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कहा नहीं।
1: अच्छा, फ्रेंड्स ने नहीं कहा, नहीं, किसी और ने कभी?
2: हाँ, ये तो समाज में है कि रुझान उधर ही है, मॉडर्न साइंस की तरफ, लेकिन मेरा रुझान इधर ही है, आयुर्वेद की तरफ।
1: मतलब ये कि आपको अपने जो कार्य क्षेत्र है या आपके एम्बिशन को लेकर क्लैरिटी थी कि आपको करना तो यही है।
2: हाँ।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अभी फिलहाल हम देख रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे हम आम लोग हैं, सभी का जो ध्यान है, इसका जो रुझान है, अब वापस से आयुर्वेद की तरफ हम आ रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यही अब हमको वापस से एक स्वस्थ समाज दे सकती है। और ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा बचपन से किस तरह से थी आप? पढ़ने में बहुत अच्छी थी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप क्या पार्टिसिपेट करती थी या नहीं करती थी, क्या था आपके साथ में?
2: पढ़ने में अच्छी थी, स्पोर्ट्स जैसे नॉर्मली पार्क में बच्चे खेलते हैं ऐसी, अदर कोई ऐसा स्पोर्ट्स में नहीं।
1: अच्छा, स्पोर्ट्स में था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमेशा से स्कूल में कराई जाती रही, उसमें कितना आपका पार्टिसिपेशन रहता था? उसमें नहीं करते थे आप? ओके, खेलने में कितना बिलीव करते थे?
2: खेलना, खेलते तो बहुत थे,
1: खेलते बहुत थे। मुझे लगता है कि भाई वो जो कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन खाली पढ़ने लिखने से बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो खेलते रहना कूदते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी ये तो आयुर्वेद के नियमों में से एक है, व्यायाम बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा पार्ट है। राइट, तो भाई हमने जान लिया डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव आखिर कहाँ की है, कहाँ पैदाइश हुई आपकी, और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, आपके एम्बिशन के बारे में, ये बहुत अच्छी बात है। सो अभी चूंकि हमारे लिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम आज आपसे चाहेंगे, क्योंकि हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे समाज के लिए वो बहुत मायने रखते हैं। तो पहला, अगर आपने इतनी तारीफ कर दी है ऑफकोर्स आयुर्वेद को लेकर के, तो आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो आज के दौर में ये लोगों के लिए और एक पैथी के रूप में देखा जाए तो कितना सिग्निफिकेंट है, कितना कारगर है आयुर्वेद?
2: 100% सिग्निफिकेंट।
1: 100% दावा बहुत बड़ा है, सोच लीजिए।
2: ओके, आयुर्वेद दो शब्दों से मिलके बना है
1: जी।
2: एक आयु प्लस एक वेद। आयु का मतलब है लाइफ, वेद का मतलब है जानना, मतलब कि आप लाइफ को कैसे जिए ये जानना, यही जीने की कला कैसी होनी चाहिए। हमारे आयुर्वेद में सुबह से लेकर शाम तक का रजीम बताया गया है, दिनचर्या, दो दो महीने पे ऋतु बदलती रहती है, ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए, सुबह हमें कब उठना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त से, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले आपको उठ जाना चाहिए। अगर आप तब भी नहीं उठ रहे हैं तब भी 5 से 6 के बीच तो आपको उठ ही जाना चाहिए।
1: Okay.
2: अगर आप इस समय नहीं उठ रहे हैं तो आपको ये वात का काल होता है।
1: वात का काल, इसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं? जैसे
2: जैसे वात से आपके कॉन्स्टिपेशन है,
1: right.
2: एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अगर आप इस समय पे उठ रहे हैं तो आपका पेट आराम से साफ हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है।
1: ओके, मतलब हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताया कि अगर हम जैसे सूर्योदय से पहले उठते हैं तो वात का दोष कहने का सेंस ये है कि जो ऑफकोर्स वात से जुड़े हुए जो रोग हैं, जो बीमारी है, वो नहीं होंगी। और अक्सर ये देखा गया अब लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गैस की होती है, गैस्ट्रो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो आपने सुबह की स्टार्टिंग तो बता दी, उसके बाद आयुर्वेद कैसे कैसे क्या बताता है?
2: उसके बाद आप सुबह उठ रहे हैं, फिर उसके बाद आपको नाश्ता कैसा लेना, आहार कैसा लेना है, कब लेना है, क्या लेना है, कितना लेना है, ये सब बताता है। सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, 3 तरीके के आहार बताए गए हैं। अगर आप मौसमी फल, सब्जियां, मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब ले रहे हैं तो ये सात्विक आहार में आ गया। राजसिक आहार में जैसे कड़वे, खट्टे, ज्यादा नमकीन ये सब ले रहे हैं तो ये राजसिक आहार में आया। तामसिक में जैसे कि आप बासी ले रहे हैं या ये जैसे ये पिज्जा ये सब खमीर उठा हुआ, जंक फूड, ये सब तामसिक आहार में आएगा। तामसिक आहार हमें आलस से प्रदान कर, पूरा लिथार्जिनेस हमें महसूस होगा, सात्विक हमें एक्टिव बनाएगा। राजसिक से आप सोच लीजिए कि आप जब ऐसा खाना खा रहे तो आपको कैसा गुस्सा आएगा, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, तो अपने आप में है कि कैसी डिजीज होंगी ऐसा खाना खाने से।
1: अच्छा, खाने से मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट याद आया, अक्सर मैंने कई बार रील्स में भी देखा है, कई लोगों ने बताया है, आज तक हम ये सुनते चले आए हैं कि बादाम खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, ठीक है, और अखरोट खाने से दिमाग के लिए बेहतर होता है, और बताइए क्या है कि उस खाने की चीज का शेप देखिए और अपने उन अंगों से मिलाइए, तो ये कितना सत्य है।
2: ये सत्य है, जैसे अनार के दाने हैं, दांत जैसा है तो उसको आप खाइए, राजमी का शेप किडनी के तरीके है तो वो उसको फायदा करेगा,
1: अच्छा।
2: अखरोट का ब्रेन शेप में है तो उसको फायदा करता है, तो ये सब चीजें सत्य हैं।
1: मतलब ये सत्य है, ये सच में वर्क करता है,
2: ये सच में वर्क करता है।
1: वाओ, क्या बात है। पेट के लिए क्या खाया जाता है?
2: पेट के लिए तो अब त्रिफला का सेवन करते हैं, त्रिफला का सेवन सबसे अच्छा माना जाता है पेट के लिए। बाकी लीवर डिजीज में अलग अलग तरीके की चीजें हैं
1: जी,
2: हाँ, पुनर्नवा मंडूर है, पुनर्नवाष्टकवात है, ये सब दवाइयों का सेवन करते हैं।
1: कई लोग शुगर के लिए भी बताया जाता है कि नीम की पत्तियां खाते हैं, उसमें काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है उसके लिए। ओके, तो मतलब आपने ये इस बात पे प्रमाणित किया है कि कहीं ना कहीं जो हमारा बॉडी शेप होते हैं अंगों का, उसी तरह का जो खाने का शेप होता है, जैसा कि अभी आपने भी एग्जांपल दिया कि बादाम है, अखरोट है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों खाने से उस अंग को भी फायदा होता है, और ये हम बचपन से भी सुनते चले आए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बता दी है कि भाई आयुर्वेद के इतने सारे नियम हैं, और इन नियमों को अगर मुझे लगता है फॉलो किया जाए तो सच में कितनी सारी बीमारियां जो है उसको ऑफ कोर्स हम वैसे ही दूर कर सकते हैं। आपने सोने का बताया, अभी हम देख रहे हैं कि काफी बदलते दौर में लोगों के सोने का टाइम जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, यानी लाइफस्टाइल काफी चेंज हुई है, लेकिन फिलहाल अभी बस हम चाहेंगे कि इसी बात पे आप बताएं कि देर से सोने के क्या नुकसान है और आयुर्वेद में इसको लेकर के क्या बताया गया है, हमारा डिनर किस वक्त होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो मैं देख रहा हूँ डिनर 11-12 बजे तक भी हो रहा है, आपका क्या मानना है?
2: ये बहुत खतरनाक है जो डिनर इतनी देर में हो रहा है। हमारे यहाँ रात के खाने का समय बताया गया है सूर्यास्त से पहले ले लेना चाहिए, क्योंकि
1: जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकली, इवन मेरे साथ भी है कि सुबह का सबसे कम होता है, दोपहर का उससे ज्यादा, और रात का सबसे ज्यादा होता है, सारी दावतें, सारे फंक्शंस रात में होते हैं, इसको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे?
2: ये बिल्कुल सही आपने बताया कि सुबह का नाश्ता कहते हैं कि राजा की तरह, दोपहर का खाना पता नहीं
1: नॉर्मल आदमी की तरह,
2: नॉर्मल आदमी की तरह, और रात का भिखारी की तरह,
1: भिखारी की तरह
2: ऐसे खाना चाहिए। हम उल्टा चल रहे हैं क्योंकि सुबह हमारा नाश्ता भागते दौड़ते होता रहता है, खड़े खड़े हम ले रहे हैं, दिन का नाश्ता टिफिन ले जा रहे हैं या कैसे भी हो रहा है, रात में जब हम फ्री होते हैं तो पूरा चावल दाल रोटी सब्जी सब कुछ लेकर के बैठते हैं, जबकि हमें रात में बहुत हल्का बहुत लघु भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया है कि आप अपने गट के 4 पार्ट्स करिए, और 2 पार्ट्स सॉलिड, 1 लिक्विड, और 1 को आपको फ्री छोड़ना चाहिए, तब आपका डाइजेशन सही से होगा, लेकिन हम इसका पालन नहीं करते
1: एग्जैक्टली सही बात है। अगर मान लीजिए कि हम 2 रोटी खा रहे हैं रात में, एक एग्जाम्पल के तौर पर, और 2 रोटी में बहुत अच्छा खासा पेट मतलब भर ही जाता है पूरा,

0: हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं, अगर हम मेजरमेंट करते हैं एक ही रोटी मान के चले,
1: एक ही रोटी
0: हाफ लगभग, जी। तो ये मुझे लगता है श्रोताओं आपको भी ये बात समझ में आई होगी जो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई लगभग आधा भोजन ही करना है ताकि वो डाइजेस्ट इजीली कर पाए, यानी आराम से वो पच जाए, क्योंकि पाचन संबंधी प्रॉब्लम ही हमें बहुत सारी बीमारियों की तरफ ले जाती है।
1: बिल्कुल सही सही जानकारी हमें मिल गई है आज इस छोटी सी, मतलब कहते हैं ना कि भेंट वार्ता से। और जैसा कि आज विज्ञान शाला है तो मैंने सोचा क्यों ना विज्ञान शाला में पहले थोड़ी ज्ञान को दिया जाए और उसके बाद उस ज्ञान का शोध किया जाए। जी हाँ, तो मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ आपकी अपनी आरजे बीना करने के लिए बहुत सारी बात, क्योंकि आज है विज्ञान शाला से आयुर्वेदा की शुरुआत। जी हाँ, जैसे कि विज्ञान अगर पैर अपना पसारे तो चारों दिशाओं में हमें विज्ञान महसूस होता है और विज्ञान की जो शाखाएं हैं बड़ी दूर दूर तक फैली हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि आयुर्वेदा ने शायद उस समय विज्ञान को पहचान लिया था, समझ लिया था, जब विज्ञान को कोई जानता ही नहीं था, मतलब हम ज्ञानी थे विज्ञान को लेके। जी हाँ, तो आज मैं सबसे पहले आयुर्वेदा के जो कहते हैं ना कि इतिहास की बात करूँगी। विज्ञान में इतिहास का महत्व है क्योंकि हर चीज़ अपने साथ पुराना ज्ञान लेके आती है। तो जैसा कि आपको पता है कि आयुर्वेद जो है सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन काल का वो ज्ञान है जिसमें हम चाहे बीमारी हो, चाहे उसका शोध हो, चाहे उससे जुड़ी दवाइयों का अध्ययन हो, वो सब करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन और प्रमुख आयुर्वेदिक ज्ञाता जो थे, जिन्हें महर्षि कहा जाता था, वो धन्वंतरी थे, जिन्हें हिंदू चिकित्सा और आयुर्वेद का देवता भी मानते हैं। शल्य चिकित्सा और आयुर्वेद का जो ज्ञान था, कहते हैं इन्हीं से प्राप्त हुआ। अब आप धन्वंतरी का नाम सुनते दिवाली को तो याद करने ही लगे होंगे। जी हाँ, दिवाली वो त्यौहार है जिसमें हम सभी धन्वंतरी की पूजा करते हैं। जी हाँ, अरे बहुत सारा धन होगा लेकिन हम स्वस्थ नहीं होंगे तो उसको कहाँ पे खर्च करेंगे महाराज। जी हाँ, तो आपको बता दूँ कि आयुर्वेद की मूल अवधारणा या मूलतः धन्वंतरी से जुड़ी है क्योंकि इसे हिंदू चिकित्सा के देवता मानते हैं। धन्वंतरी को पौराणिक देवता के रूप में कहते हैं कि ये वो है जिनका जन्म दूध के सागर मंथन के अंत में हुआ था और हाथ में अमृत और दूसरे हाथ में आयुर्वेद को लेके ये आए थे दुनिया में। एक हाथ में अमृत था, दूसरे में आयुर्वेद था। उन्होंने चंद्रवंश में पुनर्जन्म लिया। उनका नाम राजा धन्व था। उनका नाम जो था वो उनके कार्यों के अनुरूप रखा गया आगे, और उन्होंने भारद्वाज से आयुर्वेद की शिक्षा ली थी। उनके परपोते देवोदास को भी धन्वंतरी के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन वे आयुर्वेद के केवल शल्य चिकित्सा शाखा के विशेषज्ञ थे। शल्य चिकित्सा तो आप जानते ही होंगे। कहा जाता है कि सुषुद ने देवोदास धन्वंतर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये तो बात हो गई धन्वंतरी की, लेकिन अब बात करना चाहती हूँ मैं आचार्य चरक की। आचार्य चरक को लेके भी बहुत सारे लोगों के अंदर कहते ना कि डाउट्स हैं कि आचार्य चरक कौन थे। उनका नाम भी बड़ी, मतलब लोग कहते हैं चरक संगीता सर, चरक संगीता में ये लिखा है, चरक संगीता में वो लिखा है, लेकिन आचार्य चरक थे कौन, इनके बारे में तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं। पढ़ा भी तो बहुत लिमिटेड पढ़ा, उसमें हमें वो हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले जो हम ढूंढ रहे थे। जी हाँ, कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे प्रचार प्रसार हुआ, उन्हें ज्ञान कहाँ से मिला, ये सवाल तो अभी भी सवाल ही बन के रह गया। तो चलिए उनके बारे में भी जानते हैं, वो भी थोड़ा विस्तार में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदा से हमने शुरुआत की, इनके आयुर्वेदा के जो मूल रूप जैसे जो फायदे हैं रेगुलर हम यूज़ करते हैं, लेकिन उनके जो पीछे का इतिहास है उसके बारे में हम नहीं जानते। कहते हैं कि प्राचीन भारत में आयुर्वेदाचार्य और उसके चिकित्सक थे आचार्य चरक। उन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ आयुर्वेदा। अगर आपसे कोई पूछे तो बिना सोचे समझे आचार्य चरक बता देना। अब बात करते हैं इनके बारे में। इनका जो काल था वो 300 ईसा पूर्व था और उस दौरान उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिनके बारे

इतने खूबसूरत से गाने को सुनते हुए हम अब थोड़ा सा और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और जानते हैं आचार चरक के बारे में। आप लोग बताइएगा कि उनकी संगीता के बारे में क्या आपने कभी पढ़ा है कि बस प्यार किया है। तो चलिए सुनते हैं इनके बारे में और आरजे बीना के संग। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रही थी चरक काल के बारे में, आचार चरक 300 ईसा पूर्व यानी कि कुषाण काल के दौरान हुए थे। उन्हें कुषाण राजा कनिष्क का राजवैद्य भी कहा जाता है। चरक का अर्थ होता है जो लगातार भ्रमण या गति करता रहे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर चिकित्सा करते थे और इसका प्रचार प्रसार भी करते थे। अगर चरक संगीता की बात करूं तो आचार्य चरक ने प्राचीन ग्रंथ अग्निवंश या अग्निवेश तंत्र को संशोधित और विस्तारित करके चरक संगीता की रचना की थी। ये आयुर्वेद का सबसे प्रमाणित और आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। चिकित्सा सिद्धांत में उन्होंने शरीर के तीन दोषों की बात की थी, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, और ये हमारे स्वास्थ्य का आधार है। रोग के कारण और दोषों से असंतुलन होने पर हमें क्या क्या जो बदलाव हैं शरीर में दिखते हैं वो बताए। वैसे चरक संगीता में पाचन चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की बात होती है। इसके अलावा अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स की बात होती है, शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी की बात होती है। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सकों के लिए आचरण यानी कि मेडिकल एथिक्स की बात भी की है कि एक चिकित्सक होने के नाते आपके मूल दायित्व क्या हैं, क्या आपको भी किसी नियम का पालन करना चाहिए। जी हाँ, तो पहले तो मैं आप लोग को आज थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगी कि ये जो चिकित्सा सिद्धांत में इन्होंने तीन दोषों की बात की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग वात दोष सुनते बहुत रहते हैं, पर एक्चुअली में सरल भाषा में अगर हमें कोई समझा दे तो यार बात थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाए। कई बार शब्द थोड़े भारी से लगते हैं और उन भारी शब्दों को आसान करने का काम ही तो विज्ञान शाला में आरजे बीना करती है। जी हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल घबराइए मत, बस आरजे बीना के साथ बने रहिए और ये समझिए कि आपके सवालों का जवाब आरजे बीना अपने साथ लेके आई है। जी हाँ,

थोड़ा सा जानते हैं आचार्य चरक को और फिर जानते हैं शरीर के तीनों दोषों के बारे में। अगर आचार्य संहिता की बात करें तो इसके महान ग्रंथक या ग्रंथकर्ता आचार्य चरक को विशुद्ध नामक ऋषि के पुत्र और अनंत संज्ञक नाम के नाग का अवतार माना जाता था। उपलब्ध आयुर्वेदीय संहिताओं में चरक संहिता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इसमें चिकित्सा विज्ञान के मौलिक तत्वों का जितना उत्तम एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मतलब जितनी ज्यादा अच्छे से विवेचना की गई है, वो कहीं आपको नहीं मिलेगी। चरक संहिता का जो रचना काल था वो उपनिषदों के बाद बुद्ध के पूर्व माना जाता है, यानी कि उपनिषद जब लिखे गए उसके बाद और बुद्ध से जुड़ी जो जानकारी मिलती है उसके पहले। चरक की जो गणना थी वो भारतीय औषधि विज्ञान की मूल प्रवर्तक बनी, मतलब एक आधार बनी जिसके बेस पे ही सारी चीजें आगे बढ़ाई गई। अब आगे बात करती हूँ कि 2000 वर्ष पूर्व चरक ने चिकित्सा संबंधी विचारों को एकत्र कर नए सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। पहले जो सिद्धांत है उनको समझा, तो देखो कोई भी चीज अगर सिस्टमैटिकली समझाई जाए, अगर आपको क्लास 12 में ABCD पढ़ाई जाती और LKG में बड़े बड़े शब्द, तो क्या ही होता। कुछ ऐसा ही किया आचार्य चरक ने, चीज़ों को बहुत सिस्टमैटिकली कह सकते हैं कॉलम वाइज अरेंज कर दिया। आगे मैं बात करूँ तो उन्होंने 8 भागों में पूरे के पूरे ग्रंथ को विभाजित किया, जिसमें 112 अध्याय थे। चरक द्वारा प्रतिपादित आयुर्वेद में लगभग सभी सिद्धांत शामिल हैं। इसमें व्याधियों के उपचार तो बताए ही गए हैं, साथ ही उनके बार दर्शन और अर्थशास्त्र में जो विषयिक उल्लेख है वो भी दिया गया। तो ये तो बात होगी चरक संहिता की। अगर मैं थोड़ा सा और आप लोग को चरक संहिता के ही बारे में बताऊं, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आचार्य चरक ने शरीर को वेदना व्याधि का आचार माना है और आयुर्वेद शास्त्र को मुक्तिदाता माना है। अब मुक्तिदाता क्यों कहा गया भाई, ये बताओ। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिर जाओगे तो उस परेशानी का सोल्यूशन अगर कोई दे दे, ऑब्वियसली उसी को तो मुक्तिदाता बोलेंगे। तो मुक्तिदाता देने वाले बन जाते हैं आचार्य चरक, और मुक्तिदाता है हमारा आयुर्वेद। ठीक है, तो आगे मैं बात करना चाहूंगी कि आयुर्वेद की जो सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है वो चरक संहिता है, जैसे कि आपको पता है। और भारत में इसके अलावा यवन, शक, चीनी आदि जातियों के खान पान और जीवन शैली का उल्लेख भी मिलता है। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ और अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ और ये शास्त्र पश्चिमी देशों तक भी पहुंच गया। भाई अपने यहाँ की उत्पत्ति इसकी कहाँ कहाँ तक पहुंच गई। एनीवे कोई बात नहीं भाई, ज्ञान से अगर सबको लाभ मिलता है तो मुझे लगता है कि वो ज्ञान कहीं भी जाए, बढ़ता जाए बस। तो चलिए अब मैं बात करूंगी शरीर के तीन दोषों के बारे में, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। क्यों ना हो जाए एक प्यारा सा ब्रेक जिसको सुन के मजा ही आ जाए। कहते हैं ना कि कुछ गाने हमारा इलाज करते हैं, तो इलाज करने वाले गाने सुनते हैं। सुन के बताइए कैसा ये गाना।

जी हाँ, अंदाज करम का हो तो हर जख्म भर जाता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं शरीर के आपके मुख्य तीन दोषों की, और बिल्कुल अनिल जी ने सही फरमाया है, वात, पित्त और कफ। बिल्कुल बिल्कुल सही, मतलब आपका आयुर्वेदा में जो रुझान है काफ़ी अच्छा है। तो चलिए एक ऐसा गाना सुना जिसने हम पे दिल का करम किया और दिल को सुकून दिया। फिलहाल आप लोगों से ही जानती हूँ कि क्या आप लोगों ने इन तो दोषों के बारे में पढ़ा है। वात के बारे में तो अक्सर हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन हाँ पित्त के बारे में भी, लेकिन कफ दोष के बारे में हम लोग थोड़ा कम ही जानते हैं। तो आज उन सभी के बारे में बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो समझाती हूँ सरल भाषा में जो मैं प्रयास कर सकती हूँ, ठीक है। और आई होप ये तीनों दोष समझने के बाद आप अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब कि आपकी जो दिन की दिनचर्या है, वो ज़रूर स्टेबल कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा जो ख़राब चीज़ है ना हमारे शरीर में, जो बीमारियों को एकदम खुले तौर पे न्योता देती है ना, वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है। यानी कि कभी भी खाना खा लेना और कभी भी खाना छोड़ देना, कभी सुबह उठ के पानी पीना, कभी पानी ना पीना, कभी 5 बजे उठना तो कभी 8 बजे उठना तो कभी 4 बजे उठ के बैठ जाना, कभी 2 बजे तक मोबाइल देखते रहना, वेब सीरीज़ देखते रहना, और कभी रात में उठ के कॉफ़ी बना के पी लेना, ये सारे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करते हैं जनाब। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा ठहर जाइए और अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा विराम लगाइए। विराम लगाने का मतलब ये है कि अपनी दिनचर्या को रोकना नहीं है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा सेंसिटिविटी जो है उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ले चलती हूँ थोड़ी प्रायोर जानकारी देने के लिए कि कई बार हम बीमार पड़ते हैं, दवाइयाँ जल्दी से खाकर राहत पाने के चक्कर में बीमारी को और गंभीर बना लेते हैं। असल में कुछ रोग रोग होते ही नहीं है, मतलब बीमारी बीमारी होती नहीं है और हमें बार बार परेशान भी करती है। अब कहेंगे बीमारी भी नहीं है और बार बार परेशान भी कर रही है, जी हाँ। तो आज की जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें एलोपैथ की जो मेडिसिन हैं वो काफ़ी बढ़िया लगती हैं, क्योंकि क्विक रिलीफ। या सर दर्द हो रहा है, कोई मुझे सेरिडॉन दे दो, डेस्प्रिन दे दो, एसिडिटी है लाओ यार मुझे ये दे दो वो दे दो, बस क्विक रिलीफ। और ये हमारी जल्दबाजी हमारी भी जीवन की जल्दबाजी बना देती है, यानी कि हमारी घटती उम्र कहीं ना कहीं हमारी जल्दबाजी है। तो चलिए हम समझते हैं थोड़ा आराम से आयुर्वेदा की मदद से कि क्या है ये बीमारियाँ जो हमें करती रहती हैं परेशान। तो चलिए प्राचीन काल में जब किसी इंसान को बीमारियों से दूर रहना होता था तो वो अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा जानता था, मतलब अपने को जानने की कोशिश करता था। हम तो फिलहाल दूसरे को ही जानने में लगे रहते हैं। उस समय ऋषि मुनियों ने जो जड़ी बूटियाँ या सही जीवन शैली के बारे में बात की थी उसी को विकसित करके आयुर्वेद कहा गया। आयुर्वेद शब्द का मतलब ही है आयुष प्लस वेद। इस शब्द का अर्थ हुआ जीवन का विज्ञान। साधारण शब्दों में अगर कहें तो जीवन को ठीक तरह से जीने के ज्ञान को ही विज्ञान या आयुर्वेदा का विज्ञान कहते हैं। आयुर्वेदा की मूल संरचना जो है संस्कृत में होने के कारण लोगों को आयुर्वेदिक के जो मूल नियम हैं, यानी कि नॉर्मल लॉज हैं, वो बड़े मुश्किल से लगते हैं। जैसे मैंने कहा ना भारी भारी शब्द बिल्कुल। तो आयुर्वेद की जो पद्धति है उससे जुड़े जो दोष हैं, गुण हैं, रस हैं, प्रकृति है, ये जैसे शब्द सुनने के बाद ना हमारी तो जैसे लगता है हालात ही खराब हो गई, किसी ने कैसी कैसी बात कर दी, प्रकृति तो हमने बस एक ही सुनी है जो कि नेचर है नहीं नहीं, प्रकृति हमारे जीवन की भी होती है, हमारे बॉडी की भी होती है। कैसी होती है समझेंगे। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम आयुर्वेदा को थोड़ा जानें समझें, जिससे हम अपने आप को समझें। मतलब अगर आपको जानना ज़्यादा है खुद के बारे में तो मुझे लगता है आपको आयुर्वेदा थोड़ा सा समझना चाहिए। आयुर्वेदिक पद्धति में जो इलाज के दौरान चिकित्सक सिर्फ रोगों के बारे में नहीं बात करता, वो आपके मन, आपकी प्रकृति, आपके दोष यानी कि आपके वात, पित्त, कफ और धातुओं की स्थिति को भी ध्यान में रखता है।
यही वजह, कई बार लोग कहते नहीं कि यार तुमको लोहा सूट करता है, तुमको ये सूट करता है, एक्चुअली में ये जो मेटल्स हैं ये भी हम एक तरह से ऊर्जा देते हैं, और हर किसी को हर मेटल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी या तो वात डिपेंडेंट होती है, या पित्त डिपेंडेंट होती है, या कफ डिपेंडेंट होती है। अब थोड़ा समझाती हूँ, भारी शब्दों को हल्का करती कोशिश करती हूँ, और समझते हैं ये त्रिदोष का सिद्धांत क्या है। इलाज के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जब आप जाएंगे तो वो आपके शरीर के वात बढ़ जाने की बात करता है, कभी कभी कभी कभी पित्त बढ़ जाने की बात करता है, और आप सोचते रह जाते हैं भाई ये बात क्या हो रही है। फिलहाल जैसे कि आपने वो सुना होगा ना कि सितजल पावक गगन समीरा पंचतंत्र से बना शरीरा। पंचतंत्र वाकई में पांच तत्वों से शरीर बना है, यानी कि जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु, ये पांचों के पांचों हमारे अंदर है और इन्हीं से हमारा शरीर बना है। आयुर्वेदा के अनुसार शरीर का जो स्वास्थ्य है इन्हीं चीजों पर निर्भर करता है। वात, पित्त, कफ, ये तीनों शरीर के संतुलित व्यवस्था में होते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं, और ये ऊपर नीचे हुए तो आप बीमार हो जाते हैं। इसी को हम दोष कहते हैं, इसी को त्रिदोष भी कहते हैं। प्रत्येक दोष के ऊपर बताए गए जो ऊपर पांच तत्व हैं उनमें दो तत्व होते हैं, उन्हीं तत्वों के स्वभाव से इन दोषों के लक्षण तैयार होते हैं। यानी कि अगर वात की बात करें, वात दोष जो है वो आकाश और वायु इन दोनों तत्वों से मिलकर बना है। यानी कि वात दोष जो है वो सरल भाषा में समझे तो आकाश और वायु, सिंपल समझिए कि आपकी बॉडी जो है पांच चीजों से बनी है। कौन कौन पांच चीजें? जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, ठीक है, ये पांच चीजें हैं। तो जो पहला वाला दोष है वो किससे, वो उसका नाम क्या है? पहले दोष का नाम वात है, और वो किससे बना है? आकाश और वायु से मिलके बना है। ये दो तत्व, इन दोनों मतलब ये पांचों तत्व में से दो दो तत्व मिलके एक एक दोष को तैयार करते हैं, सरल भाषा में समझिए। इन दोनों तत्वों के स्वभाव में ही गतिशीलता है, तो वात के लक्षण भी गति से जुड़े हैं, गति यानी कि मूवमेंट से जुड़े हैं। इन दोषों के असंतुलित होने के दो कारण होते हैं, पहला इन दोषों की बढ़ोतरी या इनकी कमी। वैसे देखा जाए तो किसी दोष में बढ़ोतरी होने से रोग होते हैं, और अगर दोष स्वयं ही अवस्था में कम हो जाए तो अपने आप में रोग कहलाएगा। आपकी खराब जीवन शैली, खान पीन, ये हमारे जो मुख्य बीमारियों को जन्म देता है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें आगे तो कफ दोष भी हमारे बॉडी में हमारे इन्हीं तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर हमारे शरीर की बात करें तो ये सारे के सारे दोष हमारे शरीर की जो बैलेंस डाइट है उस पर भी निर्भर करते हैं, यानी कि खान पीन। तो वात दोष की बात करते हैं, वात दोष, व से याद रखिए, वात दोष यानी कि वायु और आकाश से मिलकर बना हुआ दोष वायु दोष कहलाता है या वात दोष कहलाता है। वात दोष में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि तत्व के अनुसार बॉडी का जो मूवमेंट है, वायु जो है वो बदलती रहती है, ठीक है। हमारे शरीर का जो रक्त संचार है, यानी कि मूवमेंट कौन कर रहा है आपकी बॉडी में, रक्त पूरे टाइम चलता है ना, हार्ट आपके शरीर में, आपका दिल जो है धड़क धड़क के क्या कर रहा है किसी की धड़कने नहीं सुना रहा है, जी हाँ, ये आपके शरीर में खून को इधर उधर मूव करा रहा है, रक्त का संचार कर रहा है, और इसीलिए वात जो है वो रक्त के संचार से बढ़ती है या घटती है। वात की वजह से शरीर में सभी धातु अपना अपना काम करते हैं, यानी कि अगर ब्लड नहीं चलेगा तो धातु हिल जाएंगे। शरीर में जो अंदर मौजूद खाली स्थान है वहां वायु पाई जाती है। शरीर में किसी एक अंग से दूसरे अंग का जो संपर्क है वो वात की वजह से होता है, यानी कि ब्लड की वजह से तो होता है भाई। आपने खाना जरूर खा लिया, पेट में चला गया, लेकिन आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है भाई, क्यों? क्योंकि वात काम कर रही है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन आपका रेगुलर हो रहा है। वात इतना प्रभावशाली है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है और आपके शरीर को पूरा गतिवान बनाता है, ठीक है। तो जैसे शरीर में पसीना हुआ, मल मूत्र निकला आपकी बॉडी से, तो वात जो है वो शुद्ध हो गई, ठीक है। इस प्रकार से देखें तो आयुर्वेदा के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का जो मूल कारण है वो वात है, यानी कि ब्लड। ब्लड प्योरिफाइड है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जिस व्यक्ति के शरीर में वात दोष ज्यादा होता है वो वात प्रकृति वाला कहलाता है, यानी कि वात दोष यानी कि ब्लड संबंधी प्रॉब्लम है तो वात दोष है। कभी कभी कहते नहीं कि यार मुझे ब्लड से जुड़ी बीमारियां बड़ी होती हैं, एनीमिक हूं मैं, ये हूं वो हूं, तो आप वात दोष से जुड़े हुए हैं,
ठीक है। वात का शरीर में स्थान क्या है? वात का शरीर में मुख्य स्थान है कोलन या पेट। मतलब आपकी अगर ब्लड सर्कुलेशन को, अब ऐसा तो है नहीं कि खून को बाल्टी में निकालोगे, साफ करोगे, फिल्टर करोगे, फिर खून वापस पी लोगे। ब्लड तो प्यूरिफाई नहीं होने वाला ना, तो ब्लड को सही करना है तो आपको किसके पास पहुंचना होगा? तो आपको पेट की जो कोलन होती है ना, वहां पहुंचना होगा। कोलन को पेट बोल सकते हैं या कोलन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नाभि से नीचे का जो भाग है, छोटी या बड़ी आंत, कमर, जांघ, टांग, हड्डियां, इन सब में आपके वात का निवास है। जी हाँ, यानी कि अगर आपने इन एरियाज को अपने मजबूत कर लिया, अब मजबूत करने के लिए क्या करोगे, सबको पता है क्या करना होता है, तो आपका जो वात दोष है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वात आपके शरीर में आपके जो स्वास्थ्य है उसको बैलेंस करके रखता है। वात रूखा, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चिपचिपाहट से रहित होता है, ठीक है। रुक्षता यानी कि रूखापन आदि वात से स्वाभाविक गुण है, यानी कि आपकी बॉडी ड्राई है। तो समझ लीजिए आपके अंदर वात मतलब वात प्रवृत्ति के इंसान है आप। वात में संतुलित होने के कारण रक्त का और मल मूत्र का प्रभाव ठीक से होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। वात प्रकृति वाले लोगों में निम्न लक्षण क्या पाए जाते हैं? आप कैसे पहचाने कि आप वात प्रवृत्ति के हैं? दोष अलग है भाई, प्रकृति अलग है। मतलब आप किस टाइप की, कहते नहीं कि तुम्हारी बॉडी कौन से टाइप की है, तो वात टाइप की है आपकी बॉडी, या फिर आपकी बॉडी मतलब अलग दो जो प्रकार के हमारे दोष हैं उन टाइप की है? नहीं, वात टाइप की जो है उसके जो पहचान है, मतलब अगर आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मेरी बॉडी किस टाइप की है, तो अगर इनमें से कोई लक्षण मिल रहा है तो आपकी बॉडी वात प्रकृति की है। यानी कि पहला आपका रूखापन, आपके शरीर की जो स्किन होगी वो ड्राई होगी, दुबले और पतले होंगे आप, बहुत मतलब मोटे तगड़े नहीं होंगे, और धीमी और भारी आवाज़ होगी आपकी, नींद आप थोड़ा कम लेते होंगे। इसके अलावा आँखें, भौहें आपकी, ठोड़ी के जो जोड़ हैं, होठ, जीभ, सिर, हाथ, टांग की जो अस्थिरता रहती, मतलब आप हरदम हिलते डुलते रहेंगे, तो ये वात के मुख्य लक्षण हैं। वात प्रकृति वाले लोग निर्णय लेने में जल्दबाजी और जल्दी क्रोधित होना या चिढ़ जाते हैं, जल्दी डर जाना, बातों को जल्दी समझकर फिर भूल जाने जैसी आदतें होती हैं। अब आप सोचेंगे यार इतनी बड़ी कहानी बताने को किसने कही थी, ये सारी चीज़ें तो मुझ में है। यानी कि जल्दीबाजी आपके अंदर बहुत होती है, आप क्रोधित बड़ी जल्दी हो जाए, गुस्सा आ गया, डर भी बहुत जल्दी जाते हैं, और बातों को जल्दी समझकर फिर जल्दी ही भूल भी जाते हैं, ठीक है। ये आदतें आपके अंदर होती, चढ़ते बहुत जल्दी हैं। अब बात करते पित्त दोष की, या पित्त प्रकृति वाले लोगों की। पित्त जो है वो अग्नि और जल, ये दो तत्वों से मिलके बना है। पित्त शब्द संस्कृत में तप को कहा जाता है, पित्त का मतलब तप होता है, और शरीर के जो तत्व गर्मी उत्पन्न करते हैं वही पित्त है। ये शरीर में उत्पन्न होने वाले एंजाइम और हॉर्मोन्स को नियंत्रित करता है। मतलब पित्त दोष यानी कि हॉर्मोन्स और आपके बॉडी के एंजाइम्स से रिलेटेड है। आम भाषा में समझे, कुछ भी खाते पीते हैं, सांस द्वारा जो अंदर लेते हैं, उन्हें खून, हड्डी, मज्जा, मल मूत्र आदि में परिवर्तित करने का काम पित्त का होता है। यानी कि आपकी बॉडी में वेस्ट चीज़ों को बनाना, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको ब्लड के थ्रू चीज़ों तक, मतलब पूरी बॉडी में, ये तो सबको पता है एंजाइम और ये सब क्या कहते हैं हॉर्मोन्स, ये हमारी बॉडी में परमानेंट होते हैं, हमारी बॉडी का प्रोडक्ट है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा मानसिक कार्य में बुद्धि रखते हैं ऐसे लोग, जो मतलब इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, साहसी होते हैं और अपनी बॉडी का संचालन बहुत बढ़िया से करते हैं। पित्त में कमी आने से क्या होता है, आपका जो पाचक अग्नि है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है, और पाचन तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है, आप डाइजेशन सही से नहीं कर पाते क्योंकि एंजाइम्स अच्छे से काम नहीं करते, कब्ज आपको हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। पित्त दोष ज़्यादा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी पित्त प्रकृति वाले इंसान माने जाएंगे आप। तो आज थोड़ा सा इसको मैं और विस्तार में ही बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस टॉपिक को थोड़ा सा भी छोड़ा जाए, क्योंकि ये छोड़ने वाला टॉपिक ही नहीं है, क्या बोलते हैं, मानते हैं कि नहीं। तो चलिए आगे बात करेंगे सारे दोषों के बारे में, बिल्कुल परेशान मत होइए आप और समझते जाइए धीरे धीरे, ठीक है। पित्त कहाँ होता है हमारे शरीर में, बिल्कुल समझने की बात है, आंत में, पेट के पास, और इसके अलावा आपके क्या कहते हैं चेस्ट एरिया में, आपके नाभि के पास, पसीना, लिम्फ, खून, पाचन, जहाँ जहाँ काम हो रहे हैं बड़े वाले, वहाँ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ रही है और वो एंजाइम्स बना रहा है आपका पित्त, ठीक है। पित्त का मतलब वही वाला पित्त मत समझ लीजिएगा, बाइल वाला पित्त।
ठीक है, वो भी वैसे एंजाइम का ही काम कर रहा है। पित्त का आपके शरीर और स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव होता है? वैसे वात की तरह पित्त दोष भी हमारे शरीर पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। पित्त का मुख्य जो गुण है वो अग्नि है। पित्त के संतुलित होने से पेट और आंत से जुड़ी गतिविधियां ठीक तरह से होती हैं। गर्मी ना बर्दाश्त कर पाना, शरीर का कोमल और स्वच्छ होना, त्वचा पर भूरे धब्बे, बालों का जल्दी सफ़ेद होना आदि पित्त के लक्षण हैं। इसके साथ ही गुण तरल भी है, इसकी वजह से मांसपेशियां और हड्डियों के जो जोड़े हैं उसमें ढीलापन रहेगा। पसीना और मल मूत्र की अधिक मात्रा बाहर निकलने जैसे लक्षण होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, शरीर के अंगों से तेज़ स्मेल आएगी, मतलब आपका पसीना बहुत ज़्यादा स्मेल करेगा। तो ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? पित्त दोष से। आखिरी दोष कफ दोष की बात भी कर लेती हूँ। आज जब बात हो रही है आयुर्वेदा की तो क्यों ना ढंग से हो जाए, समझ लें हम लोग। तो कफ दोष की बात करते हैं। कफ दोष जो है वो पृथ्वी और जल, इन दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। दोषों को और महत्व देते हुए हम क्रम से ही समझ रहे हैं। कफ तीसरे स्थान पे आता है। कफ दोष जो है वो शरीर के सभी अंगों को पोषण करता है। बाकी दोनों दोषों जैसे कि वात और पित्त को भी नियमित करता है। ये हमारी मानसिक और शारीरिक काम करने की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, काम शक्ति है, धैर्य, क्षमा, ज्ञान, ये सब कफ पे डिपेंड करता है। अब कफ दिमाग में आपके समझ में आ गया ना कफ दोष कौन सा है? हाँ, कफ दोष तो आपको समझ में ही आ गया होगा। तो कफ दोष को समझते हुए भी आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और मुझे लगता है कि हम सभी इस चीज़ की जो क्या कहते हैं ना कि सीरियसनेस है वो समझ पा रहे हैं। एनीवे, अब थोड़ा और बता देती हूँ आप लोगों को कफ दोष के ही बारे में। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि कफ की मात्रा में अगर कमी होती है तो बाकी दोनों दोष अपने आप बढ़ने लगते हैं। कफ अगर आपकी बॉडी में भारी है तो मुलायम, मधुर, स्थिर और चिपचिपा शरीर होगा आपका। यही स्वाभाविक गुण है। जिस व्यक्ति के शरीर में कफ दोष ज़्यादा होता है वो कफ प्रकृति वाला होता है। कफ का शरीर में स्थान क्या है? ये मुख्य स्थान पेट और हमारे चेस्ट एरिया में होता है। इसके अलावा गले के ऊपर भाग, कंठ, सिर, गर्दन, हड्डियों के जोड़ और पेट के ऊपरी हिस्से में होता है। कफ का आपके शरीर पे क्या प्रभाव है वो भी समझ लीजिए। कफ प्रकृति वाले लोगों में निम्नलिखित जो कहते हैं ना निम्न ऐसे लक्षण होते हैं जिनको मैं आपको समझाने लगूं तो मुझे लगता है कि ये ग्रंथ छोटा पड़ जाएगा जिससे मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला तो आपकी चाल स्थिर होगी, गंभीर होगी, आप बहुत ज़्यादा सिंसियर टाइप इंसान होंगे। आपको भूख, प्यास और गर्मी कम लगेगी, पसीना कम आएगा, शरीर में वीर का जो अधिकता रहेगी यानी कि स्पर्म आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बनेगा, मेल है आप, और जोड़ों में मजबूती होगी, स्थिरता होगी, शरीर में गठीलापन होगा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी। आप सरल भाषा में समझिए, शारीरिक जो आपके पार्ट्स हैं मतलब बॉडी के जो अंग हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे और इनमें चिकनाहट होगी यानी कि मॉइस्चर होगा, ड्राई नहीं होगी आपकी बॉडी। इसके अलावा कफ प्रकृति वाले लोग सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, कोमल होते हैं, गोरा रंग होता है इनका। हाँ, मतलब रंग की बात कर ली मैंने, ऐसा मतलब मुझे किताबों में मिला है तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। अब आप अपने बारे में बताइए, आप में से कौन सा इनमें से गुण जो है वो मिलता जुलता है, और अगर मिलता है तो मुझे ज़रा बता दीजिए कि आप कौन सी प्रकृति के हैं। फिलहाल मैं अगर अपनी प्रकृति बताऊं तो मैं आ जाती हूं पित्त दोष की प्रकृति में। ठीक है, तो मेरा वाला तो आपने जान लिया, आप अपना वाला बताइए आप किस दोष से आते हैं। और ऐसे ही बड़ी बड़ी जानकारी जानते हुए आपको मुझे लग रहा है कि बड़ा मज़ा अभी आ रहा होगा सीखने में, जानने में, समझने में। ठीक है, तो ऐसे ही आगे जो जानकारी है वो आपकी बढ़ती रहेगी, आप सीखते रहेंगे और हम आपको विज्ञानशाला में ज्ञान बांटते रहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन गांसी 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। आपके साथ लाइव थी आपकी अपनी आरजबीना। कुछ ही देर में आप फिर सुनेंगे मेरी ये आवाज़ में अपना शो गोंडा मैसेज मसाला, आरजबीना वाला। स्टे ट्यून्ड।

0: कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9286 9761 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
5: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: अरे सुना?
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

भाई फेरो ना नज़र से नज़रिया, और बहुत दिन हो गया मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया ये गाना, और ये गाना हमेशा से मतलब इवनिंग स्पेशल गाना रहा है, हमेशा मोस्ट डिमांडेड गाना रहा है जो आप लोग मेरी आवाज़ में सुनना पसंद करते हैं, मेरे साथ गुनगुनाना पसंद करते हैं। तो फिलहाल गुनगुनाने के लिए आपका होना ज़रूरी है, और आपको बता दूँ आपके होने के साथ आज की कहानी की शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आज आप सभी ने, अनिल जी ने तो बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि इन्होंने ध्यान से पहले शुरुआत की, और जब कोई चीज़ शुरू से सुनी जाती है, जानी जाती है, तो मज़ा आ जाता है। और मैं जानती हूँ कि कुछ चीज़ों का जो कहते हैं ना इलाज, म्यूज़िक भी होता है, और म्यूज़िक थेरेपी तो भाई सबने अब मानी भी है, मेडिकल साइंस भी मानता है कि म्यूज़िक थेरेपी से बहुत सारी हीलिंग, इनफैक्ट मेंटल स्ट्रेस जो है वो काफ़ी दूर होता है। तो चलिए एक गाना जो मेरा मेंटल स्ट्रेस हमेशा दूर करता है, और चलिए आपका भी दूर करती हूँ लेकिन अपनी आवाज़ में। और आज की शुरुआत विज्ञान शाला के बाद आज बीना के साथ हो रही है गोंडा मैसे मसाला में। तो फिलहाल शुरुआत से ही चल रहे हैं हम लोग बहुत सारे ज्ञान की ओर, लेकिन फ़िलहाल म्यूजिक थेरेपी से चलेंगे हम एक स्टोरी की तरफ, वो स्टोरी जो हमें ज्ञान तो देगी लेकिन हमें ये सीख भी देके जाएगी यार कि प्यार करना चाहिए कि नहीं। तो आज लव स्टोरी डे है, तो सब लोग अलर्ट मोड में होंगे, भाई आज कौन सी स्टोरी सुनने को मिलने वाली है, और कुछ दिनों से तो रियल स्टोरी सुन रहे हैं हम लोग, तो रियल स्टोरी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये गाना, लेट्स स्टार्ट, मेरे साथ आप लोग भी गुनगुनाइएगा।

ऐसा ट्रेडिशनल म्यूजिक और लिरिक्स इतनी खूबसूरत हो तो यार कोई भी गाना हील कर देगा यार। चलिए स्टैंजा पे चलते हैं।

कौन कौन तैयार है, रेज योर हैंड्स फटाफट से। एंड जिसके पास भी आज कोई ओरिजिनल सी, नई सी, जानी पहचानी सी लव स्टोरी है, भाई खतरनाक नहीं होनी चाहिए एंड रिवेंज वाला नहीं होना चाहिए, बढ़िया सा होना चाहिए, स्वीट सा होना चाहिए, मॉरल फुल, थॉटफुल, कुछ बढ़िया सा लेकिन रियल होना चाहिए। अगर है तो बिल्कुल आप चैट रूम में शेयर कर सकते हैं आपकी कहानी, जैसा कि हर बार मैं आपकी कहानी को साझा करती हूँ अपने शो में, यानी कि साझा थोड़ा सा भारी वर्ड हो गया, मैं अपने साथ डिक्टेट करती हूँ, आप लोग को सुनाती हूँ। तो बिल्कुल आज भी वो कहानी सुना दी जाएगी आप लोग के साथ। तो क्यों हम देर करें, क्यों हम थोड़ा और इंतज़ार करें, हम तो बस ऐसे ही बहते पानी की तरह म्यूज़िक के साथ जीना शुरू करेंगे आज की शाम को। तो चलिए आगे चलेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।

0: Yeah,
1: I don't know.

वैसे घर से चलने के बाद बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हर बात प्रोडक्टिव हो ये ज़रूरी नहीं होता। और सविता जी, आपने तो मुझे ताड़ की झाड़ पे चढ़ा दिया और मैं कहीं उड़ ना जाऊँ। कोई रोमांटिक गाना लता जी का? ओह, लता जी का गाना तो फिलहाल देखिए मतलब कान ही पकड़ने पड़ेंगे, मैं तो छूना भी मतलब मुझे डर लगता है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ हमेशा से एज अ ट्रिब्यूट के तौर पे गाने की, और मैं तो बस आप लोग की तरह एक मतलब समझ लीजिए बाथरूम सिंगर समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत चिल्ला चिल्ला के गा गा के थोड़ा सा लय आ गई है, बाकी तो वही हाल है, वही ख्याल है। और आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं? बारिश का मौसम बढ़िया चल रहा है, लेकिन बारिश के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का जो संकट है वो मंडरा रहा है, और न्यूज़ जो है वो बड़ी डरावनी है। और मैं अगर बात करूं यूपी की अपने, तो उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह बाढ़ का जो संकट है, यहाँ हमारे घाघरा का भी जो खतरे स्तर का जो निशान है, पानी छू रहा है उसको, तो थोड़ा डरने की बात हो चुकी है और हम सभी को थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना है, ठीक है। और ऐसे में ख़ास तौर पे गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक नदी, ये सभी उफान में है, मतलब सबका जो कहते हैं ना मामला टाइट चल रहा है, तो थोड़ा सा सेफ रहें इस समय, थोड़ा नाव वगैरह पे बोटिंग शोटिंग करने से थोड़ा बचें, और थोड़ा धीमा है खतरा, लेकिन यमुना और गंगा का जो मिलन है वो बस्तियों के लिए थोड़ा खतरनाक हो जाता है। पूर्वांचल की अगर बात करें तो चिंता फिर से बढ़ी हुई है, और जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, घट रहा ही नहीं है। अयोध्या, बाराबंकी, हमारा क्षेत्र, ये सभी खतरे के निशान के आसपास हैं, तो आसपास के जो क्षेत्र हैं जो नदी के पास जुड़े हैं उसे खाली कराया जा रहा है। और नेपाल, उत्तर बिहार, ये सब क्षेत्र परेशान है गंडक नदी से, और जो जलस्तर है बैराज से जो पानी का प्रवाह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेफ्टी हम सभी को रखनी है, जागरूकता रखनी है, जैसे भी हो सके लोगों की मदद करनी है, और अलर्ट रहना है, बिल्कुल अलर्ट रहना है। तो चलिए, कहानी की बात थी, तो आप लोग बताइए क्या आपको लगता है कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कहानी होनी चाहिए? भाई देखिए, कहानी की अगर बात करें तो हमारा जीवन ही एक कहानी है। हम लिखने लगते हैं, डायरी एंट्रीज करते हैं ना अक्सर, तो डायरी एंट्रीज कुछ नहीं है, ये हमारे लिए एक तरह से हमारी ही कहानी है जो हमारी ज़ुबानी होती है। तो आज की कहानी बहुत अलग सी है, क्योंकि आज म्यूजिक की बात हो रही है, तो म्यूजिक की दुनिया से मैं एक लव स्टोरी लेके आई हूँ। गुड इवनिंग नागेश्वर, कैसे हैं? मतलब नेपाल का जो सैलाब था वो अयोध्या बिहार तक आ गया? नहीं, सैलाब तो नहीं आया है, लेकिन हम ऐसे तराई एरिया में हैं जहाँ पे हमारी जो नदियाँ हैं हमें छू के गुजर रही हैं, घाघरा नदी है, अयोध्या में अपनी सरयू है, गंगा यमुना है, तो प्रतापगढ़ में लगातार बाढ़ आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि वही सैलाब है, लेकिन जब पानी है तो भाई पानी को तो हम किसी तरह से नाप नहीं सकते ना कि उसका प्रभाव कितना कितना कहाँ कहाँ बढ़ने वाला है, पर यह है कि हाँ, हम सतर्क रह सकते हैं। तो संगीत की दुनिया से लेके आई हूँ आज की कहानी, रियल लव स्टोरी, सच्ची, सरल। और आज की शाम में एक नई सी दुनिया बनाने वाली कहानी, क्या आप रेडी हैं? रेडी हैं तो फटाफट से चैट रूम में अपनी जो कहते हैं ना हाजिरी लगा दीजिए कि आप आज कहानी सुनने के एकदम मूड में हैं। वैसे कहानी से मुझे याद आया कि कहानी मुझे अगर किसी प्रसिद्ध इंसान की बहुत अच्छी लगती है, तो वैसे तो नासरीन की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही,
ऐसी रही जिसको फील किया हम लोगों ने। साथ ही साथ हिना खान की लव स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंस्पायरिंग है। सेलिब्रिटी हैं वो और उनके बारे में जान के हमें लगता है कि यार एक इंसान जो कैंसर से जूझ रहा है और सामने वाला उसका साथ नहीं छोड़ रहा है, ये जानते हुए कि सामने वाले की बहुत ज़्यादा मुझे केयर करनी पड़ेगी। मुश्किल समय में हर कोई साथ छोड़ना चाहता है और वो इंसान, मैं तो ये भी देखती हूँ कि आजकल तो शादी फिक्स हो जाती है, लड़के लड़कियों की लव स्टोरी होती है अच्छी खासी, और फिक्स होने के बाद पता चलता है लड़के को या लड़की को, कोई लड़कियाँ तो बहुत कम ही मतलब बैकआउट करती हैं, पर हाँ लड़कों को मैंने देखा है कि शादी फिक्स हो गई, पता चला लड़की को ये प्रॉब्लम है और जनाब छोड़ के चल दिए। एक कहानी, थोड़ा सा मैं अब जैसे ये वाली बात शुरू हुई तो मुझे इसी से याद आ गई। एक मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी स्कूल टाइम की, बहुत अच्छी, मतलब नाम तो मैं उसका नहीं बताऊंगी आप लोग कौन है, पर समझने के लिए नाम रख लेते हैं उसका, क्या नाम रखें, स्वरा नाम रख लेते हैं। तो मेरी सहेली स्वरा, रियल स्टोरी सुना रही हूँ, स्वरा स्कूल टाइम से एक लड़के को बहुत प्यार करती थी। मतलब उस टाइम में, मतलब मैंने 2014 में 12th पास आउट किया है, 13-14 में, तो उस समय मतलब प्यार का चलन तो था अच्छा खासा, फेसबुक चलता था तब, तो स्कूल टाइम में इतना मतलब बहुत कॉमन नहीं था प्यार, किसी एक का चक्कर चलता था तो पूरी क्लास को पता होता था, और अगर लड़का एब्सेंट है तो लड़की को, लड़के पूरी क्लास परेशान करती थी, और लड़की एब्सेंट है तो लड़के को पूरी क्लास परेशान करती थी, दोनों अगर प्रेजेंट है तो पूरे टाइम दोनों के मैसेजेस को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, ऐसा वाला सीन था। दोनों क्लास में बहुत अच्छा मतलब उन लोग का सीन था, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, फैमिली वालों को भी ऑलमोस्ट पता ही था कि स्वरा जो है वो पंकज से शादी करेगी, लड़के का नाम भी मैंने बदल दिया है, नॉन कंसीडर कि पंकज ही नाम था, स्वरा पंकज से ही शादी करेगी। एंड 12th था, टीचर्स को भी कभी कभी पता चल जाता तो वो लोग सुना देते थे इनडायरेक्टली कि फिज़िक्स का न्यूमेरिकल लग नहीं रहा है, ये लोग ज़िंदगी क्या संभालेंगे ऐसे करके बोल देते थे, पर वो लोग बड़े कमिटेड थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टूर जाना हो, अच्छा स्कूल टूर जो होता था उसमें तो पूरी क्लास जाती थी, लेकिन जो एजुकेशनल टूर होते थे उसमें पूरी क्लास नहीं जाती थी। उसमें क्या होता था कि जो बच्चे उस सब्जेक्ट से जुड़े हैं, जैसे विज्ञान का या साइंस का कोई टूर जा रहा है, तो साइंस में जिसको इंटरेस्ट है, जैसे क्विज में, ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी लेके चले जाएंगे, भाई रीजनल लेवल नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, प्रेमी जोड़ों को ले जाने लगे तब तो हो चुका कल्याण। तो एक बार की बात है, मुझे ग्रुप सेलेक्ट करना था अपना, मैं सोशल साइंस का ले जा रही थी ग्रुप, तो सोरा आई मेरे पास, यार बीना तू लीड कर रही है ना, मुझे भी ले चल, किसी में ले चल, मैं मॉडल दिखा दूंगी। मैंने कहा कुछ बनाया है तुमने? नहीं यार कुछ बनाया तो नहीं है, तो किस बेस पे ले चलूँ, मैंने बोला। तो बोली नहीं यार सर से बोल देना कि ये लड़की ये बोलेगी वो बोलेगी, तू जाके बोल दे मुझे ले चल ले चल। तो उसने मुझसे बोला रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं तुमको तो ले जाऊँगी पर पंकज को कैसे ले जाऊँगी, पंकज ने तो कुछ भी नहीं किया है मतलब जैसे कोई बच्चा कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको हम ले जाएंगे, भाई तुम स्पीच दे रहे हो, वाद विवाद प्रतियोगिता में हो, या तुमने मॉडल बहुत बढ़िया सा बनाया है, या फिर क्विज में हो तुम, या मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन में हो, किसी भी चीज़ में नहीं हो तो वहाँ झाड़ू लगाने जाओगे? गेम्स का क्या है, गेम्स में तो भाई एडिशनल वाले ले लिए जाते हैं, कबड्डी में भी ऐसे हुआ, तो कबड्डी में तो लड़कियों की और लड़कों की टीम जानी थी, और स्पोर्ट्स टीचर काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, ये बात मानना पड़ेगा। मतलब आप लोगों ने ये फील किया है कि नहीं फील किया है? मैंने तो स्कूल टाइम में ये फील किया है कि सब्जेक्ट टीचर से ज़्यादा स्पोर्ट्स टीचर जो होते थे वो बच्चों का सपोर्ट करते थे, और ऐसे मामलों में तो भाई जैसे लगता था कि उनके घर का मामला है, बहुत बढ़िया सपोर्ट करते थे। कोई बच्चा पता चल जाए, अरे चलो तुमको हम ले चलेंगे एक्स्ट्रा में, एडिशनल में तुम चलना हमारे साथ, ऐसे हमारे मतलब वो थे, पीटीआई थे और कोच भी थे। लड़कियों की टीम में तो अगेन मैं खेलने में भी बहुत एक्सपर्ट थी, मुझे मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, मुझे मेडल्स लाने का बड़ा शौक था बचपन से, कि कोई ऐसा जैसे स्टेज पे नाम बुलाए जा रहे हैं तो एक बार मेरा नाम आना चाहिए, मुझे जब भी प्राइज मिले तो मैं जाऊँ, एक बार बैठी ना रहूँ, खड़ी ना रहूँ, मुँह तालियाँ ही बस ना बजाती रहूँ, स्टेज पे जाऊं और मेडल लेके आऊं, मेरा ये रहता था। तो मैं कबड्डी में भी गई, तो वहां तो आराम से सिलेक्शन हो गया, चले गए दोनों मस्त कानपुर, हम लोग कहते कानपुर में बढ़िया मतलब हुई इश्कबाजियां, फिर
उसके बाद हम लोग सेलेक्ट हुए तो भोपाल गए। भोपाल में भी वहाँ बढ़िया मस्त इश्कबाजियाँ हुई, चला मतलब मतलब इश्कबाजी का मतलब उस दौर में यही था बातें होना, आप लोग अन्यथा मत समझिएगा। उस टाइम में स्कूल में जब भी कुछ होता था खाने के टाइम डिनर टाइम में एक दूसरे से आधा रसगुल्ला खा के दूसरे को दे देना ये वाला इश्क होता था। अभी क्या है अभी तो मुझे नहीं पता, फिलहाल वाला जो था मतलब हम लोग का जो था यही था, देखते थे हम लोग यही होता था। स्वरा जो है कागज़ पे लिख के कुछ दे देती थी तो हम लोग जाके उसके पंकज के दोस्तों को दे देते थे, पंकज उस पंकज को पहुँचा देता था। बालकनी में खड़े होकर कुछ देर बात करना, बात करना इज ओनली प्यार मुझे ऐसा दिखा जब तक। अच्छा तो एग्जीबिशन वाला जब मामला हुआ सोशल साइंस वाला तो उसमें तो भाई सिलेक्शन का मामला था, स्वरा को तो मैंने जैसे तैसे सेलेक्ट कर लिया। अब पता चला पंकज का तो कहीं मामला ही नहीं सेट हो रहा है, उसने भाई सब तरह से सपोर्ट कर दिया, मेरे लिए बोला कि मतलब यार प्लीज़ ले चलो मैं तुमको सेलिब्रेशन दूंगा। मैंने कहा भाई मुझे नहीं सेलिब्रेशन खानी है, तुमने तो कुछ किया नहीं, मैं किस बात पे तुम्हें ले चलूँ। तो उस लड़के की डेडिकेशन की बात करूँ मैं तो उस लड़के ने कुछ मतलब मुझे लगता है एक या दो दिन का टाइम बचा था, टिकट्स हो गई थी सबकी, ये हो गया था कि ये बच्चे जाएंगे, इनका नाम फाइनल हो गया। उसने क्या किया, मैंने उसको बस एक आइडिया दे लास्ट, मैंने कहा अब तुम एक ही चीज़ पे जा सकते हो, तुम इतना खतरनाक मॉडल बना लो। उस समय हम लोग को क्या मिलता था जब भी एग्जीबिशन होता था, स्टेट और एक कंट्री मिलती थी, थाईलैंड मिला था हमें कंट्री में और स्टेट मिला था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, अभी याद मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है कौन सा स्टेट मिला था, शायद स्टेट महाराष्ट्र मिला था, आई एम नॉट सो श्योर। तो उन्हीं से जुड़ी चीज़ें हम लोग को रिप्रेजेंट करनी होती थी। तो उसने मैंने कहा भाई देखो तुमको जाना है, स्वरा को तो जैसे जैसे जैसे तैसे मैंने मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन वाले में नाम लिख दिया है, थोड़ा इसने रट भी लिया है, सुना भी दिया था, तो तुम एक काम करो एक ऐसा खतरनाक सा मॉडल बना लो कि जिसको सर रिजेक्ट ही ना कर पाए, एक दो दिन का टाइम है और तुम इंडिविजुअल बनाना कि तुम्हारे ग्रुप में कोई हो ही ना, तो मजबूरी में तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। तो आइडिया मैंने दिया था एंड फाइनली आइडिया सक्सेसफुल, मैंने उसकी मदद की थी, टॉपिक्स बताए थे कि ये चीज़ें तुम बना सकते हो, थाईलैंड में तो कह सकते हैं पिरामिड है, इजिप्शियन कैट है, बहुत सारी चीज़ें जो आप बना सकते हो, नहीं इजिप्शियन कैट तो इजिप्ट की है, तो थाई से जुड़ी चीज़ें। तो उसने क्या किया, थाईलैंड का एक चर्च लिया, उस चर्च को रातों रात प्लाईबोर्ड का मदद लेके इतना खूबसूरत सा बनाया, वो चर्च मुझे ऐसा लग रहा था जैसे प्यार की निशानी बनाई है यार। अगले दिन लेके आ गया, मैंने कहा ये क्या तोड़ फोड़ के मतलब अलग अलग उसको असेंबल करना था, मैंने कहा ये क्या लेके आए हो, इसको देख के तो मैं ही तुमको रिजेक्ट कर दूंगी, सर तो बाद में करेंगे। तो उसने कहा कि तुम मतलब दोस्त हो या फिर दुश्मन, मैंने कहा जो समझना है समझ लो, मैं तो बस सलाहकार बन रही हूँ, तुम सेलेक्ट नहीं होने वाले इस मॉडल पे। तो उसने कुछ देर में मतलब मैं गई बाकी मतलब जैसे कोई कॉम्पिटिशन होता है तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती स्कूल में, बच्चे दौड़ते रहते इधर उधर परेशान रहते हैं ये कैसे होगा वो कैसे होगा, एंड बींग एग्जीबिशन इंचार्ज मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी, और गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है बच्चों को इंचार्ज बना के टीचर्स फ्री हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को लीड करता है, जब टीचर्स हमें कोई बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं तो हम लीडरशिप सीखते हैं। तो भाई मैं तो परेशान, भाई नाम लिखना है, सबको लिस्ट नोट करवानी किसको क्या क्या लेके जाना है, पानी की बॉटल टॉर्च ये वो मतलब हम लोग उस टाइम में मतलब बड़े वो क्यूरियस भी होते थे, और जाना है बड़ी तैयारी करनी है मेरे को, ये वाले शूज स्लीपर ये वो, 5 दिन का टूर था मज़ेदार वाला, तो सब बड़े खुश थे, मथुरा जाना था कहाँ जाना था याद नहीं मुझे, लेकिन फिर जब उसने उस मॉडल को असेंबल किया और फिर मुझे बुलाया कि उसको बुलाओ यार, तो मैं गई, मैंने कहा यार तुमने क्या बनाया है कितना गजब का मॉडल, लेकिन इसके लिए स्पेस बहुत चाहिए होगी, फिर मैंने उसको डरा दिया, तो बोला कि तुम एक काम करो नहीं ले जाना, तुम बता दो मुझे ये सब झूठे आइडिये मत दो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं कोशिश करूँगी। अब मुझे याद क्या करेगी सविता जी, अभी लव स्टोरी पूरी सुनिए तो आप जानेंगे ना, तो आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी कि इतनी खतरनाक वाली लव स्टोरी कैसे पूरी नहीं हुई। सुनिए आगे से, अब पहले बता दिया पूरी नहीं हुई तो आप लोग का मन थोड़ा डगमगा जाएगा, लेकिन भरोसा रखिए मज़ेदार स्टोरी है, रियल स्टोरी है, स्कूल की स्टोरी है, मतलब मैंने आंखों देखी चश्मदीद गवाह हूँ।
तो क्या हुआ कि मतलब सेलेक्ट हो गया मॉडल और टीचर्स ने अप्रिशिएट किया, अरे वाह क्या पंकज तुमने क्या मॉडल बनाया है, क्या मॉडल बनाया है, पूरे स्कूल में वाहवाही वाहवाही कि उसने तो भाई वो वाली चर्च बना दी है, उस चर्च में भाई अंदर सर वो क्या कहते हैं अंदर लाइट जलती है और अंदर क्या कहते हैं जीजस की मतलब मूर्ति बड़ी अच्छी है, ये है चर्च के अंदर, ये है सीटें लगी हैं, मतलब इतना बड़ा मॉडल हम लोगों ने कभी बनाया नहीं था, उसने अकेले बना डाला। और वो उसको ये था ना कि मुझे सेलेक्ट होकर जाना है, तो सर से मैंने बोला कि सर ये मॉडल तो बहुत अच्छा है लेकिन ये अकेले बनाया है तो इसी को लेके जाना पड़ेगा डेमोंस्ट्रेट करने के लिए। अच्छा, सर ने कहा यार बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं इतने ही लेके जाने हैं। मैंने कहा सर प्लीज़ देख लीजिए अच्छा मॉडल है, हो सकता है नेशनल पे चला जाए। हम लोग में क्या होता था जो रीजनल पे सिलेक्ट होता वो स्टेट पे जाता था और स्टेट पे जो सिलेक्ट होता था वो नेशनल में जाता था। तो सर ने मेरी बात को माना, फाइनली मैं अपने रिस्क पे ले गई। मैंने कहा ऐसा ना हो ये दोनों जाके वहाँ कोई कांड वांड कर दें फिर जाके मतलब सर कहें कि तुमने ही इन दोनों को सेलेक्ट किया था। मैंने भाई हाथ पैर जोड़े दोनों के, मैंने कहा भाई प्लीज़ तुम लोग वहाँ पे जाके मिलना उलना मत, बात बात कर लेना, सर के नज़र में मत आना नहीं तो मेरी चमड़ी निकाल ली जाएगी और मेरे घर वालों को बुला लिया तो मेरा तो स्कूल आना बंद हो जाएगा कि मैं यहाँ पे तुम लोग की प्रेम प्रसंग को पूरा करा रही हूँ। तो फाइनली मतलब चीज़ें सक्सेसफुल रहीं और बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चला, सारी चीज़ें ठीक ठाक थी, वापस आए सब लोग। और उसके बाद ट्वेल्थ का फेयरवेल हुआ, फेयरवेल में दोनों ने ट्विनिंग की थी, एक जैसा कपड़े पहने, मतलब बढ़िया था, सब कुछ बहुत अच्छा था। पर उसके बाद दोनों के दोनों मतलब एक तो चला गया IIT की तैयारी करने, एक लखनऊ चली गई पढ़ाई करने, सब कुछ ठीक ठाक था। फाइनली ये हुआ कि दोनों की शादी फिक्स हो गई, मतलब शादी एकदम फिक्स, एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट के बाद क्या हुआ, स्वरा की पीठ में रीढ़ की जो हड्डी होती है जो बैकबोन है उसमें कोई नर्व जो थी वो किसी तरह से मतलब पैरालाइज टाइप हो गई, वो मतलब उसकी वजह से ठीक से चल नहीं पा रही थी। हम लोग बहुत खुश थे, दोनों की शादी होने वाली है, शादी की तैयारियां चल रही थी उन दोनों के घरों में। हम लोग भी वो थे कि दिसंबर में भाई शादी में जाना है, क्या पहनना है, पूरे क्लास के बच्चे कि भाई गेट टुगेदर हो जाएगा, ये है वो है। पर खबर आती है कि पंकज के घर वालों ने शादी कैंसिल कर दी। क्यों? स्वरा चल नहीं पा रही थी, मतलब चल ले रही थी लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे पोलियो होने के बाद इंसान थोड़ा सा झुक के चलता है, वो चीज़ था, थोड़ा लंगड़ानापन आ गया था। हम लोग ने बहुत समझाया लेकिन फिर पंकज ने कहा कि ये अगर जेनेटिक हुआ तो आगे की जनरेशन मेरी, मतलब मैं ये सारी चीज़ें सुन के बहुत शॉक में थी कि इतने दिनों का प्यार, 8-9 साल का प्यार कहाँ चला गया। ये कौन सा प्यार था, दिखावे का प्यार था या प्यार था ही नहीं, बस एक दूसरे को मतलब आश्वासन दिया जा रहा था कि नहीं नहीं नहीं हम लोग का तो बचपन का प्यार है, बचपन का प्यार है, बचपन का प्यार है। भाई ऐसा प्यार ना करो, स्वरा को कैसा लगा होगा। फाइनली 5 साल हो गए हैं, उसकी शादी नहीं हुई, वो शादी टूट गई। और हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जब किसी की शादी टूटती है तो फिर बहुत दिनों तक बहुत सारे लोग किसी को पसंद नहीं करते। फिलहाल शायद उसे मैट्रिमनी पे कोई लड़का मिला है, उससे वो शादी करने वाली है। सो ये थी स्टोरी पंकज और स्वरा की, जिसको मैंने आप लोग को नाम बदल के बताया, पर ये रियल स्टोरी है। इस स्टोरी ने मुझे बहुत बड़ा धक्का दिया था, बहुत दिन तक मैं इस बात को सोच के भ्रम में थी कि अगर प्यार ऐसा होता है तो भाई मैं तो कभी ना करूं और मुझे अगले जन्म में भी कभी प्यार ना हो। सो आप लोग बताइए इस रियल वाली स्टोरी को सुन के कितना मज़ा आया। एक स्टोरी तो सुन चुके, दूसरी की बारी है। दूसरी मतलब म्यूजिशियंस मतलब म्यूज़िक की दुनिया से जुड़ी हुई कहानी होगी, लेकिन अब मैं बोलते बोलते थोड़ा सा पॉज लेना चाहूँगी, एक गाना सुनाना चाहूँगी। और चलिए सुनिए ये प्यारा सा गाना, सुन के बताइए कैसा है।

तो चलिए एक कहानी जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। अरविंद फ्रॉम मनकापुर। गुड इवनिंग अरविंद, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। और नाजिया हमारे साथ हैं और शमा लखनऊ से, स्वागत है। और नागेश्वर काफ़ी देर से हमारे साथ हैं। और सबके साथ काका जी हैं। मुझ काका जी, नाम बड़ा अच्छा है आपका। ऐसे अलग अलग नाम रखे, रिस्पेक्ट भी मिलेगी और फेम भी मिलेगा। धर्मेंद्र काफ़ी देर से हमारे साथ हैं। तो एक कविता आई थी, प्रमुख जी ने लिखी थी लुधियाना से। आरजे बीना मैम जी, आपको सादर नमस्कार। आपकी प्रस्तुति में दिखता है हुनर बेशुमार। आपकी आवाज़ में है मिठास घुली रहती कि सुनने वालों के चेहरे पे मुस्कान खिलती रहती। आपका अंदाज निराला, बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। आपकी हर प्रस्तुति दिल को छू जाती है। शब्दों को सजाने का अंदाज है कमाल। आप बोले तो हर पल बन जाए खुशियों भरा साल। बीना जी, यूं ही अपनी आवाज़ से महफिल सजाती जा रहिए, हर सुनने वाले के दिल में खुशियां लुटाती रहिए। आपकी प्रस्तुति यूं ही रहे सबसे शानदार। आपको हमारा सादर नमस्कार। क्या बात है। और इसके बाद आप पूरे के पूरे इनविजिबल हो गए। प्रमुख जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी आपने। सविता जी मुझे याद करती है कि नहीं? फिलहाल मैं उसको बहुत याद करती हूँ, मेरी सहेली को। और गुड इवनिंग आशु जी, कैसी हैं आप? लखनऊ में बारिश भी हो रही होगी, यहाँ भी बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा आज। तो चलिए चलते हैं आज के एक ऐसे म्यूजिशियन, ऐसे सिंगर की बात करने जिसकी कहानी हाय हाय हाय सबके दिलों को छूने वाली है। तो बिल्कुल राहुल, आपको आपकी पसंद का गाना सुनने को मिलेगा पर 7:45 से, ठीक है? बिल्कुल परेशान ना, आपका गाना प्ले करके ही मैं जाऊँगी। तो सबसे पहले तो कहानी है उस गायक और संगीतकार की जिसके गाने सुनते ही हमारे दिल की धड़कने आ हा खुश हो जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शंकर महादेवन की। जी हाँ हाँ हाँ, शंकर महादेवन बहुत सिंसियर से दिखते हैं ना। जी हाँ, प्यार में उन्होंने पूरी मुंबई घूमी है। प्यार में उन्होंने बहुत सारे चाय की दुकानों पर चाय पी है। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत जगह जाके इडली खाई है। उन्होंने मरीन ड्राइव पे बहुत लंबी बातें की हैं। बहुत घूमे हैं वो मुंबई में, और प्यार भी उन्होंने वहीं किया है। तो चलिए इनकी कहानी को समझते हैं और प्यार के रंगीन रंगों को इनकी जिंदगी से निकाल के पढ़ते हैं। और भाई, जब लव स्टोरी की बात होती है तो हम लोग थोड़ा कान अलर्ट करके सुनते हैं। अरे यार, इतने बड़े सिंगर को भी प्यार हुआ था, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि करियर बनाना भी बहुत ज़रूरी है और सच्चा प्यार भी पाना बहुत ज़रूरी है। करियर बना लिया, सच्चा प्यार नहीं मिला तो करियर बेकार हो जाना है। तो शुरू करते हैं इनकी प्यार की कहानी, इनकी प्यार की दास्तान, जिसे सुन के हम सभी का दिल कहेगा वाओ यार, क्या सुना, मजा आ गया। वैसे अगर बात करें शंकर महादेवन की, वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे। इसके बाद उन्होंने सिंगर और म्यूजिशियन बनने का सोचा। करीब 2 दशक तक उन्होंने एक से एक गाने दिए। उन गानों को सुन के हमें हमारे प्यार को महसूस करने का मौका मिलता है, ठीक है? तो शंकर महादेवन को प्यार भी स्कूल टाइम में हुआ था। उस समय जब हर किसी को लगता था कि प्यार तो ना करने वाली चीज है, शंकर महादेवन को प्यार संगीता जी से, जो कि उनकी पत्नी है प्रेजेंट टाइम में, तब हुआ जब वो क्लास 10th में थे। उनकी पहली मुलाकात एक संगीत समारोह में हुई थी।
आमतौर पर वो एक दूसरे से संपर्क पढ़ाई के लिए करते थे, पर जब संगीता ने उनके गाने की क्षमता को सुना तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उनके गाने को सुनने के बाद संगीता हमेशा कहती थी कि तुम्हारा हुनर बहुत अच्छा है, और तारीफ करती थी और कहती थी कि तुम्हें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। पर उस समय संगीत को सिर्फ कला ही समझा जाता था, करियर नहीं। करियर बनाने का अहम फैसला उन्होंने लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया। फिर शंकर महादेवन ने संगीत को अपना करियर बनाने का सोचा, और जब आप अपने जीवन साथी की बात मान के उसकी मन की बात पूरी करते हैं तो वो आपके साथ चलने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। संगीता उनके साथ तैयार हो गई, उनका साथ देने लगी। पूरे मुंबई शहर में दोनों साथ में घूमते रहते थे, बातें करते रहते थे। आखिरकार साल 1992 में दोनों ने शादी कर ली। आज दोनों के दो बेटे हैं, सिद्धार्थ एंड शिवम, जो कि अगेन संगीत की दुनिया में ही एक्टिवेटेड है। ऐसे एक्टिवेटेड हैं जैसे लगता है कि हाँ, प्यार से ही इन दोनों को इस दुनिया में लाया गया है। वो हमेशा कहते हैं कि मुंबई प्यार की मुंबई है, जहां पे मैंने प्यार करना सीखा। वो अपने यादगार पलों को गिनाते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने प्रेम प्रसंग को यहां जिया। 10 साल तक वो अपनी प्रेमिका यानी कि संगीता के साथ घूमते रहे, प्रेम की दुनिया में जीते रहे, डुबकी लगाते रहे। मुंबई का हर कोना, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे उडुपी रेस्टोरेंट हो, 5-स्टार कॉफी शॉप हो, 5 गार्डन्स हो, कफ परेड हो, प्रियदर्शनी हो, सब जगह वो साथ में घूमते थे। और शायद यही वजह था कि इनके लिए वो प्यार का मौसम लेके आया था। प्यार की दुनिया में जीने का वो मौका बनके साथ में जीते थे। और इतने बढ़िया बढ़िया गाने हमें सुनाते थे। सच्ची बता रही हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार है, तसल्ली है, सुकून है, तो आपकी ज़िंदगी का म्यूज़िक जो है ना, वो दुनिया को पसंद आएगा। और इसीलिए ये गाना हम सभी को जब भी सुनने को मिलता है तो लगता है यार कि सच में शंकर महादेवन ने इनका प्यार गा रहा है।

में सिर्फ आंसू है, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादे हैं। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। डूब गया है दिल गम के अंधेरे में, मेरी सारी दुनिया है दर्द के घेरे में, मेरे सारे गीत ढले।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
8: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
9: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
8: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
9: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
8: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
9: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके।

0: आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: ए जय माता जी ने हम कहीं ने कहूं कि वाह फरे वादड़ फरे वायरो फरे, पण एक बार बोलिया पछी मारा मित्रों, आ मित्रों कदी ना फरे।

हाँ हाँ, प्यार में कोई पागल नहीं होता, प्यार में तो हर इंसान जीना सीख लेता है। प्यार का रंग लगा के इंसान रंगीला हो जाता है। हाँ, फिलहाल देखिए कमर या सुन के लग रहा होगा कि आप भी अपनी थोड़ी कमर या घुमा लें। फिलहाल ये सब बातें चलती रहेंगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी और मेरी बात। जी हाँ, वो बात जिसे करने के लिए ही तो आज हम बैठे हैं, यानी कि प्यार की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ तक होती है, कैसे प्यार होना चाहिए और कैसे प्यार को निभाना चाहिए। तो जैसे कि पहली कहानी अधूरे एंड तक रही, दूसरी कहानी ये कह गई कि यार प्यार का सपोर्ट हो तो सपने अपने लगते हैं। तो फिलहाल मैं तो यही कह रही हूँ कि अपने प्यार के सपने को समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप समझ गए, उसका सपोर्ट कर गए, तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो तो आपको उसकी अच्छी बातें, उसकी अच्छाई, उसकी खूबियाँ, उसकी कमियाँ सबसे प्यार होना चाहिए, क्योंकि प्यार करते समय शायद आपने वो खूबियाँ देखी थी। और आज अगर उन खूबियों में से दो खूबियाँ भी ज़िंदा हैं तो समझ लीजिए आपका प्यार ज़िंदा होना चाहिए। सब लोग लिखते हैं प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता, अगर हो भी जाए तो तुरंत उसे प्रपोज कर दें, नहीं तो देर की तो हमेशा के लिए प्यार खो देना पड़ता है। उसकी फैमिली कहीं भी सेट कर देगी उसे और गम के आंसू रोने पड़ते हैं। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर, वो एहसास है जिसके अंदर खो जाने को दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्यार में सच में अक्सर लड़के पागल होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में अपना बनाना पड़ जाता है। दोस्त लड़की को हम देते हैं वो हम बेवफा हो गई। अरे बेवफा, बेवफा तो कोई भी हो सकता है, नॉट ओनली लड़के या लड़कियां, कोई भी हो सकता है। ना सिर्फ ऐसा कोई टैग लाइन नहीं है कि सिर्फ लड़के बेवफा होते हैं या लड़कियां बेवफा होती हैं, कोई बेवफा पर नहीं होता है। सब सिचुएशन के मारे होते हैं, सिचुएशंस सबको बेवफा बना देती हैं, मजबूर बना देती हैं। और वो मजबूरी हम समझने में थोड़ा देर कर देते हैं, है कि नहीं? ये बात तो है। और अगर इस चीज को हम समझ जाएं तो किसी का भी प्यार अधूरा नहीं रहेगा। बस इम्पोर्टेंस दीजिए और इस इम्पोर्टेंस के साथ साथ साथ डट के खड़े रहिए। हाँ, एक बार अपना प्यार टेस्ट करिए। टेस्ट करने का मतलब ये है कि सामने वाले से कंफर्मेशन लीजिए कि वो आपको लेके सीरियस है कि नहीं। अगर वो सीरियस नहीं है तो आप अपने प्यार पे तुरंत गिव अप करिए कि नहीं, मैं ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहता, बस शादी का इंतज़ार करिए, उसके बाद भी आपका प्यार आपको मिल सकता है। लाइफ पार्टनर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्यार कौन होगा जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहेगा, है कि नहीं? तो चलिए एक गाना ऐसा जो आपको बताएगा कि अगर आपने अपने प्यार का साथ नहीं दिया तो पछताना पड़ेगा।

0: मुझसे जो नजरें छुराने लगे हो, लगता है किसी और गली जाने लगे हो।
1: जी हाँ, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि सामने वाला भी तीसरी गली पकड़ लेगा। तो अपने प्यार को अपने पास रखिए, अपने साथ रखिए और उस पर भरोसा बना के रखिए कि आप उसके साथ हैं, उसका भरोसा जीतिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए और उसको उसकी बातों को सुनिए। देखिए प्यार का मतलब जो रूल्स हैं वो थोड़े से कुछ हिस्से होते ऐसे होते हैं कि मतलब प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप शॉपिंग करो, घूमो, टहलो, मूवी देखो, नहीं, एक दूसरे की सुनो। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ प्यार का मतलब यही है, एक दूसरे को धैर्य से सुनो। और जब हमें कोई प्यार से सुनने वाला होता है, धैर्य से सुनने वाला होता है और सही और गलत में हमारा सपोर्ट करने वाला होता है, तो हमें लगता है कि सच में जो हमारा सच्चा जीवन साथी है वो यही है। और शायद इसी चीज़ की तलाश हम सभी करते हैं। क्या लगता है, मैं जो कह रही हूँ वो सही है या फिर मेरा सोचना बिल्कुल गलत है? ये तो मैं नहीं ठीक से बता सकती, पर मुझे जहाँ तक लगता है प्यार का मतलब ये भी होता है कि आपको सामने वाले को टाइम देना होता है। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि आप फिज़िकली उसके सामने बैठ के चाय के प्याले लेके या कॉफ़ी को टाइम दें, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे के रखें। कई बार क्या होता है, हमारा जो प्यार नया नया होता है, एकदम ताज़ा ताज़ा, तो हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, मैसेजेस करना, टाइम टाइम पे विश करना, मिलना, रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी चीज़ रिस्पेक्ट देना। लेकिन जैसे ही रिश्ता थोड़ा पुराना होता है, रिस्पेक्ट सबसे पहले कम हो जाती है। तू तड़ाक, मतलब जो भी आपका पैटर्न है वो एक ही रखिए। ये नहीं कि शुरुआत में आप जी, फिर उसके बाद तू तड़ाक, फिर उसके बाद में गाली, ये नहीं होना चाहिए। आप एक पैटर्न रखिए, मतलब गाली तो नहीं होनी चाहिए, रिस्पेक्ट जितनी भी है उतनी बना के रखिए। एक दूसरे को सॉरी फील कीजिए, जब भी लगे कि आपकी गलती है या नहीं है, आपको सॉरी फील करना चाहिए। हम एक छोटे से सॉरी बोल के, चाहे हमारी गलती हो ना हो, अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। और इस भरी दुनिया में आपके साथ चलने वाला सच्चे साथी की तरह बहुत कम ही लोग होंगे। तो उन सच्चे साथियों में कोई अगर एक सच्चा साथी आपको मिल रहा है तो उसको थोड़ा सा मतलब टाइम दीजिए। जैसे कहते हैं ना, पौधा लगाते हैं तो उसको अच्छे से खाद पानी दो, स्टार्टिंग में अच्छे से दो और आगे भी उसका मतलब थोड़ा ध्यान दो। ये नहीं कि लगा के भूल गए शुरुआत में, भाई बड़ा पानी शानी दे रहे हैं, उसके बाद भूल गए तो आपका पेड़ सूख जाएगा। बराबर उस पर ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब एक्सपेंसेस से नहीं है बिल्कुल भी, आपके अटेंशन से है। याद रखिए, एक्सपेंसेस बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं होते किसी भी रिलेशनशिप में। इम्पॉर्टेंट है आपका अटेंशन, आपका साथ, आपका टाइम, सामने वाले का आपको समझना, आपका सामने वाले को समझना। इसी के साथ आज की जो प्यार की दुनिया है, इसमें मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ। आगे इस दुनिया में आप प्यार से जुड़े नगमे सुनते जाइए, एंजॉय करते जाइए और मुझे अब इजाज़त देने की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये गाना काफ़ी देर से, मतलब मुझे लगता है कि हर कोई सुनना चाह रहा है। और गाना है छम छम छम, बारिश भी हो रही है भाई, तो चलिए हम सभी नाचते हैं। मैं नाचूं आज छम छम छम छम छम छम छम छम, बहुत अच्छा सा गाना है बागी फिल्म का। बागी फिल्म के बहुत सारे गाने अच्छे हैं, तो उनमें से एक अच्छा गाना आप लोग के लिए। एंजॉय करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बारिश को एंजॉय करिए, लेकिन सेफ्टी के साथ, अम्ब्रेला लेके निकलिए, मौसम बदल रहा है, बीमार पड़ सकते हैं। सो एंजॉयमेंट एक तरफ, सेफ्टी एक तरफ। तो कल फिर मिलेंगे आप लोग के साथ, अंताक्षरी वाली इवनिंग होगी, कोई भी कहीं नहीं जाएगा, कल हम लाइव होंगे अंताक्षरी के साथ। हमारी टीमें भी बिल्कुल तैयार होकर सही समय से आ जाएं, जिससे कि सबको टाइम मिले। बाय बाय, टेक केयर, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे थे आरजेबीना के साथ शो गोंडा, मस्त मसाला आरजेबीना वाला। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

सो आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से ये है आज का पहला फरमाइशी गीत। इसको सुन के फिर मैं स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और मेरी आवाज थोड़ी सी

हमारी तरक्कियों से बीमार हैं ये झूठे लोग, आपके और हमारे रिश्तेदार हैं ये झूठे लोग, तुम्हारे घरों की खबरें सुर्खियां बना देंगे ये, एक चलते फिरते अखबार हैं ये झूठे लोग, सलाम दुआ अदब सब निभाएंगे सामने, सलाम दुआ अदब सब निभाएंगे सामने, मगर अकेले में तो मक्कार हैं ये झूठे लोग, इनकी महफिल में सोच समझकर बैठना तुम, मुस्कुराते हुए हथियार हैं ये झूठे लोग। सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और डेफिनेटली आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, मेरी इसी आवाज़ के साथ में आज आपको पूरी की पूरी फरमाइशी की महफिल में आनंद उठाने पड़ेंगे। सो सॉरी, पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता चला, रात में सोई सुबह उठी फिर ये इस तरह गला। सो बर्दाश्त करिएगा मेरी इस आवाज़ को, लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली, ओ माई गॉड, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिएगा, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिएगा, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिएगा और लगा दीजिएगा जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपके है ना दोस्तों। सो इस्तकबाल करती हूँ आप सभी का आपके अपने शो में, महेंद्र राजस्थान से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा GMP से, सबलू सावंत मुंबई से, सोनिया तिवारी गोंडा से, दीपक हथियागढ़ गोंडा से, उषा कश्यप गोंडा से, राजेश कुमार सिंह जी मालवे नगर गोंडा से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा GMP से आपका भी स्वागत है, राजू सीतापुर से, राजेश कुमार सिंचाई विभाग से, निधि सीतापुर से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, नाजिया अंसारी मुस्तफ़ा जी साउदी से, निब्बर जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मुमताज़ अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, राहुल आपका भी स्वागत है, स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो। सो आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने शो में, और अब चलते हैं दूसरी फरमाइश, इंजॉय करते हैं। पहली फरमाइश तो मेरी थी और आई नो बहुत अच्छी फरमाइश थी, पता नहीं क्यों मेरा मन था कि आज के शो को, मतलब आज के शो का आगाज़ इस गाने से किया जाए, क्योंकि ये गाना पहले मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आजकल पिछले एक दो चार दिनों से इस गाने से पता नहीं क्यों प्यार होने लगा है मुझे। मैंने ये गाना कभी पूरा सुना भी नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अच्छा लगा, और मैं अब इस गाने को अभी भी मैंने पूरा नहीं सुना है, मैं सुनूंगी ज़रूर। तो फिलहाल इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले थोड़ी तारीफ होती है ना तो मज़ा आता है, तो तारीफ हुई है तो मज़ा तो आएगा ही आएगा ना। तो धर्मेश त्रिपाठी का कहना है गोंडा से, आपकी आवाज़ में वो जादू है जो दिल को सुकून देता है, आपका हर अंदाज महफिल को एक नया जुनून देता है। आरजे सिंपल जी आपका स्वागत है पूरे दिल और सम्मान से, आपका होने से ही इस खूबसूरत शाम को खास बना देता है, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की दूसरी फरमाइश, महेंद्र को राजस्थान से सुनना है गाना, जा की कहाँ मिन्नते फरियाद करोगे, जा मैंने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे। सो इंजॉय करते हैं प्यार का रोग का ये गाना, अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज़ में, झनकार बीट्स के साथ में, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी और कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आप सभी को दिल दिया, क्या याद करोगे। सो दोस्तों, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही प्यारे से लिसनर महेंद्र की फरमाइश पर, जो कि है राजस्थान से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की, गोंडा से। धर्मेश त्रिपाठी को गोंडा से सुनना है गाना, तू ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के। सो एंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, ये गाना मुझे भी पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। फिलहाल एंजॉय करते हैं सुपर डुपर हिट सदाबहार नगमा, जो हर एक दिलों में बसता है सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो कार्तिक कश्यप गोंडा से, आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड।

बहुत ही खूबसूरत सा नगमा था दोस्तों, और इसकी फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी धर्मेश त्रिपाठी की तरफ से, जो कि हैं गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। फरमाइशों का सिलसिला चलता रहेगा दोस्तों, गाने तो हम वैसे भी अपने फ़ोन में सुन सकते हैं, बहुत जरिया होता है सुनने का ना, YouTube, Spotify, गाना, सावन और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आप उससे गाने सुन सकते हैं। कुछ नहीं तो आपको अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट बनानी है, आपने तो गानों को डाउनलोड करके भी रख लिया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम यहाँ गाना सुनने, सिर्फ गाना सुनने तो नहीं आते ना, शायद एक दूसरे से बात करने, शायद एक दूसरे के जज्बात को जानने आते हैं, समझने आते हैं, क्यों सही कहा ना मैंने। तो अगर ऐसा है तो जब तक बात नहीं होगी तब तक मज़ा कहाँ से आएगा। आप लोग आपस में तो गपशप करते रहते हो लेकिन इस आरजे को अकेला कर देते हो, है ना, ऐसे अकेले नहीं करते हैं। तो फिलहाल मेरा कहना ये था कि अगर जज्बात को निकालना ही है तो चलो जज्बात को निकालते हैं, और मेरा कहना ये है कि इस सफ़र में कसर आना भी बाकी है, इस सफ़र में कसर आना भी बाकी है, मेरे हुनर का असर आना भी बाकी है, जिंदगी खामोश है मगर मदहोश नहीं, जिंदगी खामोश है मगर मदहोश नहीं, मेरे सब्र का शुक्र करना भी बाकी है। सो अब इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और दिलों के जज्बातों को निकालो दोस्तों, कोई नहीं सुनता, कहीं नहीं सुनता, सुनते हैं एक कान से सुनते निकाल देंगे, लेकिन यहाँ सब सुनेंगे सब समझेंगे, और मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब दिल से बेस्ट एडवाइस भी देते हैं। मेरे जितने भी लिसनर्स हैं वो सच में बहुत ऑनेस्ट हैं, अपने दिल से बहुत ऑनेस्ट हैं, अपनों से बहुत ऑनेस्ट हैं। जैसे आप लोग मुझे इतने दिनों से पहचान गए हो कि मैं सैड होके आती हूँ तो आप पूछ लेते हो कि सैड हो क्या, उदास हो क्या, बहुत खुश होके आती हूँ तो आर जस्ट सिंपल यू आर वेरी एक्साइटेड ये बोलते हो आप, है ना। तो आप जैसे मुझे जानते हो वैसे मैं भी आपको थोड़ा बहुत तो जानती हूँ ना दोस्तों, तो आप सब बहुत अच्छे हो, तो क्यों ना एक दूसरे के दिल की बातों को सुना जाए और एक दूसरे के पसंदीदा गीतों को भी सुनते ही हैं और सुना जाए। सो नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। ओह माय गॉड, और अगली फरमाइश हमारे पास में है जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से, उनको सुनना है गाना तेरा फूलों जैसे रंग। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, कभी कभी पिक्चर का ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, हमारे 89.6 एफएम के जग्गू दादा की फरमाइश पर, मींस जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: जवान
1: है। ओहो, दिल मिलने से दुनिया जवान है। Obviously, अभी तो हम जवान है और दिल तो बच्चा है ना। हमने इंजॉय किया ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा जग्गू दादा की फरमाइश पर किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, बढ़ेंगे चलेंगे हमारी अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों, महेंद्र जी का राजस्थान से कहना है कि तुमसे जुड़ी है मेरी हर एक खुशी, तुम ही तो हो मेरी जिंदगी की सादगी, चाहे कितनी भी दूरियां हो हमारे दरमियां, तुम ही रहोगे हमेशा मेरी पहली और आखिरी खुशी। सो ये कहना है महेंद्र दीपेन का राजस्थान से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। विजय पाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से आपका स्वागत है। सो एंजॉय कर लेते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास नहीं है दोस्तों, सबलू सावंत की मुंबई से, और सबलू सावंत को मुंबई से सुनना है गाना आती है रात ओढ़ के दर्द का कफन। ओ माय गॉड, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में हम एंजॉय करेंगे बेवफा सनम का ये बहुत ही खूबसूरत सा बेवफाई वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, भूलिएगा नहीं, ये फरमाइश है सबलू सावंत की मुंबई से। स्टे ट्यून्ड।

आती है रात ओढ़े हुए दर्द का कफन। हमने इंजॉय किया ये बहुत ही लोनली वाला, बहुत ही तन्हा रहने वाला नगमा, बहुत ही सैड सैड सैड सॉन्ग। जानते हैं किसकी फरमाइश पर? हाँ, सबरू सावंत जी की फरमाइश पर, जो कि है मुंबई से। और इसी नगमे ने मुझे कुछ याद दिलाया है कि रात गुजर गई थी लेकिन सवेरा नहीं था, वो ख्वाब तो देखा मगर मेरा नहीं था। किस कदर तन्हा था मैं उस महफिल में, किस कदर तन्हा था मैं उस महफिल में, सब अपने थे पर कोई मेरा नहीं था। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है हमारे पास में सोनिया तिवारी की, उनको सुनना है गाना मैं क्या थी मैं क्या से क्या हो गई। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो दोस्तों, ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी सोनिया तिवारी की तरफ से। सोनिया तिवारी हैं गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नागेश्वर धाकड़, आपका स्वागत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप छिपे छिपे हुए थे, आप दिख नहीं रहे थे मुझे। और इनका कहना है कि एक बार जो पराया महसूस करा दे, फिर वो लाख अच्छी बातें कर ले, मुझे पराया ही लगता है। वेरी गुड इवनिंग आरजी सिंपल जी। सो वेरी गुड इवनिंग नागेश्वर धाकड़। और मैं भी कुछ कहना चाहूँगी कि आँखों में शराब रखते हो, छुपाए गहरे राज रखते हो। आँखों में शराब रखते हो, छुपाए गहरे राज रखते हो। कैसे पढ़ूँ तेरे चेहरे की मुस्कान, हर अदा में नया सवाल रखते हो। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दीपक जी की हथियागढ़ गोंडा से। और बहुत दिनों बाद दीपक जी को हथियागढ़ गोंडा से सुनना है गाना। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारे हाई क्वालिटी सॉन्ग्स दीपक जी की फरमाइश पे, जो की हथियागढ़ गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दोस्तों ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी दीपक जी की तरफ से, जो कि है हथियागढ़ गोंडा से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश तो है ओल्ड इज गोल्ड वाले नगमे की, लेकिन तब भी इतना तो चैलेंज लगा सकती हूँ कि ये नगमा हर एक दिल में छा चुका होगा, हर एक दिल को पसंद होगा, सब कहेंगे कि वाह व्हाट अ सॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही नगमा है। हमारे पास में अगली फरमाइश है उषा कश्यप की गोंडा से। उषा कश्यप को गोंडा से सुनना है।

हो गई। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा, सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट सुनहरा नगमा, सिर्फ और सिर्फ उषा जी की फरमाइश पर जो कि है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आई लव दिस सॉन्ग एंड आई नो यू ऑल लव दिस सॉन्ग। नाउ एंजॉय दिस सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड।

दोबारा मुलाकात हो गई। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सनम माओ। इसी के साथ में स्वागत है आपका प्रीति शुक्ला जी बहराइच से। स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। और बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले सबलू सावंत का कहना है मुंबई से कि तेरी पसंद मेरी चाहत बन गई है, तेरी मुस्कुराहट मेरे दिल की राहत बन गई है। खुदा भर दे तेरे दामन को खुशियों से, क्योंकि तुझे खुश देखना मेरी आदत बन गई है। वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। इसी के साथ मैं भी कुछ कहना चाहूंगी कि अरे उड़ने दो अफवाहों को, वो सेहत के लिए खराब थोड़ी है। उड़ने दो अफवाहों को, वो सेहत के लिए खराब थोड़ी है। चाय तो चाय है मेरे भाई, कोई शराब थोड़ी है। दुनिया उलझी है अपनी ही महंगी और झूठी शान में, दुनिया उलझी है अपनी ही महंगी और झूठी शान में। हमारी सादगी का जमाने के पास कोई हिसाब थोड़ी है। और जो लोग पीठ पीछे हमारे बारे में मशवरे देते हैं, जो लोग पीठ पीछे हमारे बारे में मशवरे देते हैं, उन्हें कह दो हमारी चाय का जायका इतना खराब थोड़ी है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और उनको सुनना है बहुत ही खूबसूरत सा गाना, ये झुकी झुकी निगाहें। एंजॉय करते हैं ये नगमा, और इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया पे, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीतों बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है, फटाफट से पेट पूजा कर लेना, क्योंकि पेट भरा रहता है तो दिल ऑटोमेटिक खुश रहता है। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। एंजॉय करते हैं मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश। मिलते हैं सीधे 9 बजे।

0: सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
4: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
5: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
6: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
7: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
6: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

तबाही तय है तो क्यों ना इसे बेहिसाब करें, आज जिंदगी बैठ आज तेरा भी हिसाब करें। न जाने कौन सा चेहरा बचा है चेहरों में, अब एक सच कहें और सबको बेनकाब करें। ये जो मेरे कंधों पे चढ़कर खुदा बने बैठे हैं, ये जो मेरे कंधों पर चढ़कर खुदा बने बैठे हैं, उन्हें उतार कर उनका भी कुछ हिसाब करें। बहुत पी चुके इस जमाने के कड़वे घूंट हम, चलो इन आंखों के पानी को ही तेजाब करें। सो एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने फरमाइशी की महफिल में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है हम साथ साथ हैं का गाना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आई एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आई लव यू तुम भी कहो। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा फैमिली ट्रिप टाइप वाला गाना, हर दिल को पसंद आने वाला गाना, झूम जाने वाला गाना, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन।

सा हमने एंजॉय किया हम साथ साथ हैं का ये बहुत ही खूबसूरत सा तड़कता भड़कता सा सदा बहार नगमा ठंडी ठंडी ये सदा बहार नगमा वगैरह वगैरह जी हाँ दोस्तों हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पे जो कि है आवाज़ विकास गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश की तरफ बढ़ने के लिए? लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अरविंद मनकापुर से आपका स्वागत है। और हमारे एक लिसनर है उनका कहना है कि हक की लड़ाई तन्हा ही लड़नी होती है, सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद। सही बात है, आपने सही कहा। और अब बढ़ते हमारी आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे साथ में है और हमारे पास में है मुस्तफा जी की सऊदी से, उनको सुनना है गाना यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा नगमा, ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा जी की फरमाइश पर जो की है सऊदी से।

सच्चा झूठा पिक्चर का ये गाना ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमने एंजॉय किया है मुस्तफा जी की फरमाइश पर जो की है सऊदी से। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों कहना चाहूंगी कि आखिर कब तक खुद को बीमार रखा जाए, अब अपने आप को थोड़ा होशियार रखा जाए। हमने देखा है भरोसे का हश्र भी साहेब, कुछ लोगों के लिए तो अब दीवार रखा जाए। हर किसी शख्स को अपना नहीं कहते, बस दो चार ही रिश्तों पे एतबार रखा जाए। रोज की फिक्र ये उलझन ये थकन मार न दे, खुद के हिस्से में भी थोड़ा सा इतवार रखा जाए। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश है राजू की सीतापुर से, उनको सुनना है गाना चूड़ियां मिलती हैं दुकानों में और जोड़ियां ऊपर आसमानों में। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही अतरंगी सा गाना सोनू निगम की आवाज में और बेला की आवाज में, 90s का सदाबहार नगमा राजू की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

एक ही मिले, सच्चा मिले, प्यारा मिले, बस सच्चा मिले, और तो सब कुछ हम देख लेंगे। हमें मोह नहीं है उन चीज़ों का, हम औरतों को, हम लेडीज को उन चीज़ों का मोह नहीं होता जो खूबसूरत होते हैं, जो सच्चे होते हैं उनका मोह होता है। सो इसी बात पे सोनिया तिवारी का भी कहना है कि चरागों को हवाओं का डर नहीं होता, अगर परिंदों का अपना कोई घर नहीं होता। हम तो यूं ही दिल लगा बैठे थे उनसे, वरना राहों में तन्हा ये सफर नहीं होता। वाह, बहुत खूब सोनिया तिवारी जी, आपने बहुत प्यारी सी लाइंस कही हैं। इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश कुमार की सिंचाई विभाग से। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: सो दोस्तों चलिए अगली और आखिरी फरमाइश के साथ लेते हैं अलविदा, लेंगे अलविदा, लेकिन उसके पहले किसी का कुछ कहना है। नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि उड़ते हुए परिंदों को भी पता है आसमानों में घर नहीं होते, आप जमीन से कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच गए हो लेकिन जमीन को मत भूलो। सो मैं भी कुछ कहना चाहूंगी और इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। मेरा कहना है कि नाराज क्यों होना किसी से नजर में रखना छोड़ दीजिए, नाराज क्यों होना किसी से नजर में रखना छोड़ दीजिए, काम से काम रखिए, बस उन्हें मनाना छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए दिल से, अपना मानना छोड़ दीजिए, बेचैन करे खामोशी तो भी आवाज देना छोड़ दीजिए, परवाह कर लीजिए चाहे पर बताना छोड़ दीजिए, कैसे भी बसर करे कोई हक जताना छोड़ दीजिए। इसी के साथ लेती हूँ अलविदा, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से बे इंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल।
1: अहदे जवानी में अजनबी हैं हम, गैर हैं, बाकी हैं अभी दूरियां, कंकर क्यों फिर मारती हो तुम इस ठहरे हुए पानी में।

हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है।

0: आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9861-976-9860-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। हाँ हाँ, मददगार की जरूरत है, हाँ मददगार की जरूरत है, छत हूँ दीवार की जरूरत है, हाँ मददगार की जरूरत है, छत हूँ दीवार की जरूरत है, आपकी नफरतें बताती हैं, आपकी नफरतें बताती हैं, आपको प्यार की जरूरत है, तुम तो लफ्जों से मार देते हो, तुम तो लफ्जों से मार देते हो, तुमको हथियार की क्या जरूरत है, जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, तुम्हें एक हार की जरूरत है। जी हाँ, कभी कभी इंसान की जरूरतें अलग अलग सी हो जाती हैं, कभी कभी इंसान जब लगातार जीतता हुआ चला जाता है तो उसको यह एहसास कराने के लिए कि नहीं, यू आर नॉट गॉड, आप ऊपर वाले नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं एक हार इंसान की आंखों को खोलती है, और कभी कभी ये जरूरी भी होता है, आवश्यक भी होता है। हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं। जी मनुष्य जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार, शुभ संध्या। अरविंद कुमार जी हमको सुनते हैं मनकापुर से, हेलो मनुष्य शुभ संध्या आपको भी। जी नाजिया अंसारी जी हैं, आदाब अर्ज है मनुष्य जी, आदाब आपको भी। मेरी चाहत का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, तुझसे प्यार हमें यूँ जिंदगी भर तक रहेगा, फॉर यू आर जे मनुष्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्यारे से कमेंट्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई अरे भाई सोनिया तो ऐसी दिखती हैं कि बाय एवरीवन, अरे अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है तुम्हारी, जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है कहाँ। अरे भाई बाय बोलने का अधिकार आपको है ही नहीं, ये तो हमारे पास है जी। और दुनिया की हर खुशी तुम्हारे नाम कर दूँ, बस तुम मुस्कुराती रहो हल पर सवार दूँ, क्या बात है भाई, ऐसी भी जिंदगी बहुत अच्छी है ज़िंदगी भाई अरविंद जी की। और प्यार नहीं तुम तो मेरी पूरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे बिना हर पल सिर्फ बेचैनी हो, क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारी सी पंक्तियाँ कही आपने। और आज जिसको हम आपके बीच लेकर आए हैं वो एक ऐसे शायर हैं जिनका नाम इल्म से लेकर तक के फिल्म की दुनिया में है, प्यार से उनको लोग निदा फाजली कहते हैं। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं निदा फाजली साहब की, लेकिन उसके पहले कि हम उन पर जाएं, आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। मतलब लिखने वाले ने अपना कलेजा निकाल के रख दिया और गाने वाले तो खैर गजब की आवाज आई है। सोचिए, मतलब कोई शायर कह रहा है कि इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। मतलब आपकी दुआओं की जरूरत भी नहीं है। क्या बात है भाई, काका जी भी मेरे साथ उपस्थित है। तेरी मासूमियत पर आज फिर दिल आ गया, तेरी सादगी ने मुझे दीवाना बना दिया। जी हाँ, आप चलते हैं निदा फाजली साहब की ओर। बताएं आपको कि मुशायरों की दुनिया में दोहों की शुरुआत निदा फाजली साहब ने की। उन्होंने लिखा कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। इंसान के जीवन के रंग में ही उसने दोनों रख दिया, आंसू भी और मुस्कान भी। कहा भी जाता है कि सुख आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा कि वास्तव में जो डाकिया ऊपर वाला है उसने जादू किया, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। अंदर मूरत पर चढ़े घी पूरी मिष्ठान। ये अब देखिए थोड़ा सा कबीर को टच करते हैं निदा फाजली साहब इस दोहे में, कि अंदर मूरत पर चढ़े घी पूरी मिष्ठान, मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान। अंदर चढ़ावा चढ़ रहा है और बाहर कोई भूख से मर रहा है। आएगा पहचान में खूनी हो या खून, आएगा पहचान में खूनी हो या खून, अभी हमारे देश में जिंदा है कानून। और अब देखिए, एक शब्द होता है कि रोजा रखा जाता है, व्रत रखते हैं हम लोग, उपवास रखते हैं कि इस दिन नहीं खाएंगे। लेकिन एक शायर की नजर क्या कहती है, वो कहती है कि सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर। दिन का नाम बुधवार। जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर, मतलब जिस दिन अगर वो देर तक सो जाता है उस दिन उसको भोजन नहीं मिलता। निदा फाजली साहब ने गजलों के माध्यम से अपनी एक नई पहचान बनाई और ये दिखाया कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। उनकी ही गजल है, आपने सुनी होगी, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, अभी आपको सुनाएंगे भी। उन्होंने कहा कि सफर में धूप तो होगी ही, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी ही, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा, कहीं नहीं कोई सूरज,
धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। और अब हम सब की जिंदगी का सच यही है, जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए या मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं, हम सबके जीवन का एक ही सच है, कुछ ख्वाब और कुछ उम्मीदें। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। मतलब जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, और अगर आप परेशानियों से घबराने की बात करते हैं तो यू कांट सर्वाइव, आप जी नहीं सकते। काका जी लिखते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच और समझ है, मत परखो इन्हें, परखने में कोई अपना नहीं रहता। देखिए मुझे याद आ गया, मुझे इस बात पर वो याद आए, बशीर बद्र साहब, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। और मैं, जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जहाँ तक मैंने जीवन को समझा कि जब इंसान अकेले होता है तभी वो अकेले नहीं होता है। हो सकता है ये मेरा अपना नज़रिया है कि आप अकेले बैठे हैं तो आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आते हैं। कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आई कि भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कांप उठता हूँ मेरा दर्द कोई जान न ले, और ये भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आँखों में तुझे देखकर पहचान न ले। तो इंसान तन्हाई में कभी तन्हा रहता ही नहीं है, वो महफिल में तन्हा हो सकता है। एक गजल है कि महफिल महफिल दुख झेलेंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। तो वास्तव में जब तक इंसान के पास आंसू है ना, तब तक उसके पास गीत है। आंसू के मर जाने के बाद गीत खत्म हो जाता है, नहीं रह जाता। और अगर रहता भी है तो केवल औपचारिकता मात्र होती है, उसमें सच्चाई नहीं होती, उसमें सत्य नहीं होता। हमारे साथ श्रीमती सविता शास्त्री जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपको, शुभ संध्या आपको भी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी और आपकी प्रतीक्षा भी थी। अरविंद जी हैं, तेरा इश्क मेरे लिए जैसे खुली किताब है, हर पन्ने पर सिर्फ प्यार का जवाब है। नहीं साहब, अगर मोहब्बत करनी हो तो ऐसे कीजिए कि कुछ यूँ कहिए कि अब शायद ही कोई मोहब्बत करेगा मुझसे, अब शायद ही कोई मोहब्बत करेगा मुझसे, मेरी आँखों में तू साफ नज़र आती है। तो अगर आपकी आंखों में कोई साफ साफ नज़र आ जाएगा तो कोई किसी से फिर आपसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपकी आंख में कोई दूसरा है। वही सूरदास की भावना, सूरदास की काली कमरिया, चढ़े न दूजो रंग। काले रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता। अगर आपकी आंख में कोई बसता है तो फिर कोई बसने के लिए आ नहीं सकता। यूँ कहिए, अब शायद ही कोई मोहब्बत करेगा मुझसे, मेरी आंखों में तो साफ नजर आती है। जी हाँ, चलते हैं अगली गजल की तरफ, आपको सुनाते हैं प्यारी सी गजल और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

जी हाँ, तो चलते हैं अपने श्रोताओं के पास और देखते हैं कि जवाब मिला या नहीं मिला। और जी क्या बात है भाई, विशाल बेदर्दी ने बिल्कुल सही जवाब दिया रफ़ी साहब। जी हाँ, ये आवाज़ कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब की है, और पंजाबी टच में शायद उनके एक ही दो गीत होंगे जहाँ तक मैंने सुने हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा हो तो हमको जानकारी नहीं है। सरदार ने लिखा है बहुत ही प्यारी गज़ल, और काका जी लिखते हैं खूबसूरत है बहुत, रास्ते खो जाऊँगा, मुझे नींद जहाँ आएगी सो जाऊँगा, मुद्दत से इसी जिद में छिपा बैठा हूँ, चांद मुझे खुद लेने आऊँगा तो जाऊँगा। क्या बात है भाई, तो बिल्कुल आप चांद का इंतज़ार कीजिए, और बिल्कुल कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ज़िंदगी की राह में मित्र का साथ हर मुश्किल को आसान बनाता है, बिल्कुल आसान बनाता है साहब। और देखिए चलते हैं निदा फाजली साहब की ओर। नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। आप कहीं बाहर घूमने जाते होंगे, अपने जीवन का अनुभव देखिए आप, तो बड़ा उत्साह रहता होगा लेकिन दो चार पाँच दिन के पश्चात लगता है कि अब यहाँ से मन हल्का सा भर रहा है और अब घर को लौट चलें, होता है। कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है, मिलने जुलने वालों में तो सब ही अपने जैसे हैं, मिलने जुलने वालों में तो सभी अपने जैसे हैं, जिससे अब तक मिले नहीं वो अक्सर अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मुझे अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते जानकीट्स की एक ओड याद आया, उनका उनकी एक पंक्ति है ओड टू ए ग्रेसियन अर्न, उसमें एक पंक्ति है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, जिन आवाज़ों को हमने सुना है वो मधुर हैं और जिसको नहीं सुना है वो और मधुर हैं। तो मिलने जुलने वाले में तो सब ही अपने जैसे हैं, जिससे अब तक मिले नहीं वो अक्सर अच्छा लगता है, मेरे आंगन में आए या तेरे सर पर चोट लगे, मेरे आंगन में आए या तेरे सर पर चोट लगे, सन्नाटों में बोलने वाला पत्थर अच्छा लगता है, चाहत हो या पूजा सबके अपने अपने सांचे हैं, चाहत हो या पूजा सबके अपने अपने सांचे हैं, जो मूरत में ढल जाए वो पैकर अच्छा लगता है। आप जिस रूप में भी आप मानिए ईश्वर को, लेकिन मानिए तो अच्छा लगता है। हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, जैसा भी है अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है। आप दुनिया में घुमाइए साहब, और लगभग लगभग मैं गारंटी दे दूंगा कि आपको सुकून आपके घर में मिलता है। घर होता तुम कहते हैं कहीं बाहर जाएं, घूम आएं एक दो दिन तीन दिन चार दिन, और उसके बाद मन करता है कि नहीं चलो आप लौट चलें, घर अच्छा लगता है सबको। बाहर आप रहें, होटल में रहें, खाना खाएं, सब कुछ हो, लेकिन अपना घर होता है और वो सुकून शायद और कहीं नहीं मिलता। जी हाँ, काका जी ने बहुत प्यारा सा दिल भेजा है गुलाबी रंग का। अरविंद जी कहते हैं वाह क्या बात है मनुष्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब चाहिए चलिए निदा फाजली साहब की लिखी हुई एक प्यारी सी गज़ल आपको सुनाते हैं। लिखा है निदा फाजली साहब ने ही, और अपने मखमली कंठ से गाया है जगजीत सिंह साहब ने।
श्रीमती सविता जी भी कहती हैं क्या बात है, बिल्कुल सही जी, मतलब हम बाहर जाते हैं उत्साह के साथ। और अंग्रेजी साहित्य का ही विद्यार्थी होने के नाते मैंने एक ऐसे इष्ट को पढ़ा, निबंधकार को, उनका नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। उन्होंने एक एस्से लिखा एल डेरेडो, उसकी एक पंक्ति है, टू ट्रेवल होपफुली इज ए बेटर थिंग देन टू अराइव, यानी मंजिल पर पहुंचने से अच्छा है उम्मीद के साथ यात्रा करते रहना। सोचिए आपके घर में कोई फंक्शन होता है, कोई त्यौहार होता है, तो आपके मन में पहले से कल्पनाएं चलती हैं, ये कपड़ा लेंगे, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, इसको ऐसा सजाएंगे, और जब वो दिन आता है तो शायद जितनी खूबसूरत आपकी कल्पना रही हो, शायद उतना खूबसूरत वो सच नहीं हो पाता। पता चला बर्थडे है, हम सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, तब तक किसी ने डांट दिया, मूड खराब हो गया, अरे क्या कह दिया इन्होंने, कुछ अपने ताने दे गए कहीं। मुझे लगता है कि इंसान की जो प्रसन्नता है वो कल्पना में है, हकीकत इंसान को जीने की इजाज़त नहीं देती है। पता नहीं, हो सकता है हम गलत हों, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इंसान के सपने, इंसान की उम्मीदें, उसके ख्वाब शायद उसको जिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, या मैं कहूँ कि वो आधार है। हो सकता है एक ख्वाब टूटे, लेकिन एक ख्वाब के बिखर कर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरे ख्वाब के हौसले के देखने को ज़िंदगी कहते हैं। आपका एक सपना टूटा और आपने दूसरा सपना फिर सजा लिया, इसका मतलब आपको जीवन जीने का हुनर आता है। अन्यथा जो ये इस बात को नहीं जानते वे आत्महत्या के रास्ते पर चल पड़ते हैं। साहब, एक ख्वाब टूटा तो क्या हुआ, अंबर कब शोक मनाता है, हमने श्रीमती सविता जी से ही सुना था कि ठीक है जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो सबसे प्यारा था, अंबर को देखो हम कितने इसके तारे टूटे, पर टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है। कुछ इसी प्रकार की पंक्तियां हैं कि अगर आसमान से तारे टूटते हैं तो आसमान उसका शोक नहीं मनाता, कहता ठीक है अभी बहुत है मेरे पास। जी आइए, तो अब चलते हैं, निदा फाजली जी की लिखी हुई गज़ल है ये, और गाया है इसको अपने मखमली आवाज़ में, और जब मैं कह दूँ कि मखमली आवाज़ तो आप जान जाइए कि आवाज़ सिर्फ और सिर्फ जगजीत सिंह साहब की है। जी हाँ, तो निदा फाजली की लिखी हुई गज़ल और जगजीत सिंह जी का गला, इन दोनों का मिश्रण, ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, सच भी है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। भूपेंद्र की आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल निदा फाजली की लिखी हुई आपने सुनी। निदा फाजली साहब कहते हैं कि मन बैरागी तन अनुरागी कदम कदम दुश्वारी है। मन बैरागी तन अनुरागी कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहज न जानो बहुत बड़ी फनकारी है। औरों जैसे होकर भी हम बाइज्जत हैं बस्ती में, औरों जैसे होकर भी हम बाइज्जत हैं बस्ती में। कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ अपनी अय्यारी है। अय्यारी मतलब वेश बदलना। जब जब मौसम झूमा हमने कपड़े फाड़े शोर किया, जब जब मौसम झूमा हमने कपड़े फाड़े शोर किया। हर मौसम शाइस्ता रहना कोरी दुनियादारी है, ऐब नहीं है इसमें कोई लाल परी ना फूल कली। ऐब नहीं है इसमें कोई लाल परी ना फूल कली। ये मत पूछो वो अच्छा है या अच्छी नादारी है, जो चेहरा देखा वो तोड़ा नगर नगर वीरान किए। जो चेहरा देखा वो तोड़ा नगर नगर वीरान किए। पहले औरों से नाखुश थे, अब खुद से बेजारी है। मेरा फजल साहब कहते हैं दूसरों से रूठने का ज़माना नहीं रहा, हम तो स्वयं से अब नाराज़ हैं। जी हाँ, दोस्ती बड़ी नहीं निभाने वाले बड़े होते हैं। बिल्कुल सही कहा अरविंद जी आपने। और आशु मिश्रा जी प्रणाम आपको करते हैं, चरण स्पर्श। बहुत दिन के बाद आपको देखा, कल कालीन का प्रोग्राम है, उम्मीद करेंगे कि भाई आपके कंठ से कोई प्यारा सा गीत ज़रूर सुने हम। जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा।

अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणस्थल 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। और चलते चलते आपको सुनाते हैं लता जी का एक प्यारा सा नगमा।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी यामिनी। सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन अपनी पूरी गति से भाग रही थी। धीरे धीरे रात और गहरी स्याह होती जा रही थी। आसमान, पेड़ पौधे, खेत खलिहान सभी कुछ अंधकार के आगोश में थे। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी और आवाज के नाम पर महज ट्रेन की सीटी थी जो हर थोड़ी देर में बजकर अखिल के एकांत में खलल डालकर उसे बेहद तकलीफ दे रही थी। ट्रेन में सभी यात्री बेसुध और बेफिक्र सो रहे थे लेकिन अखिल की आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। अखिल और उसका साथी, उसका अंतर्मन, दोनों बाहर के अंधेरे सन्नाटे में विलीन हो रहे थे। ये घोर काला सन्नाटा अखिल को उसके जीवन जैसा प्रतीत हो रहा था जिसमें प्रकाश की कोई उम्मीद नहीं थी। ख्याल बेलगाम घोड़ों की तरह भागते हुए उसे अपने साथ खसीट रहे थे। वो उनको जितना संयत करने की कोशिश करता उतना ही वो उसे मीरा की यादों की तरफ खींच रहे थे। अखिल को इस समय उसका जीवन निरर्थक प्रतीत हो रहा था। पेशे से वो एक प्रोफेसर था जिसने हमेशा स्टूडेंट्स को जीवन के रंगों का पाठ पढ़ाया, खुशियों को सहेजना सिखाया। आज खुद बेरंग, निराश, हताश सा बैठा था। मीरा की यादें उसे बेचैन कर रही थीं। क्यों मीरा ने पैसों के खातिर उसका प्रेम ठुकरा दिया? उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्या कमी रह गई थी उसके प्यार में? उसने तो पूरी निष्ठा के साथ अपना प्यार निभाया था, अथाह प्रेम करता था वो उससे। उसके बिना जीवन जीने की कल्पना से भी सिहर उठता था, वो अच्छी तरह जानती थी इस बात को। फिर किस अधिकार से उसने बिना उससे पूछे एक तरफा निर्णय ले लिया? उसकी भावनाओं और प्रेम के साथ खिलवाड़ करके क्यों उसने किसी और के साथ विवाह कर जीवन बिताने का निर्णय ले लिया? और वो भी बिना किसी वजह के, बिना उसे कुछ बताए। क्या वो उससे प्यार नहीं करती थी? ये निरुत्तर प्रश्न उसे परेशान कर रहे थे, बावरा सा हुआ जा रहा था। कितने महीने बीत गए थे मीरा को उसके जीवन से गए लेकिन वो अभी तक उसे अपने जीवन से निकाल नहीं पाया था, अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाया था। वो तो अभी भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहां वो उसे छोड़ कर गई थी। लाख कोशिशों के बाद भी अपना दिल मीरा की यादों से मुक्त नहीं कर पा रहा था। उसकी यादें साए की तरह उसके साथ साथ चल रही थीं।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है यामिनी। अब तक आपने सुना, अखिल ट्रेन का सफर कर रहा था। वो रात का समय था और अखिल को वो रात कुछ ज्यादा ही काली लग रही थी, क्योंकि वो मीरा के ख्यालों में खोया था। वो मीरा जो बिना किसी कारण, उसे बिना कोई वजह बताए, उसे छोड़कर चली गई थी। शायद पैसों के खातिर उसने किसी और से शादी कर ली थी, किसी और को अपना जीवन साथी चुन लिया था। अब आगे वो इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि किसी के सिसकियों ने उसके ख्याल को तोड़ा। उसके बिल्कुल सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी रो रही थी। वो कौन थी, कहां से आई, कब आई, अखिल को तो पता ही नहीं चला। उस पर से ध्यान हटाने के लिए अखिल ने अपना चेहरा खिड़की पर सटा लिया और पूरा ध्यान बाहर की तरफ लगा दिया। लेकिन उसकी सिसकियां बार बार उसे अपनी ओर खींचकर परेशान कर रही थीं। लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपको चैन मिलेगा, आखिरकार विवश होकर अखिल बोला। उस लड़की को शायद ये शिष्टाचार लग रहा हो, पर अखिल का तो उसे चुप कराने का अपना स्वार्थ था। नहीं पीना, उसका बेरुखी और क्रोध वाला स्वर सुनकर अखिल चुप हो गया। फिर खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन उसकी सिसकियां रुकने के बजाय और तेज होकर उसके अंदर खलबली मचा रही थीं, उसके ख्यालों में बाधा डाल रही थीं। उसकी सिसकियां उसे और कुंठित कर कानों में पिघला शीशा घोलने जैसा काम कर रही थीं। वो क्या करे, नहीं बर्दाश्त हो रहा था उससे। आखिर उसकी भी तो शांति भंग हो रही थी, वो अपनी तन्हाइयों के साथ शांति से रहना चाहता था। इसलिए उसने एक बार फिर कोशिश की। पी लीजिए थोड़ा सा पानी, आपको राहत मिलेगी। उसकी सिसकियों को विराम देने के इरादे से अखिल ने उसके पास पानी की बोतल बढ़ा दी। इस बार उसकी उम्मीद के विपरीत उस लड़की ने अखिल के हाथ से बोतल लेकर पानी पी लिया। उसकी सिसकियों को थोड़ा सा आराम लगा, उस अखिल को भी कुछ तसल्ली मिली। कुछ देर बाद वो थोड़ा सा सामान्य हुई, पर पता नहीं क्यों अब अखिल का ध्यान मीरा से बाहर निकलकर थोड़ा थोड़ा उस पर जाने लगा था। ये उत्सुकता भी बड़ी विचित्र होती है ना, एक बार मन में आ जाए तो अपने सभी ख्याल दरकिनार कर दूसरे पर लग जाती है। इसलिए उसने उसकी सिसकियों का कारण जानने के उत्सुकतावश उससे बातचीत शुरू करने का प्रयास किया। आप कहां जा रही हैं?
1: कानपुर,
0: एक संक्षिप्त सा उत्तर दिया था उसने। कानपुर? कानपुर जानकर कौतूहल से अखिल का मन और व्याकुल हो गया। बातचीत करने की उसकी उत्सुकता और तेज हो गई। कानपुर? मैं भी कानपुर जा रहा हूँ। अखिल के हैरानी भरे स्वर सुनते ही उसने बस निगाह उठाकर उसे देखा, फिर अपने आप को संयत करते हुए कुछ ढूंढने लगी। कुछ खो गया है क्या, मैं कुछ मदद करूं? उसने फिर वही फीकी सी निगाह उस पर डाली और दोबारा अपना सामान ढूंढने में व्यस्त हो गई। उसकी आंखें एक अनकहा सा इशारा कर रही थीं कि प्लीज आप अपने काम से काम रखिए, मुझे आप में और आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अखिल चुप होकर वापस अंधेरी रात को देखने लगा। कुछ देर उनके बीच सन्नाटा रहा, लेकिन अब
1: उसका सारा ध्यान मीरा की तरफ से हटकर उस अनजान लड़की और उसकी सिसकियों की तरफ खिंचने लगा। ये प्रकृति ने भी मनुष्य को विचित्र वरदान दिया है, और वो है व्याकुलता और उत्सुकता। जिस बात से उसे दूर होने को कहो, व्याकुलता और उत्सुकता उसे उतना ही उसकी तरफ चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेती है। अब तो उससे बात करने की व्याकुलता और तेज होने लगी। ये रोग ही ऐसा है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है यामिनी। अब तक आपने सुना, अखिल अकेले ट्रेन में सफर कर रहा था और मीरा की यादों ने उसे बेचैन कर रखा था। वो मीरा जो बेवजह ही उसकी जिंदगी से चली गई थी। तभी उसका ध्यान एक लड़की पर गया जो उसके सामने बैठी थी और पता नहीं क्यों सिसकियां लिए जा रही थी। अखिल को उत्सुकता होने लगी। वो जानना चाहता था कि आखिर वो क्यों परेशान है, और इसी कारण उसके साथ बातों की शुरुआत करने की कोशिश करने लगा। अब आगे उस लड़की ने कहा, आपके पास आपका मोबाइल फोन है क्या? अगर है तो प्लीज एक मिनट के लिए दे दीजिए, मेरा फोन नहीं मिल रहा। अचानक इस छोटे से सवाल से उसने अपना मौन तोड़ा, तो अखिल ने सहर्ष ही उसे अपना फोन दे दिया। उसने अपना नंबर डायल किया, उसके फोन की घंटी बजी और समझदारी दिखाते हुए उसने तुरंत अखिल के फोन से अपना नंबर डिलीट भी कर दिया। फोन उसके पर्स में था। जी थैंक यू सो मच, कहकर उसने अखिल का फोन वापस किया और अपने फोन में गंभीरता से कुछ देखने लगी। उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। अखिल ने फिर हिचकते हुए पूछा, आप कहां से आ रही हैं? दिल्ली। इस बार उसके बिना किसी क्रोध के उत्तर ने अखिल का उससे बातचीत करने का हौसला थोड़ा और बढ़ा दिया। दिल्ली? मैं भी दिल्ली से ही आ रहा हूं, पर शायद मैंने आपको सामने वाली सीट पर यहां पहले नहीं देखा। बातों की कड़ी टूटने ना पाए इसलिए उसने ये तो कह दिया, लेकिन सच तो ये था कि अपने ही ख्यालों में खोए होने के कारण उसे खुद ही नहीं पता था कि कब वो उसके सामने आई या उसके आसपास कौन कौन से लोग थे। हाँ, वो मैं स्टेशन पर पहुंची तो हड़बड़ाहट में दूसरी बोगी में चढ़ गई थी, बाद में अपनी सीट पर आई हूं, उस लड़की ने बताया। ओह ओके, अखिल बोला, वैसे आपका कानपुर में कोई रहता है क्या? एक क्षण रुककर अखिल ने बातों को आगे बढ़ाया। जी मेरा घर है कानपुर, दिल्ली में तो मैं जॉब करती हूँ। धीरे धीरे अखिल और वो दोनों ही अपने अपने ख्यालों के खोल से बाहर निकलकर सामान्य होने लगे थे। हाय, मैं अखिल। अखिल ने पूर्णतः दोस्ती के अंदाज में उसको अपना परिचय दिया और उसने इस भाव की गरिमा का मान रखते हुए अपना परिचय दिया। हेलो रवीना। कुछ क्षण मौन रहने के बाद अखिल ने बातें आगे बढ़ाने के इरादे से कहा, वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और कानपुर किसी काम से जा रहा हूँ। आप दिल्ली में कहाँ पर जॉब करती हैं? वसंत कुंज। अरे वो तो मेरे घर से बस थोड़ी ही दूर पर है, अखिल ने कहा। अब उनकी बातचीत कुछ कुछ सामान्य गति पकड़ रही थी। कुछ इधर उधर की फालतू बातें करके अखिल ने उससे कहा, वैसे कानपुर में जहां मुझे जाना है उसका पता ठिकाना तो लाया हूं, और फिर आजकल तो गूगल लोकेशन जिंदाबाद। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिएगा। आखिर आप कानपुर वासी हैं और जो जहां का वासी होता है वो गूगल मैप लोकेशन को भी फेल कर देता है। अखिल के इस हल्के से अंदाज से वो मुस्कुराने लगी।
उसके कंपार्टमेंट की हल्की लैंप की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी और उतनी ही मासूम और मोहक थी उसकी मुस्कुराहट। अखिल की नजर उसके चेहरे पर टिक गई। एकदम निर्मल खूबसूरत था उसका चेहरा। उस पर उसके खुले काले बाल बार बार उसके चेहरे से अटखेलियां कर रहे थे, जो उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। अखिल मंत्रमुग्ध सा उसकी खूबसूरती में खो गया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है यामिनी। अब तक आपने सुना अखिल और रवीना एक ही ट्रेन में रात का सफर कर रहे थे। काफी देर तक तो अखिल मीरा की दुखद यादों में खोया रहा, फिर रवीना की सिसकियों से वो अपने ख्यालों से बाहर आया और रवीना की सिसकियों का कारण जानने की उत्सुकता में उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उन दोनों में सामान्य बातें होने लगीं और दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना परिचय दिया। दोनों एक ही शहर जा रहे थे और एक ही शहर से उनके सफर की शुरुआत भी हुई थी। अब आगे, तभी ट्रेन की सीटी ने जैसे उन दोनों को चौंका दिया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कभी बातचीत तो कभी मौन, यही चल रहा था उन दोनों के बीच। कुछ सहज हो गए थे वो। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से दोस्ती के रिश्ते में बंध गए थे। वो अजनबी दोस्त बन गए थे। उससे बात करने के बाद कितने वक्त बाद अखिल को थोड़ा हल्का हल्का सुकून सा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे फॉर्मल बातें अब इनफॉर्मल में परिवर्तित होने लगी थीं। वो बातों ही बातों में आपसे तुम पर आ गए थे। वैसे अब तो हम दोस्त बन गए हैं, तो अगर एतराज ना हो तो तुमसे एक बात पूछूं, अखिल बोला। रवीना ने धीरे से सर हिला के हामी दे दी। तो अखिल ने पूछा, तुम रो क्यों रही थी? तुम मुझे बता सकती हो, दुख बांटने से सुकून मिलता है और खुद को हल्का सा महसूस होता है। अखिल के मन में अब तक जो चल रहा था उसने वो प्रश्न उससे पूछ ही लिया। आखिर इसमें उसका भी तो स्वार्थ था, वो भी तो उसे बताकर अपनी पीड़ा से बाहर आना चाहता था, अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहता था। वो भी तो भीतर ही भीतर घुट रहा था, उसका दिल भी तो दर्द से भरा हुआ था। वो भी उसके सामने अपने दिल की खिड़कियों को खोल कर रखने के लिए व्याकुल था। जीवन में कई बार किसी अपने के सामने अपना दिल खोलकर हमें अपनी पीड़ा से इतना सुकून नहीं मिलता जितना किसी अजनबी के साथ बात करके मिलता है। वो अजनबी निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से हमारे भावों का आकलन कर समझ कर हमको सांत्वना का मरहम लगाकर ठंडक भरा एहसास देता है। अखिल का सवाल सुनकर रवीना ने उसे सूनी और नम आंखों से देखा और बिना कुछ बोले खिड़की से बाहर अंधेरे में देखने लगी। शायद इतना पर्सनल क्वेश्चन पूछने पर उसे बुरा लग गया था। यही सोचकर अखिल चुप हो गया। उनके बीच एक बार फिर मौन पसर गया।

ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है यामिनी। अब तक आपने सुना, अखिल और रवीना एक ही ट्रेन में रात का सफर कर रहे थे। रवीना न जाने क्यों सिसकियां ले रही थी और अखिल वो भी अपनी दुखद यादों में खोया हुआ था। फिर हिम्मत करके और रवीना की इजाजत मांगकर अखिल ने उससे अपना प्रश्न पूछ ही लिया, आप रो क्यों रही थी? अब आगे तेजस नाम था उसका। कुछ पल मौन रखने के बाद रवीना ने कहा, एक तेज हवा के झोंके की तरह आया और सब कुछ उजाड़ कर चला गया। मैं और तेजस, हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। उस दिन हमारे ऑफिस में एक अंकल के रिटायरमेंट की पार्टी थी। सब अपने में व्यस्त थे, पर उस दिन उसकी निगाहें मुझ पर टिकी थीं। मैं थोड़ी असहज हो रही थी, लेकिन सच पूछो तो वो मुझे अच्छा भी लग रहा था। पार्टी के बाद उसने मुझे घर छोड़ने को कहा तो मैं सहर्ष ही तैयार हो गई। बस फिर हमारी प्रेम कहानी शुरू हो गई। मैं और मेरे सपने पंख लगाकर आसमान में उड़ने लगे। एक दिन उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। अगले दिन वो मुझे अपने घर वालों से मिलवाने के लिए ले जाने वाला था। मैं उसका इंतजार करती रही, पर वो नहीं आया। मैंने उससे बात करने की, उसके बारे में जानने की हर कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चला कहीं से भी। फिर एक दिन अचानक मुझे पता चला कि उसने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे शहर की एक बड़ी कंपनी के मालिक की लड़की के साथ शादी कर ली है और उन्हीं की कंपनी ज्वाइन करके वहां खुशी से अपना जीवन जी रहा है। क्यों उसने झूठा प्यार करके मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया? क्यों? फिर किसी के जाने से जिंदगी कहां रुकती है? द शो मस्ट गो ऑन। मम्मी पापा ने मुझे वापस कानपुर बुलाया है कुछ खास काम से। कितना अजीब संयोग था ना। अखिल को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी नहीं उसकी कहानी सुना रही हो, बिल्कुल एक जैसी। रोलो रवीना, जी भर के रोलो। आज अपना दर्द इन आंसुओं में हमेशा के लिए बह जाने दो। हम दोनों की कहानी एक ही जैसी है। मीरा भी मेरे जीवन से ऐसे ही चली गई थी जैसे तेजस। कुछ देर रुक कर अखिल ने कहा, तुमने सच कहा था अखिल, अगर किसी अजनबी के सामने अपना दिल खोल दो तो बहुत सुकून मिलता है। फिर रवीना बोली, खैर छोड़ो, वैसे तुम कानपुर किस काम से जा रहे हो? अखिल ने कहा, लड़की देखने। लड़की देखने मतलब? वो आश्चर्य से अखिल की तरफ देख रही थी। अखिल बोला, माँ की कोई सहेली रहती हैं कानपुर में, उनकी सुपुत्री हैं। मेरे हालात से माँ बहुत चिंतित रहने लगी थी। मेरे नानुकुर से परेशान होकर आखिर इस बार उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, उनकी कसम, और मुझे आना पड़ा। अखिल ने बताया। रवीना ने फिर पूछा, क्या नाम है उस लड़की का? पता नहीं, शादी का मन तो मेरा था नहीं, इसलिए ना मैंने नाम पूछा ना उसके बारे में और कुछ। बस उसके घर का पता है, सर्वोदय नगर। अखिल बेपरवाही से बोला, सर्वोदय नगर? कहीं तुम सरला आंटी के बेटे तो नहीं? उसे बीच में ही टोककर रवीना ने हैरान होते हुए बोला, हाँ, पर इस बार आश्चर्यचकित होने की बारी अखिल की थी। सुनकर वो हंसने लगा।
हाँ, माँ ने मुझे बाद में बताया था कि दिल्ली से उनकी सहेली का बेटा आ रहा है। रवीना बोली, मतलब तुम? अच्छा, तो वो लड़की तुम ही हो। अखिल बोला, कितना अजीब संयोग था ना उन दोनों का। सफर भी एक था और गंतव्य भी एक। अगर घनघोर यामिनी के बाद ऐसा सवेरा हो तो काश हर दुखी मन के जीवन में ये जरूर आए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी यामिनी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: कुछ चीजें भारत की हो या फिर बाहर की, यानी कि एशियाई हो, अमेरिका में हो या फिर लंदन में हो, लेकिन अगर मेड इन इंडिया की बात हो तो वो अपने आप में एक अपनी पहचान बनाते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब है कि हमारे भारत में ही जन्मी और पढ़ी हुई

इंडिया आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कोई खूबसूरत याद, हम कभी भी उसे निकालना नहीं चाहते हैं। रात के सफर में आज हम लेकर के आए हैं एलिशा चनाए। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज लेकर के आई हूँ रात के सफर में एलिशा चनाए के बारे में। आपने खूबसूरत सा नाम कई बार सुना होगा, कई गाने भी सुने होंगे उनके, लेकिन आज मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कैसे बनी हम आपको बताने वाले हैं। एलिशा चनाए का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वे एक इंडियन पॉप एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें 90 के दशक में क्वीन ऑफ इंडी टॉप के नाम से जाना गया। इंडी टॉप इसलिए बोला क्योंकि उस समय इंडिया में नंबर वन टॉप कर रही थी हमारी एलिशा चनाए। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे नाम मिलते गए। धीरे धीरे कहें कि उन्होंने अपना पैर इस तरीके से जमा लिया सिर्फ पॉप म्यूजिक में कि उनके जैसा कोई फिर और दिखाई नहीं। इसीलिए समय बढ़ता गया, उनका करियर आगे बढ़ता गया। एल्बम पे एल्बम जब रिलीज होने लगे तो बहुत सारे गानों की भरमार कोशिशों और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद में उन्हें एक एल्बम से नवाजा गया जिसका नाम था जादू। जादू से वाकई उनके जीवन में एक जादू सा आ गया और उन्हें एक प्यारा सा नाम फिर से दिया गया जो कि था इंडी पॉप। यानी हमारे इंडिया, हमारे भारत में ऐसा इंडियन पॉप गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर कोई और हो ही नहीं सकती थी, जिसका नाम आज हम बड़े सम्मान से लेते हैं एलिशा चनाए। तो आइए सुनते हैं उसके एक बहुत ही खूबसूरत से पॉप म्यूजिक में जाकर के इस गाने को। मैं आज पॉप म्यूजिक को इसलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हैं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसे गानों को सुने जिसको सुनने पर हम सिर्फ सुने नहीं, हमारे पैर भी थिरके। तो आज हम सुनेंगे भी और अपने पैरों को भी थिरकाएंगे एलिशा चनाए के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से एक गाने को।

अलीशा चनाई उनका सबसे चर्चित जो एल्बम था वो था मेड इन इंडिया 1995 था, जिसमें इंडी टॉप के क्षेत्र में ये जो एल्बम थी मेड इन इंडिया वो क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गीत कजरारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब आप कहेंगे ये गाना कुछ सुना सुनाया सा लगता है। बिल्कुल, कजरारे को गाया था अलीशा चनाई ने, जो आज भी हर शादी में हर एक फंक्शन में जरूर से गाया जाता है। कजरारे गाना वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन उसको पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करने की जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ अलीशा चनाई की ही खूबसूरत सी आवाज में थी। तो उन्होंने इस प्यारे से गाने को जब गाया तो अलीशा चनाई भी अपने आप में एक अद्भुत सी, जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिशों के बाद में जब निखर के कोई चीज आती है, तो उन्हें लगा अरे ये गाना मैं ही गा सकती हूँ। बिल्कुल, संगीत शैली और प्रभाव के लिए ये मुख्य रूप से हिंदी पॉप और बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी पॉप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कजरारे सिंपल सी लैंग्वेज में गाना था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली को अपनाया और इस प्यारे से मिश्रण को तैयार किया। 1990 के दशक में पॉप म्यूजिक में उन्होंने जो ब्रेक दिया वह भारतीय संगीत उद्योग में एक मायने में एक नया चैप्टर था, जो कि आज तक अगर अलीशा चनाई को किसी भी म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में बुलाया जाता है या फिर लाइव में बुलाया जाता है तो भी वो सबसे पहला गाना मेड इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया वाला ही गाना सभी को सुनाती है। वे बॉलीवुड में तो करती, लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए भी उन्होंने अपने गीतों में आवाज दी। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, जैसे बंटी और बबली के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कजरारे गाना सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन अलीशा ने अपनी आवाज को एक अलग तरीके से उसमें पॉप म्यूजिक को मिक्सचर कर दे करके इसकी आवाज को नए गीतों में तराशा। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने को, जो कि अलीशा का एक दूसरी एल्बम से है।

अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उनका पहला एल्बम जादू जो कि 1985 में था। 90 के दशक में उनका एल्बम मेड इन इंडिया जो कि सुपर हिट नहीं सुपर से सुपर हिट रहा, देश भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। इस एल्बम का टाइटल जो रहा वो मेड इन इंडिया भारत में पॉप संगीत को प्रतीक बन गया। प्रतीक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले मेड इन इंडिया कभी नहीं कहीं कोई टैग नहीं था, लेकिन उनकी इस एल्बम के बाद में हर जगह पर मेड इन इंडिया का टैग भी बनने लगा। अलीशा ने कई सुपरहिट गाने दिए जैसे कजरारे, तिनका तिनका, ओ बेबी और बहुत सारे गाने जो कि मूवीज में अगर हम देखें उनका सफर जब शुरू हुआ तो बंटी एंड बबली, करम, दिल है कि मानता नहीं, खुददार और विजय पथ, तो जैसे गाने रुक रुक जो तब्बू की आवाज में अगर कोई गाना गा सकता था तो वो सिर्फ अलीशा चना ही थी। रोचक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में संगीतकार भप्पी लहरी के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए। कई गानों के साथ में उनका जो सफर था वो बहुत ही खूबसूरत सा था। पॉप संगीत को भारत में लोकप्रिय बनाने में उनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। मेड इन इंडिया गाने में मॉडल मिलिंग सोनल नजर आए थे। अलीशा आज भी सोशल मीडिया पर हमेशा से एक्टिव दिखती हैं। कहीं भी अगर लाइव कॉन्टेक्ट होता है या फिर लाइव प्रोग्राम्स के लिए वो बेहद प्रचलित संगीतकारों में सिंगर्स में जानी जाती हैं। सभी के दिल को मोह लेने वाली अलीशा बहुत ही प्यारी सी आवाज में उनके गाने को हम आज भी बेहतर रूप से सुनते हैं। तिनका तिनका जो कि करम मूवी 2005 में सुपरहिट से भी सुपरहिट हुई थी। अलीशा की सुरीली आवाज और सॉफ्ट टोन वाला ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

अलीशा चेन्नई का वैसे तो नाम अलीशा चेन्नई ही है, लेकिन उनका पूरा और असली नाम सुजाता चेन्नई था। सुजाता चेन्नई वो उनका व्यक्तिगत नाम यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर उन्हें स्टेज नाम दिया गया अलीशा चेन्नई। कई शोज के बाद में उनकी पर्सनालिटी को जो सूट करने लगा वो अलीशा, और उनके चाहने वालों ने, उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये नाम दिया, जो कि आज हम सभी इसी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि है अलीशा चेन्नई। उनका जन्म 18 मार्च 1965 में अहमदाबाद गुजरात में तो हुआ ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता उनकी भारतीय ही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उनके पिता का नाम मदन चेन्नई था, जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चों में एक न एक खूबी आ ही जाती है। पिता जो क्लासिकल म्यूजिक से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही शुरू हुई। उनकी शिक्षा अगर देखी जाए जो कि संगीत से जुड़ी हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही यानी कि मदन चेन्नई से मिली। मदन चेन्नई ने भी कई बार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाहर शोज करने के साथ साथ वो उनके साथ हमेशा से साथ में रहते थे। बेटी को आगे पढ़ाने की ललक, उन्हें आसमान तक पहुंचाने की जो एक उम्मीद और कहते हैं ना कि जो एक उत्साह होता है, वो उनमें भरपूर था। बस तब क्या था, एक पिता का साया और एक पिता का साथ दोनों मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। इसी तरीके से अलीशा चेन्नई का सफर संगीत में शुरू हुआ। अलीशा ने 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गाना गा करके शुरू की गई थी। उनके करियर की शुरुआत संगीतकार पप्पी लहरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला मौका, जो कि उन्हें जादू की एल्बम से मिला था, उसके बाद में एक से एक उनकी एल्बम को रिलीज करते हुए देखा गया। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना, जो कि विजयपथ की मूवी से है, 1994 में आई हुई विजयपथ मूवी का रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2005 में कजरारे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका को के रूप में उन्हें दिया गया, जिन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप की उपाधि भी दी गई, क्योंकि उन्होंने भारतीय पॉप को मुख्य धारा में लाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ में कजरारे जो कि सिंपल से गाने को भी उन्होंने अपनी शैली में गा करके आज भी सभी को मुग्ध करने वाली ये गाना हम सभी के जहन में है, इसीलिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार की हकदार तो वो बनती ही हैं। अलीशा का संगीत भारतीय और पारसी पॉप धुनों का एक मिक्सचर भी है। उनके गीतों में मॉडर्न बीट्स, डिस्को रिदम और कैची मेलोडी होती है, जो हम सभी को एक तरह से मनमुग्ध कर देती है। उनकी आवाज नाजुक, स्टाइलिश और यूथफुल मानी जाती है। यूथफुल इसीलिए क्योंकि आज के नौजवान भी या पहले में भी सभी लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते थे। अलीशा जब ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी तब भी उनके शोज उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखते थे। कभी कभी एक्टिवेट शो में भी वो दिखाई देती थी। वे सोशल मीडिया पर मौजूद तो हैं, इंस्टाग्राम पर अपने पुराने और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तैयारी भी करती हैं, और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने बात भी करी। लेकिन कहा जाता है कि हर एक पर्सनालिटी के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर कंट्रोवर्सीज तो होती है। वो कहते हैं ना, जिनके पीछे उपलब्धियां होती हैं, जिनके नाम होते हैं, उनके साथ में कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी होती हैं। सब बताएंगे लेकिन एक प्यारे से खूबसूरत सॉन्ग के बाद।

कहते हैं ना कि जब कोई उपलब्धि हो जाती है तो उसको छूने के लिए कई बार ऐसे होता है कि हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन पीछे पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा साया और साथ नहीं छोड़ती हैं। बस ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज भी अलीशा चनाय के साथ थी, लेकिन कहते हैं कि जो सरल और जिनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है वे भी अपनी बात से लोगों को मनवाने के लिए अपनी बात को मनवाई लेते हैं। वैसे ही लाख कंट्रोवर्सीज क्यों न हो, लेकिन अलीशा ने अपनी प्यारी सी आवाज को लेकर के कई ऐसे मामलों को, कई ऐसे मुद्दों को पीछे छोड़ा और साथ ही साथ ऐसे कई संगीतकारों के साथ भी बैठ कर के जिनके साथ उनका कभी विवाद भी हुआ होगा पर उनके पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलना। साथ ही साथ जब उनके साथ में बैठ कर के वो रिकॉर्डिंग करती थी, उनके जाने के बाद भी जिनसे उनका विवाद हुआ होता था वे भी उनकी तारीफ किया करते थे, कारण उनका सरल और प्यारा सा नेचर, उनकी प्यारी सी आवाज। तो ये होता है जो कि उपलब्धियों को छूने के बाद भी किसी के अंदर कोई घमंड बिल्कुल ना आए। और साथ ही साथ अब मैं आप सुनाऊंगी एक प्यारा सा गाना जो कि डॉन मूवी का है 2006 में, आज की रात, जो कि अलीशा चनाय की आवाज में। आइए सुनते हैं।

आज के सफर में अलीशा चनाए के इस प्यारे से बहुत से संगीत के सफर को हमने आपके साथ में शेयर किया, जिसमें म्यूजिकल स्टाइल के साथ में कंटेंट स्टाइल, और जैसा कि आप सभी को पता है कि अवार्ड्स, रिकॉर्डिंग्स, हर एक के बारे में हमने आपको बताया। कहते हैं कि प्लेबैक सिंगर का जो करियर होता है वो सिर्फ यूं ही कह देना आसान नहीं होता है। कई ऐसी चीजों के साथ में उन्हें सफर करना पड़ता है जो कि उनकी समझ से कभी कभी परे हो जाती हैं। लेकिन उनका जो भी करियर रहा, राइज इन हिंदी टॉप में यानी कि राइज इन इंडी पॉप से बनने का सफर उनके लिए बहुत ही प्यारा रहा। मैं मिलूंगी अब एक नए सफर में यानी कि फिर से एक नए सिंगर्स के साथ में। तब तक के लिए आपकी अपनी आज़े ख्वाहिश को दें इजाजत। शुभ रात्रि।